पत्थरों ने और उसी में से हमने निकाले हैं। अगला गीत, जी हाँ अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, क्या ख्याल है, अराउंड द वर्ल्ड, जी हाँ मैत मुकेश और शारदा जी।

मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस शारदा जी के साथ अराउंड द वर्ल्ड में से निकाले हैं शंकर जय किशन के साज पर ये शानदार गीत, प्यारा गीत हमने पेश की। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो चलिए हम आपको ये सुनाते हैं, क्या ख्याल है, सुन लीजिए इस तरह से।

सदा रहे हैं, सदा रहेगी। रफ़ी साहब ने अपने प्यार का इजहार की। इस तरह से फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने ये गीत चलाए हैं। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं। जी हाँ, चलो सुनते हैं कि चाहे दिन हो या रात हो, अगर तुम रात कहोगे तो हम रात की कहेंगे, अगर जो दिन कहो तो हम भी दिन कहेंगे।

0: हाँ, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे और कोई बात ही नहीं करेंगे। अगर कहो दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। बहरहाल ये गीत सुना आपने माइक मुकेश की आवाज में। चलिए अगला गीत है, पेश करने वाले हैं इस तरह से।
1: तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना,

0: रूप तेरा मस्ताना, ये शानदार गीत चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में www.faunfm.nl पर आप चून हैं। जो लोग चून की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। इंटरनेट रेडियो या वीफी रेडियो पर आप चून हैं, तो जहाँ भी आप होंगे, जो भी कर रहे होंगे, आप सबका हृदय से स्वागत है। आपका स्वागत करते हुए, तो क्या ख्याल है अगर मैं आपको ये गीत सुनाऊं? दरअसल में ये गीत हमने चून भी नहीं किए, तो मुझे भी नहीं पता है इस गीत के बारे में। और बहुत दिन हुए हमने टेक्स्ट पढ़े हैं, लेकिन हम जान नहीं पाते ये गीत कौन सा है। तो हो सकता है शायद आपको पता हो, चलो साथ मिलकर सुनते हैं। हाँ, इतना तो पता है कि मैं तो मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस।
1: अरे गौरी, अरे गौरी, तुम हवा में कैसे पहुंच गई? अरे मैं कुछ करता हूँ, ठहरो तुम।
2: ठहरो,
1: फिक्र मत करो, हम तुम्हें अपनी बाहों में उठा के ले चलेंगे।
2: तुम तो उठा लोगे, लेकिन गांव वाले क्या कहेंगे?
1: अरे गांव वाले क्या कहेंगे, यही कि चंदन अपनी होने वाली दुल्हन को अपनी बाहों में लिए घूम रहा है।
2: छोड़ दे मुझे, हट बेईमान कहीं का।

माइति मुकेश, माइति मुकेश और साथी मैं आशा जी आपको मिल के सुनाए हैं यह गीत और हमने पेश की फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। महेंद्र कपूर जी, चलो सुनते हैं आपको क्या सुना रहा है।

जब याद किसी की आती है, पद्मश्री महेंद्र कपूर की आवाज़ में हम आपको सुनाएं ये शानदार गीत फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में है। चलिए, कार्यक्रम में आप भी हैं, मैं भी हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, तो क्या ख्याल अगर जो मैं यार आपको ये गीत सुनाऊँ, इस तरह से आ रहा है।

दिल में किसी के प्यार का, लता जी की आवाज में सुनाया गया, जबकि आप उपस्थित हैं। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर चून है, चून करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप कार्यक्रम भी सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, हमने चून कर ये गीत रखे हैं। जी हाँ, बस आ रहा है ये शानदार गीत इस तरह से।

माइटी मुकेश द हार्ट ड्रॉप ऑफ मिलियंस और लता जी साथ दी, और शानदार गीत हमने पेश किए, जबकि आप भी हैं, मैं भी हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपके आपके लिए हमने गीत ये रखे हैं, क्या ख्याल है, बस इत्मीनान से ये लवली गीत सुनिए।

रफ़ी साहब और शारदा जी मिलके आपको ये दुएट सुनाए जब भी ये दिल उदास होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि राज कपूर ने कहा कि राधा आज सिर्फ गाएगी भी नहीं लेकिन नाचेगी भी, तो आप सोच सकते हैं मैं कौन सा गीत चलाने वाला हूँ, और नहीं सोचे होंगे तो इस तरह से आ रहा है शंकर जय किशन के साथ पर।

माइकी मुकेश जी और लता जी ये दोनों मिलके फिल्म संगम में से सुनाए हैं आपको ये शानदार गीत शंकर जय किशन के साथ पर। कहा जाता है ये पहला फिल्म था जो देश से बाहर बना संगम, लेकिन मुझे इस पक्का पता नहीं है क्योंकि मैं दुविधा में हूँ। सिंगापुर बना था शमी कपूर का या राज कपूर का संगम। बहरहाल ये गीत हमने चलाए हैं ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। फिल्म मुद्दत में से निकाले हैं जी हाँ, आशा जी और मोहम्मद अजीज़।

मुद्दत में से निकाले हैं आशा जी और मोहम्मद अजीज जी। जब मैं कहूँ बूंद जो बन गई मोती निकली सेफ ने सस्त, मैं तो मुकेश और सुमन कल्याणपुर जी, तो क्या ख्याल है अगर ये गीत मैं आपको सुनाऊँ इस तरह से।

हाँ मैंने भी प्यार किया, मैं तो मुकेश और सुमन कल्याणपुर जी आपको सुनाए हैं, गीत रखे हैं, तो चलिए हम आपको यही गीत सुनाते हैं। प्लेन में जो रखा हुआ है आपका जाना पहचाना गीत है इस तरह से।

बाहों में तेरे मस्ती के घेरे ये गीत सुनाया गया फौन हिंदुस्तानी रेडियो पर जब आप चुने। तो चलिए अगला गीत हम आपको सुनाते हैं, ये फिल्म कलंक में से निकाल रहे हैं। जी हाँ, फिल्म कलंक में से निकाल रहे हैं, ये गीत हम आपको सुनाते हैं। चलो सुनते इस तरह से।

घर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया, ये शानदार गीत चला शाम के कार्यक्रम में हमने पेश की। फिल्म कलंक में से निकाले हैं और गाने वाले थे श्रिया घोषाल और वैशाली प्रीतम के साथ पर ये पेश किया गया। चलिए अगला गीत हम सुनाने वाले हैं आपको और वो ये है।

ये हवा ये मस्ताना मौसम रफ़ी साहेब और लता जी फिल्म अकेली मत जाइए निकती इंद्रियन सस्तख में से निकाल कर हम आपको सुनाए शानदार फिल्म। चलिए वी पर आप चुने जो लोग चूंट की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुना रहे हैं, इस तरह से आ रहा है।

हरिवीराम रुना लैला आपको सुनाए ये शानदार गीत और हम पेश किए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। क्या ख्याल है, चलिए सुनते फिल्म काला पत्थर में से निकाल रहे हैं।

हम बनाएंगे एक आशियां, ये गीत आपको सुनाया गया। लेकिन गलती हमने कहा क्योंकि नंबर बदला हुआ था ना, फिल्म काला पत्थर का नहीं है, लेकिन ये है आरती मुखर्जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए, ये दो पंछी दो तिनके, फिल्म तपस्या में से निकाले हैं, क्योंकि नंबर गलत था इसीलिए हमने पढ़ा नहीं लेकिन कह दिया, क्षमा करना, और फिल्म तपस्या में से निकाले हैं। चलिए अगला गीत, क्या ख्याल है, इस तरह से है।

0: हैं ये शानदार गीत हमने आपको सुनाए हैं फिल्म चांद ग्रहण में से निकाल कर जयदेव के साज पर, और इसका म्यूजिक नेकतीन सेफन नेखन तक में निकला। तो आप सोच रहे होंगे नेकतीन सेफन नेखन तक, जबकि मुकेश जी के स्वर्गवास हो चुका था नेकतीन ससन सेफन तक में। बात यह है ये फिल्म बना रिकॉर्डिंग हुआ लेकिन जम्मू कश्मीर के लड़ाई से ये गीत निकला नहीं, फिल्म भी नहीं निकला। तो बाद में जाकर सोनी म्यूजिक ने इस गीत को निकाला और पता नहीं ये फिल्म निकला या नहीं। बहरहाल नेकतीन सेफन नेखन तक में जाकर ये गीत निकाला गया सोनी म्यूजिक के जरिए। चलिए अगला बयान हम आपको सुनाते हैं, इस तरह से आ रहा है और वो है ये भी माइट मुकेश द हार्ट ट्रब ऑफ मिलियंस।
1: तेरा प्यार
0: असल में ये एक फरमाइश का गीत है लेकिन कभी नहीं चलता, इसलिए हम आपको सुनाते हैं।

0: तेरा प्यार से जीवन भर जाए, मैथी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए और हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में, इसलिए पेश की क्योंकि ये गीत नहीं चलता है और ये आशीर्वाद के तौर पर ये गीत को चलाया जाता है शादी विवाह में। हमने चला दी, शायद आप कभी फरमाइश दोगे और बेटी की शादी है तो इसके बारे में चर्चा करना फाउन हिंदुस्तानी रेडियो वाले अवश्य जानते हैं। ये शानदार गीत हमने पेश की। चलो आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम और आपको ये सुनाते हैं। बस वाह क्या बात है।
1: Never miss an update.

न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया। लता जी आपको सुनाए हैं फिल्म दर्द में से निकाले हैं नीघतिन एन तख तख का ये रोमांटिक सॉन्ग, ये प्यार भरा गीत हम आपको सुनाए हैं फौन हिंदुस्तानी रेडियो पर। आप चुने जो लोग चुन के हैं आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए हम आपको ये क्या सुना रहे हैं, वह क्या बात है। मुकेश और कंचन फिल्म धर्मात्मा में से

तुमने किसी से कभी प्यार किया है कंचन और मैथी मुकेश ने तीन फाइव सही में तो धर्मात्मा में से निकाल कर ये शानदार गीत पेश किया गया फॉर 500 हिंदुस्तानी रेडियो। तो लीजिए इस तरह से लगातार प्रेम कहानियां ये सुनाती हैं।

अपनी प्रेम कहानियां लता जी आपको सुनाए। फिल्म मेरा गांव मेरा देश, फिल्म मेरा गांव मेरा देश से निकाले हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। आओ ये शानदार गीत हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर। आप जो चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, आपका हृदय से स्वागत किया जा

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। डबल एच त्रिफिया इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, वर्क्स बॉयज एंड बेदंत गर्ल्स, सोशल मीडिया बियॉन्ड ब्लेसिंग्स, तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाइश, जरूरी खबरें, इश्तिहारे, कॉमर्शियल्स, डेंक ऑन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो ट्विन किफायत सस्ते दाम, यू कैन बेल अप 07-3567-2740 पर सभी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के बारे में। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी हम लोगों का मेंबर बने, कोशिश करना औरों को भी बनाने के लिए। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी हम लोगों का मेंबर बने और को भी बनाए, लाइक हम लोगों के बारे में कुछ बातें शाते करते रहना यारो, चर्चा करते रहना, इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से तहदिल से धन्यवाद। एक ही दम लेकर चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। सभी नगमे आप सुन चुके फिल्म जिंदगी का, तो आप सभी को लेकर चलते हैं नहीं फैफन सेस्तख में एक मूवी, जबरदस्त मूवी रिलीज किया गया था, जुबली हिट हुआ ये मूवी, फिल्म आरजू। तो फिल्म आरजू में से आप नगमे सुनेंगे, और इस फिल्म में राजेंद्र कुमार जी ने काम किया है ब्यूटी क्वीन साधना जी के साथ, और महान अभिनेता द ग्रेट फिरोज खान जी भी इस फिल्म में काम किए हैं। संगीतकार एक बार फिर शंकर जय किशन। तो उसी फिल्म में से नगमे आप सुनेंगे एक बार फिर सुरों का बादशाह रफी साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में, हसरत जयपुरी का ये क्या बात है, क्या लिखा है, ऐ फूलों की रानी बहारों की मलका, रवि साहब।

0: फूलों की रानी, बहारों का मलका, ब्यूटीफुल सॉन्ग, वंडरफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी आरजू 1965, पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी ने सुनाया। अगला बयान एट सेल्फ द फिल्म आरजू 1965, और इस बार भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी अजीर उठकर अब कहां जाएगा। इस फिल्म का सभी नगमे सुपरहिट साबित हुए।
1: अजी

सुंदर बयान छलके तेरी आंखों से, एक फिल्म आरजू ने दी फैशन सिस्टर, पद्मा श्री मोहम्मद रफी साहब जी। तो यारो वक्त भी धीरे धीरे करीब आ रहा है, कुछ आखिरी शेर हो जाए ना आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में, स्पेशल फॉर शेर्स के चाहने वालों के लिए। अर्ज किया यार कि आज भी वो मैसेज तुम्हारा पता ढूंढता है, आज भी वो मैसेज तुम्हारा पता ढूंढता है, जिसमें लिखा था एक बार तो पूछ लो कैसा हूं मैं, एक बार और देख कर आजाद कर दे मुझे, एक बार और देख कर आजाद कर दे मुझे, मैं आज भी तेरी पहली नजर की कैद में हूं। बातें जरूरी है अगर रिश्ते बचाने हैं, बातें जरूरी है अगर रिश्ते बचाने हैं, वरना लगा कर भूल जाने से तो पतझर सूख जाते हैं। तखलीक ए कायनात की ये रीत बड़ी निराली है यारो, तखलीक के कायनात की ये रीत बड़ी निराली है यारो, इसे हम प्रेम कहते हैं। जो हो ना सके अपना, जो हो ना सके अपना, मोहब्बत भी उसी से होती है। आखिरी शेर, तन्हाई वो जानते हैं जिनको वफा ना मिलती हो ऐ दोस्त, तन्हाई वो जानते हैं जिनको वफा ना मिलती है दोस्त, वो क्या जाने, वो क्या जाने तन्हाई को जो मोहब्बत को मजाक समझते हैं। तो था कुछ आखिरी शेर्स आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में। अगला बयान एक दर्द सा भरा हुआ बयान है, लता जी के मधुर आवाज में, एंड फिल्म आरजू, बेदर्दी बालमा, शंकर जय किशन के संगीत, हसरत जय पुरी के अल्फाजे।

0: आरज़ू लता जी के ब्यूटीफुल आवाज में इतनी सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना, कंपोज बाय शंकर जय किशन। तो हमारे प्रिय प्रिय साथियों, वक्त भी धीरे धीरे करीब आ रहा है, तो आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में आखिरी बयान आप सुनेंगे एड फिल्म आरज़ू नेगदीम फैंस सेस्तख, और सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को जबरदस्त सॉन्ग है, जरा दिल थाम के बैठिए। सुरों का बादशाह किंग ऑफ मेलोडी रफी साहब जी का ये जबरदस्त सुपरहिट सॉन्ग कंपोज बाय शंकर जय किशन और लिखा है हसरत जयपुरी ऐ नरगिसे मस्ताना, वन ऑफ माय फेवरेट रफी साहब जी का। आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम आखिरी बयान आज के इस कार्यक्रम में, जो मैं स्पेशल सभी रफी साहब जी के फैंस के लिए चलाता हूँ।
1: नरगिसे मस्ताना, बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है, समझा।

तो हमारे प्रिय प्रिय साथियों, ये तक था आज का मेरे हिस्से का कार्यक्रम, जो समाप्त होने को आया। ये आशा उम्मीद लेकर घर को जा रहा हूँ यारों, कि जिस तौर तरीके से मैं कोशिश किया आप श्रोताओं को सेवा करने में, मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया हुआ होगा। अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले दिनों में मैं आप सभी से फिर मिलने वाला हूँ आवाज के जरिए। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, फॉलो करते रहना, जहाँ पर भी जिस हाल में हो, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुँचे। और जाते जाते हमेशा की तरह कुछ न कुछ गुनगुना देता हूँ और ये सोचता हूँ कि क्यों ना संगीत के साथ सुना दूँ कुछ दादा हेमंत कुमार के याद में।

0: found Hindustani radio ka karyakram aap shrotaon ke seva mein live broadcast hai natirlik balai te beluisteren via internet ke lehro dwara faunfm.nl per je karikrim aap sun rahe hai. Hamare full team ki taraf se aap shrotaon ko ek bar fir se swagatam karikrim mein. Tamam taxi drivers jo karikrim ko bhi sun rahe hai aap sabhi ko fir se ek bar swagatam karikrim mein natirlik works boys and girls and bedankt so lobby nanga blessings to all of you. तो जो भी रेडियो का काम हो खास फरमाइश हो इश्तिहारे हो जरूरी खबरें या कॉमर्शियल्स आप बनवाना चाहते हैं किफायत सस्ते दाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो हम लोग अब मात पर बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे ये भी किफायत सस्ते दाम में. मैं तो आप सभी से सदियों से यही कहते आ रहा हूँ यारो कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप श्रोताओं को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा यारो. आप आजमा कर तो देख सभी जानकारी बेलेटेडेंस कंटोर यूर फन मांडग तोत फ्रेडग फन नीग यूर स्मार्फंस तोत फेव यूर स्मिडग दफ्तर कतार का नंबर 070-365-2247 और स्टूडियो कतार का नंबर 070-362-2077. जो भी रेडियो का काम हो देंक अन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो. इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार और रिक्लाम बनाते रहना और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद क्योंकि आप है तो हम भी है. इसी तरह जरूर ढंढोड़ा पीते रहना यारो हम लोगों के बारे में. बेंतिनो खिन लित फनफाहुन हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने और ओ को भी बनाए. आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है. सभी जानकारी 970-365-2247 पर आप तार करें. बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ यारो. बीते हुए सप्ते हम लोग पहुंच चुके थे फिल्म संगम तक जो रिलीज किया गया था 1964. ब्यूटी क्वीन विजयंती माला जी के साथ राज कपूर जी ने राज कपूर जी और राजेंद्र कुमार जी इस फिल्म में भी काम किए हैं तो मिलकर काम किए हैं. इस फिल्म में संगीतकार है शंकर जय किशन. तो दो नगमे रह गया था सुनाने का इस फिल्म से तो तुरंत मिलके सुनते हैं ये बहुत ही प्यारे मज़ेदार सॉन्ग जो लोगों को उस जमाने में काफ़ी पसंद लगते थे. कुछ को नहीं कुछ को ज़्यादा. मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया. भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी का ये गाया हुआ अति सुंदर बयान मिल के सुनते हैं फ्रॉम द मूवी संगम.
1: मैं बुढ़ा

Liberty, I Love You. From the movie Sangam 1964, Vivian Lobo ke beautiful awaaz mein composed by Shankar Jay Kishan. To hamare priye shrotaon sabhi nagme From the movie Sangam aap sabhi ko suna chuka hoon. Ab lekar chalte hain aap sabhi ko ek film jo also release kiya gaya tha 1964 mein, film Zindagi. और इस फिल्म में राजेंद्र कुमार जी ने काम किया है एक बार फिर मलकाय हुस्न विजंती माला जी के साथ और महान अभिनेता द ग्रेट राजकुमार जी महमूद हेलन और जीवन भी इस फिल्म में काम किया है. संगीतकार एक बार फिर शंकर जय किशन. तो फिल्म जिंदगी में से अब आप नगमे सुनेंगे. अगला बयान शुरू का बादशाह किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी को लाते हैं प्रोग्राम में और वो सुनाते हैं आप सभी को पहले मिली थी सपनों में. हजरत जय पूरी का लिखा हुआ अति सुंदर बयान रवि साहब जी के मधुर आवाज में संगीतकार शंकर जय किशन के साथ पर.

Beautiful song, wonderful song, Shrutawani, suna ai de film Zindagi. Ravi Saab ji ke beautiful awaaz mein. अगला बयान एक बार फिर भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी एड फिल्म जिंदगी हम प्यार का सौदा करते हैं.

ऐ दिल को छू लेने वाला नगमा हमने जफाना सीखी। ऐ फिल्म जिंदगी नीति फिल्म सस्त सुर का बादशाह रफी साहब जी। तुम्हारे ये साथियों कुछ शेयर्स हो जाए ना हमारे शेयर्स के चाहने वालों के लिए। अर्ज किया है कुछ दोस्ती के बारे में शेयर्स यारो कि जाने वो क्या सोच रही थी अपने दिल में सारी रात, जाने वो क्या सोच रही थी अपने दिल में सारी रात, प्यार की बातें करते करते उसके नैन भर आए थे। मत सोना किसी के कंधे पर सर रख कर ऐ दोस्त, मत सोना किसी के कंधे पर सर रख कर ऐ दोस्त, क्योंकि जब वो बिछड़ता है तो फिर तकिए पर भी नींद नहीं आती यारो। तुमसे अच्छी तो तुम्हारी यादें और तस्वीर ही है, तुमसे अच्छी तो तुम्हारे यादें और तस्वीर ही है, जिनको जब दिल चाहे जिनको जब दिल चाहे बुला लूं और जब दिल करे गले से भी लगा लूं। माना जमाना ये देता है ताना कि थोड़ा आवारा हम हैं, माना जमाना ये देता है ताना कि थोड़ा आवारा हूं मैं, लेकिन जब हम जैसा हूं अब तो तुम्हारा हूं मैं और सदा ही रहेगा।

हम दिल की कमल देंगे, क्या बात है, ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी जिंदगी, लता जी और साथियों के साथ। कवर अति सुंदर बयान, थोड़ा क्लासिकल स्टाइल में आप सुनेंगे। और एक बार फिर सुरों का बादशाह रफी साहब और आशा भोसले जी मिलकर सुनाते हैं घुंघरवा मोरा छम छम बाजे, अ मास्टरपीस ऑफ कंपोजिंग बाय शंकर जय किशन, और लिखा है हसरत जयपुरी।

ब्यूटीफुल सॉन्ग, वंडरफुल सॉन्ग है घुंघरुआ मोरा छम छम बाजे। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं। प्यार की दुल्हन सदा सुहागन, एक बार फिर ये अति सुंदर बयान को सुनाने वाली है आप सभी के लिए। मिल के सुनते हैं शंकर जय किशन के साज पर ये अति सुंदर बयान की प्यार की दुल्हन सदा सुहागन।

प्रोग्राम में पद्म भूषण मन्ना दा इस बार प्रोग्राम में एड फिल्म जिंदगी और वो सुनाते हैं आप सभी को मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा।

ब्यूटीफुल सॉन्ग मन्ना दा जी के ब्यूटीफुल आवाज में एड फिल्म जिंदगी शंकर जय किशन के सांच पर। छूने ना दूंगी मैं दोनों बहने, क्या बात है। लता जी और आशा भोसले जी टुगेदर मिलके सुनाते हैं छूने ना दूंगी मैं, शंकर जय किशन के साथ पर जिंदगी द मूवीज द मूवी।

0: Ready? शादी मुबारक, तुम हमेशा खुश रहो।
1: गोपाल, आपने हमेशा मुझे खुश रहने का आशीर्वाद दिया है। मेरे जीवन में ये खुशी सदा बनी रहे, उसके लिए अब मुझे आपकी मदद चाहिए।
0: मदद? मेरी? बोलो बिना, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ?
1: भगवान के लिए आज के बाद आप मुझसे मिलने या मुझसे बात करने की कभी कोशिश न करें, और उसकी वजह मत पूछिए।
2: गोपाल साहब
0: जी,
2: बस उधर ही देखते रहोगे?
0: हाँ हाँ,
2: देखते रहो, खूब देखते रहो, लेकिन कुछ ख्याल हमारा भी रखना।

ब्यूटीफुल सॉन्ग छूने न दूंगी मैं। आशा और लता जी दोनों बहनें ने मिलकर ये थी सुंदर बयान को आप श्रोताओं के सामने पेश की। एड फिल्म जिंदगी शंकर जयकिशन की सांच पर एक आखिरी बयान आप सुनेंगे। एड फिल्म जिंदगी एक बार फिर भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी एक नए मेहमान विद कोर्स के साथ।

0: गाने आए हैं एड फिल्म जिंदगी लता मंगेशकर विद कोरस के साथ, मैस्ट्रो महान संगीतकार जोरी दगड़ेत शंकर जयकिशन के साथ पर। तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, सभी नगमे आप सुन चुके हैं फिल्म जिंदगी का, अब आप सुनेंगे कुछ विज्ञापन और कमर्शियल्स। ब्रेक के बाद मिलता हूँ यारो, कहीं जाना मत, जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना, क्योंकि आप जब सुनते हैं तो हम लोग भी और जोर तोर से कोशिश करते हैं कुछ सुपरहिट सॉन्ग्स सेलेक्ट कर करके आप सभी को सुनाने के लिए। तो ब्रेक के बाद मिलता हूँ, स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो ये आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। आफ्टर द ब्रेक,
1: प्लस रेडियो सुनाते हैं साफ और स्पष्ट आवाज, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग की राज। आप भी ले द प्लस रेडियो और दूर दूर तक देश के कोने कोने में सुने फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो की वाणी, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग आकाश वाणी।

फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है इंटरनेट के लहरों द्वारा तबलाइस्त्र ऑफ फाउंड fm.nl पर यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागतम। कार्यक्रम में तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम। कार्यक्रम में तिलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड बुद्धंत है। तो जो भी रेडियो का काम हो देंकन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो की फाइट सस्ते दाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो, कमर्शियल्स हो या तो आप जो ऑर्गेनाइज करते हैं आल्स इवेंट और खनिशात और तो उसके बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर या तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो, तो हो सकता है चमत्कार पे चमत्कार हो जाएगा। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। किफायत सस्ते दाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो अपमात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूँ कि फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंडेज भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आसमां कर तो देख, सभी जानकारी बेलेटेनस कंटोर उर फन मांडक तोत फ्रेडक फन नीख उर स्मार्कन्स तोत फेइफ उर स्मिरक्स दफ्तर कतार का नंबर 07-3562-2047 और स्टूडियो कतार का नंबर है 07-3062-2077। जो भी रेडियो का काम हो देंक अन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना यार, थोड़ा बहुत चर्चा करते रहना, खास करके अगर आप सभी को हम लोगों का कार्यक्रम प्रोग्राम अच्छा लगे तो ये हम लोग चाहते कि जैसे आप सदियों से हम लोगों को सुन सुनकर मजे ले रहे हैं, आपके हिती प्रेमी रिश्तेदार रान पड़ोसी को लेखन भी हम लोगों का प्रोग्राम सुने तो ज़रूर हम लोगों के बारे में बातें शातें करते रहना। और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तह दिल से धन्यवाद। हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी कोशिश करे बनाने के लिए। आपको तो यानी आप लोगों को तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी बेलटेनस कंतोर यूर ऑफ नव सीम तक 3-5-6-2-2-7-4 वेलकम। बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ। हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, बीते हुए सप्ते हम लोग पहुंच चुके थे एक फिल्म जो रिलीज किया गया था 1969 जिंदगी और ख्वाब। इस फिल्म में राजेंद्र कुमार जी ने काम किया है मलकाए हुस्न, मीना कुमारी और द ग्रेट ब्यूटीफुल नाज जी के साथ। संगीतकार महान संगीतकार उस जमाने का मैस्त्रो दत्ताराम वाटकर और लिखा है ये सभी सॉन्ग्स को महान लेखक कवि प्रदीप जी। तो कुछ नगमे रह गया था सुनाने को इस फिल्म में से, तो अगला बयान नाइटिंगेल सुमन कल्याणपुर जी के ब्यूटीफुल आवाज में फ्रॉम द मूवी। क्या बात है जिंदगी और ख्वाब। म्यूजिक दत्ताराम वाटकर और लिखा है कवि प्रदीप जी। तो मिलकर सुनते हैं कहती है झुकी झुकी नजर।

0: कहती है झुकी झुकी नजर कि आज तो कोई आएगा। नाइटिंगेल सुमन कल्याणपुर जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति ब्यूटीफुल हिंदी रोमांटिक सॉन्ग आप श्रोताओं ने सुना। फिल्म जिंदगी और ख्वाब कंपोज एंड अरेंज बाय दत्ताराम वाडकर जी। अगला बयान एक मजेदार सॉन्ग है और पिक्चराइज किया गया है कॉमेडियन आगा जी के ऊपर। जिंदगी और ख्वाब दत्ताराम वाडकर के साथ कवि प्रदीप का लिखा हुआ अति सुंदर बयान। सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी। मेरा बंदर चला है ससुराल, ये भी होता है यार।
1: अरे क्या है प्यारी,
2: जरा खेल दिखा दे ना।

0: बाबूजी राम राम, नमस्ते बाबूजी।
1: मजेदार सॉन्ग आप सुना, रवि साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में साथ दे रही थी कमल बरोत, एड फिल्म जिंदगी और ख्वाब। कवि प्रदीप का लिखा हुआ ये अति सुंदर बयान। तो फिल्म जिंदगी और ख्वाब का एक आखिरी बयान सुनेंगे, एक जबरदस्त कवाली है सुनाने को जा रहे हैं पुराने जमाने के मशहूर गाने वाली मुबारक बेगम जी के आवाज में आप सुनेंगे ये अति सुंदर बयान। को लिखा है रामचंद्र बरियान जी और कंपोज किया है दत्ताराम वाटकर। फूल बगिया में भौंरे आए, क्या बात है।

फूल बगिया में भावरे आए और अकेले चमेली घबराए। मुबारक बेगम जी के ब्यूटीफुल आवाज में इतनी सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना फ्रॉम द मूवी जिंदगी और ख्वाब कंपोज बाय मैस्ट्रो दत्ताराम वाटकर। तो हमारे प्रिय प्रिय सुनने वालों, सभी नगमे फिल्म जिंदगी और ख्वाब जो रिलीज किया गया था 1966 में, मैं आप सभी को सुना चुका हूँ। अब लेकर चलते हैं आप श्रोताओं को जो देखा जाए एक मूवी जो रिलीज किया गया था 1966 में, अकेली मत जइयो। और इस फिल्म में राजेंद्र कुमार जी ने काम किया है महान अभिनेत्री ब्यूटीफुल मीना कुमारी जी के साथ और मीनू मुमताज जी के साथ। म्यूजिक डायरेक्टर, संगीतकारों का संगीतकार महान म्यूजिक डायरेक्टर द ग्रेट मदन मोहन जी, और अल्फाजे है बयानों का मैस्ट्रो मजरू सुल्तानपुरी जी के हाथ में। तो उसी फिल्म में से अब आप नगमे सुनेंगे। एक ब्यूटीफुल डुएट है जो मैं रख चुका हूँ प्लेयर में और सुनने को जा रहे हैं आप सभी को। महान संगीतकार जोड़ी हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का द ग्रेट सुरोका देवी, भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी और सुरोका बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम, कंपोज बाय मैस्ट्रो मदन मोहन। ये तो कहो कौन हो तुम।

From the movie Akeli Majayo 1963, ye to kaho kaun ho tum. Lata ji aur Rafi saab ji ki awaaz mein iti sundar bayan aap shrotaon ne suna. Composed by maestro Madan Mohan aur alfaaz the Sultan Puri ji ka. Faun Hindustani Radio pe aap tune hai गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड नामक प्रोग्राम आप सुन रहे हैं. नगमे चल रहे हैं जिन मूवीज में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर राजेंद्र कुमार जी ने काम किया है. हम पहुंच चुके हैं फिल्म अकेली मत जइयो तक जो रिलीज किया गया था 1963. अगला बयान थोड़ी देर के लिए मेरे हो जाओ. Beautiful song, gesongen door Queen of Rock and Roll, Asha Bhosle ji, composed by Maestro Madan Puri, lyrics Majru Sultan Puri.

ब्यूटीफुल सॉन्ग थोड़ी देर के लिए मेरे हो जाओ uit de film Akeli met Jayo 1963, composed by maestro Madan Mohan, queen of rock and roll, Asha Bhosle ji ke beautiful awaaz mein.

तो यार कुछ शेष हो जाए हमारे शेष के चाहने वालों के लिए ना। अर्ज किया है यार कि हम भी कभी मुस्कुराया करते थे, हम भी कभी मुस्कुराया करते थे, उजाले में भी शोर मचाया करते थे, उसी दिए ने जला दिया मेरे हाथों को, उसी दिए ने जला दिया मेरे हाथों को, जिस दिए को हम हवा से बचाया करते थे। ये भी होता है जिंदगी में यारो। दारू और सिगरेट पीने वाले इंसान कभी मतलबी नहीं होता, दारू और सिगरेट पीने वाला इंसान कभी मतलबी नहीं होता, जिसे अपनी खुद की जान, जिसे अपनी खुद की जान की चिंता नहीं, वो भला मतलबी कैसे। या कितनी कठोर विधाम बना है खुदरत की, कितनी कठोर विधाम बना है खुदरत की, फूलों का राजा गुलाब, फूलों का राजा गुलाब कांटों में रहता है, और जीवन का निर्माता यानी जीवन का निर्माता जातो और पाटो में रहता है। दिल की ख्वाहिश को नाम किया दूं, दिल की ख्वाहिश को नाम किया दूं, प्यार का उसे पैगाम किया दूं, इस दिल में दर्द नहीं, इस दिल में दर्द नहीं, यादें है उसकी अब यादें ही मुझे दर्द दे, अब यादें ही मुझे दर्द दे, तो उसे इल्जाम क्या दूं। धोखा फरेब सब जमाने में रह गए, धोखा फरेब सब जमाने में रह गए, हम प्यार का हक अदा करने में रह गए, जो साथ चले थे वो आगे निकल गए, हम रास्ते के पत्थर हटाने में रह गए। ये भी होता है यारो जिंदगी में। एक मजेदार शेर है, ये बच्चों को कुछ यहाँ पर फरखड़े किया जाता है ना, आजमा जाता है। कहा जाता है कि इंग्लिश में सू के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे दीरतैन में जो जाते हैं तो कहते हैं एक बंदर को देखकर, ओ वाओ लुक अ मंकी इज स्लीपिंग लेट्स नॉट डिस्टर्ब हिम। और वही बच्चे एक हिंदी मीडियम स्कूल के जो दीरतैन में जाते हैं तो बंदर को देख के बोलते हैं, देख तेरा बाप सो रहा है, पत्थर मार साले को। ये भी मजेदार। दिल के दर्द को दिल तोड़ने वाला क्या जाने, दिल के दर्द को दिल तोड़ने वाला क्या जाने, प्यार की रस्मों के ये जमाने वाला क्या जाने, होती है कितनी तकलीफ कब्र के नीचे, होती है कितनी तकलीफ कब्र के नीचे, ये ऊपर से फूल चढ़ाने वाले क्या जाने। तो ये था कुछ शेर्स है हमारे शेर्स के चाहने वालों के लिए। आगे मैं कोशिश करूंगा और कुछ सुनाने को। प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। एक बड़ी पुराना सॉन्ग है, फिल्म अकेली मत जइयो, मदन मोहन जी के साथ पर एक बार फिर क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के ब्यूटीफुल सॉन्ग पिक्चराइज गया है मीना कुमारी जी के ऊपर।

Kelly met J.O. Beautiful song, title song from the movie Kelly met J.O. 1963. Maestro Manan Mohindike Saj per Sunaya Aap Sabiko Bharat Ratna Queen of Melody Lata Mangeshkar Ji. गौर अति सुंदर बयान मैं रख चुका हूं प्लेयर में आप श्रोताओं के सेवा में और इस बार लाते हैं प्रोग्राम में क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आशा भोसले जी और पद्मश्री शुरू का बादशाह रफी साहब जी रास्ते में दो अनजाने ऐसे मिले ऐड फिल्म अकेली मत जइयो 1963 Beautiful song, special, aapke naam.

masterpiece of composing by maestro Madan Mohan Ji. Majru Sultan ke likha hua ati sundar bayan sunaya aap sabhi ko Suru ka Badshah, the king of melody, Rafi Sahab Ji aur Asha Bhosle Ji aur film Akeli Mat Jaiyo 1963. देखा जाए तो एक अति सुंदर गजल आप सुनेंगे, ब्यूटीफुल ओट गजल सॉन्ग कंपोज बाय मैस्ट्रो मदन मोहन एड फिल्म अकेली मत जाइयो। जरा लफ्जों पे ध्यान दीजिए, सा यानी मजरू सुल्तानपुरी जी ने क्या अल्फाजे इस्तेमाल किया है इस गाने में, गजल में, तो जरा मिल के सुनते हैं ना। वो जो मिलते थे कभी, क्या अल्फाजे है, दिल को छू लेने वाला नगमा।

तुम्हारे पीपली श्रोताओं, अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा, तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना।

मित्रों, आप अपनी व्यक्तिगत कहानी की राह पर जो भी कदम उठाते हैं वो आपको और आपके आसपास की दुनिया को बदल देता है मित्रों, बिल्कुल बदल देता है। बेस्ट आंसर एल्क स्टॉप दी जेत उपवेखनारिय परसोंलक लखेंद फरंदत यो एंड वीरल्ड ओम यही। रात बदलती है पर सपने नहीं, रास्ते बदलते हैं पर किस्मत नहीं। उम्मीद हमेशा बनाए रखें मित्रों, क्योंकि किस्मत बदल सकती है पर वक्त जरूर बदलता है, वक्त जरूर बदलता है। द नख्त फरांदर्त मार द्रोमन नित बेस्त मैंसन द्रोमन नित द्रोमन फरांदर नित पादन फरांदरन मार है लोत नित होत आल तैत हो वन खलक कन फरांदरन मार द तैत फरांदर्त सीकर द तैत फरांदर्त सीकर। बेस्त मैंसन स्वीकार करना सबसे खूबसूरत शब्दों में से एक है। यह शांति सुकून और टेंशन से आजादी लाता है मित्रों, स्वीकार करना एक्सेप्टेयर करना। तो एक्सेप्टासी इज इन फ्रॉम द मोस्ट वर्डन बेस्ट मैसन हैड ब्रिंग्ड फ्रेड रिस्ट एंड बफ्रेडिंग फ्रॉम स्पनिंग मेट सिख मी बेस्ट मैसन हाउ दिट हुड फास्ट वन दिट कान ये इन ये लीवन खबर बेस्ट मैंसन।

भाई बहनों, आपके आसपास अच्छे लोगों का होना सबसे बड़ा मूल्य नहीं है। सबसे बड़ा मूल्य नहीं है कि आप उनसे क्या पाते हैं, बल्कि ये है कि उनके साथ रहकर आप कितने बेहतर इंसान बनते हैं। मित्रों, ये है पलांगर, ये है मूल्यवाद। किसी के साथ रहकर आप कितने बेहतर इंसान बन सकते हैं या बनते हैं। मित्रों, द ग्रोथस्ट वार्ड फन हुड मैंसन ओम यहीन इस नीत वच फंस क्रेख मर द बेतर परसून दी वर्त दूर बेजत जैन। Dat is belangrijk, beste mensen. Dat moet je goed onthouden met welke mensen je omgaat en waarom doe je dat. Dat zijn belangrijke dingen, beste mensen.

साथियों, अपने सपनों को एक दृष्टि में बदलें, फिर एक लक्ष्य, फिर एक योजना और अंत में वास्तविकता। आखिरकार एक लक्ष्य एक समय सीमा के साथ एक सपने से अधिक कुछ नहीं है। मित्रों, सपने से कुछ अधिक नहीं है। आप देखते हैं अपने आसपास में लोगों को, मार्क फन ये ड्रोम एंड फिसी डन एंड डूल डन एंड प्लान एंड एंडलक द रियलिटेट बेस्ट मैंसन द रियलिटेट एंड डूल इज एमर्स नीड्स मेयर डन एंड ड्रोम मेट एंड डेट लाइन बेस्ट मैंसन नीड्स इज meer dan een droom. Dat moet u weten, want dit ziet u elke dag bij mensen die heen gaan. Niets gaat mee, beste mensen.

साथियों, समय के पास हमें ये दिखाने का एक अद्भुत तरीका है कि कौन और क्या वास्तव में मायने रखता है। मित्रों, एक अद्भुत तरीका है। द तैत हेफ्तन वंदरबार लक मनीर ओम ओंस तलातन जीन वी एन वत एर एह टू दूत बेस्त मैंसन। एक सार्थक जीवन धन लोकप्रियता उच्च स्तर की शिक्षा या पूर्णता के बारे में नहीं है। ये प्रामाणिक होने, विनम्र होने, स्वयं होने का साहस करने और दूसरों को झूठ को देखने में सक्षम होने के बारे में है। मित्रों, ये झूठ पकड़ने के बारे में है। अनजिन फॉर लेफन द्राइदनित ओम रेगदोम पॉपुलरिटेट अन होख ऑपलेनिंग ऑफ परफेक्सी हेट खाद एरोम ऑथेंटिक ते जैन नेदरग ते जैन ये जेल्फ दुर्फन जैन बेस्ट मेंसन एन द लुगन्स फन अंदरन तो कुनन दोर ग्रोंदन। दूसरों की झूठ पकड़ने के लिए मित्रों, ये है ये तरीका।

मित्रों, परमात्मा इस मौका पर आपकी जिंदगी खुशियों से, आपके दिल को प्यार से, आपकी रूह को रूहानियत से और आपके दिमाग को समझदारी से भर दे। मैं आपके लिए बहुत खुशहाल जिंदगी की दुआ करता हूँ। यही मेरी प्रार्थना है भगवान से आपके लिए। मित्रों, मुख खोत ये लेफन ओफ स्पूलन मैथ खुल अब देश खलीख ने यह हार मैथ लिफ द ये जिल मैथ स्पिरिचुअलिटेट एंड ये खेस मैथ वेस है बेस्ट मैंसन एक वेंश अन हील फ्रोलक लेफन दत इस मैन बेद अन खोत ओफर यू लिफ मैंसन।

दोस्तों, यदि आपके कार्य ऐसी विरासत बनाते हैं जो दूसरों को ज़्यादा सपने देखने, ज़्यादा सीखने, ज़्यादा करने और ज़्यादा बनने के लिए प्रेरित करती है, तो आप एक उत्कृष्ट नेता है या एक सही इंसान हो जो दूसरों को प्रेरित करता है। मित्रों, ऐसे लोगों का कर्म भी अच्छा हुआ है। अलश्य दादन अन्नालातन स्काप करियर दी आंद्रन इंस्पिरेर ओम मेर्त द्रोमन मेर्त लेरन मेर्त दून एन मेर्त वर्दन दन बेन्य अन अजस्टेकन द लेडर फोरगांगर अन इंद्रक वेकंद मेंस मेथ goede vooruitzichten en kwaliteiten, beste mensen. Ga zo door met je goede karma.

भाई बहनों, जिसका हृदय सभी जीवित प्राणियों के लिए करुणा से पिघलता है, उसे ज्ञान, मोक्ष, बिखरे हुए केस या शरीर पर भस्म लगाने की रस्म की और क्या आवश्यकता है, क्या जरूरी है। मित्रों, ये सब जरूरी नहीं है, ये दिखावा होता है। दिखावा होता है, आज के ज़माने में बहुत दिखावा होता है। मित्रों, देखिए आप अपने आसपास में, इमंत विज हार्ट स्मेल फन मीद दोहन फॉर लीफ द वेसन्स बेस्ट मैंसन वट हेफ्ट है दान नोह नोदह अन कैनस बफ्राइडिंग warg haar of het ritueel van het insmeren van het lichaam met as. Dit is toch allemaal niet nodig. Niet nodig. Voor de show misschien wel. Voor de show. Wees eerst een mens met het hart op de goede plaats, beste mensen. Wees eerst dat en dan verder.

0: दिल की पुकार, दिल की पुकार यहाँ हम सुन रहे हैं, ना जा मेरे नाथ, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से। पाँच मिनट बाकी है 8 बजने में। मेरे प्यारे सुनने वालों, इसका मतलब है यहाँ से हम विज्ञापन लगा देते हैं। विज्ञापन के बाद हम आपसे एक बार फिर जुड़ जाएंगे। और ख्याल रहे, जी हाँ, ख्याल रहे कि आज यानी कि बुधवार है, तो हमारा प्रिय पंडित राजकुमार महातम जी उपस्थित रहेगा अपने ही मुखारविंद से हमको सुंदर सा कथा सुनाने के लिए। पर उसके बाद, उससे पहले यहाँ हम लगा देते हैं विज्ञापन। विज्ञापन के बाद आपके लिए मुकेश जी के गाना सुनाएंगे आपको।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अर्फर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 0736523047। Of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Trump heeft ingestemd om Oekraïne licenties te geven voor de productie van Patriot-raketten. Dat zei Zelensky dinsdagavond in Washington na een ontmoeting met de Amerikaanse president. Hij sprak vervolgens met vertegenwoordigers van Amerikaanse defensiebedrijven en hoopt op een gezamenlijke productie. Trump had dit eerder deze maand al aangekondigd tijdens de NAVO-top in Turkije. Bij een zorginstelling voor jongeren in Beekbergen woedde vannacht een brand. Ongeveer 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd en 1 persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De brand sloeg over naar bomen, waarna 186 kinderen van een nabijgelegen zomerkamp uit voorzorg naar Buslo werden gebracht. Ouders wordt gevraagd hun kind daar niet op te halen. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na de crash van een auto met een explosief materiaal. De EOD nam het materiaal mee ter vernietiging. De BMW werd eerder gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Voert. De inzittenden zijn gevlucht en nog niet gevonden, ondanks doorzoeking door de DSI. De 16-jarige Colt Cray is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor het doodschieten van 4 mensen op het Appalachian High School in Georgia toen hij 14 jaar oud was. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij met kerst van zijn vader had gekregen. Bij de schietpartij in 2024 vielen ook 9 gewonden. De rechter noemde zijn misdaden een teken van blijvende onverbeterlijkheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek de temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Dit is Fahon Hindustani Radio.
1: Hare kaam ke liye, हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 973-652-2047। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
0: मेरे प्यारे सुनने वालों, आपको यहाँ से हम कहाँ फाहन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से आपको बहुत प्यार के साथ स्वागत किया जाता है। आठ बजकर और 2 मिनट गुजर गया है। आज इतना प्रफुल्लित वाला दिन है, इतना फ्रोलक है, इतना वाला दिन है, हम आपसे क्या कहें, शब्द कम हो जाता है। ये सब है जो ना, ये सब अनुभव कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे अनुभव को जो हम अनुभव करते हैं उसका शब्द नहीं मिलता है। या वाती फूल फॉर्म बेन दत फ्रोलक है दत एक्त दत फ्रोलक है दत फ्रोलक है। Soms kunt u dat niet verwoorden, zo vrolijk bent u dan van binnen. En heb ook het tegengestelde, abhi sunye maine bhi, to usko kehte hai prafullit ke tegenovergestelde, uska hai malinta. Malinta yani ki droevigheid, slordigheid, viezigheid. Het negatieve. En dat hebben we niet. We zijn evenbeeld van onze God. En dat, daar moeten we ook trots op zijn. Aur git bhi hai na, git bhi banaya gaya hai. Jo milna hai Bhagwan se, to mil pehle insaan se. तो एक सुंदर सा गजल यहाँ से आपके लिए और गुजारिश पे, हाँ प्लेलिस्ट पे है, और ये सुंदर सा गीत गुजारिश पे आपके लिए यहाँ से मैं चला देती हूँ। बहुत बहुत बहुत सुंदर सा गजल है, आप इसे सुने, आप इसे सुने, ये सुंदर सा गजल आप सुने और इसे पसंद करें। सभी सुनने वालों के वास्ते, खास तौर पर जो इसके गुजारिश की है वो चाय लेकर बैठकर रेडियो के करीब और सुन रहा है, तो पेश है आपके लिए।
7: इस नज़म का टाइटल, इसका उनवान है 21वीं सदी, और नज़म के शायर हैं जनाब जफ़र गोरखपुरी। जफ़र साहब ने बयान किया है, पहले बंद में हमारे बुज़ुर्ग यानी हमारे दादा परदादा के वक्त की बातें हैं, दूसरे बंद में हमारे अब्बा हमारे पिता के वक्त की बातें, तीसरे बंद में इस मौजूदा दौर का बयान है। ये मुंबई शहर की ज़िंदगी, हर कोई भाग रहा है, उसके बारे में शायर ने कहा। और आखिरी जो बंद है उसमें बयान है हमारी आने वाली नस्ल, हमारी आने वाली पीढ़ी जिस रास्ते से गुजरेगी, किस रास्ते से गुजरेगी, उसके बारे में शायर ने कुछ बातें की, अपने ख्याल पेश किए। मुलाहिज़ा फरमाएं।

अच्छे भोले वाले लोग बहुत जल्दी चले गए। उसके बाद हमारे पिता का वक्त आया, जबकि एजुकेशन और एक लफ्ज़ है रवायत, रवायत के माने है ट्रेडिशंस, कि हमारी ट्रेडिशंस में कितने सारे बदलाव आए। काबिल गौर ये बंद है, बहुत खूब लिखा है शायर ने।

पंकज उदास जी की आवाज़ में यहाँ से हमने श्रवण कर ली है ये सुंदर सा गजल। आपके गुजारिश हुई ये सुंदर सा गजल पेश किया गया है आपिका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से।

النوكيرات، فيلم كنام، فيلم كنام النوكيرات. मुकेश जी के साथ में साथियों दे रहे थे संगीत जो हमने यहाँ से श्रवण की है और आपके लिए गुजारिश पे ये सुंदर सा पुराना गीत नसीम बेगम की आवाज़ में हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले आपके लिए पेश हो रहा है

भी होता है कि आप चल रहे हो, वो चल रहे हो, तो कभी कभी बहुत ऐसे लोग होते हैं जो खुशी होती है देखते हैं, और ऐसे कोई कोई लोग होते हैं ना, आप समझ गए हैं ना मैं क्या कहने चाहती हूँ। हाँ, क्योंकि आप बहुत समझदार हो। दम भर जो उधर मुँह फेरे,

0: द नाइटिंगेल लता जी के आवाज़ में साथ दे रहे थे हमारे मशहूर मुकेश जी की आवाज़ में कि दम भर उधर मुँह फेरे जो उधर मुँह फेरे फिल्म आवारा से ये सुंदर सा गीत पेश किया गया है सिर्फ सिर्फ सिर्फ आप ही के लिए क्योंकि आप वो बेस्ट लिसनर है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के।
1: जापनी लेजेंड कहती है अगर तुम बस मिस कर दो शायद तुम एक एक्सीडेंट से बच गए हो अगर तुम्हें रिजेक्ट कर दिया गया शायद तुम किसी गलत जगह से बचा लिए गए हो अगर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया शायद वो तुम्हारे लिए उस इंसान की जगह बना गया जो आने वाला है। कायनात तुम्हारी हिफाजत उन तरीकों से करती है जो शुरू में बदनसीबी लगते हैं वो जॉब जो तुम्हें नहीं मिली वो इंसान जो तुम्हारी जिंदगी से चला गया वो प्लान जो लास्ट मोमेंट पर टूट गया तुमने इन सबको बैड लक समझा तुमने सोचा कि हर चीज तुम्हारे साथ ही क्यों गलत हो रही है लेकिन शायद कुछ भी गलत नहीं हो रहा था शायद ये सब प्रोटेक्शन थी जो तुम उस वक्त देख नहीं पा रहे थे। जब तुम इस नजर से देखना शुरू करते हो सब कुछ बदल जाता है। हर लॉस असल में लॉस नहीं होता कभी कभी जो चीज सबसे ज्यादा दर्द देती है वही क्वाइटली तुम्हें किसी और बहुत ज्यादा बुरी चीज से बचा रही होती है। इसलिए इस डिटूर पर भरोसा करो जो चीज तुम्हें टूटने का एहसास दे रही है शायद वही तुम्हें बचाने का तरीका हो। रिजेक्शन हो सकता है रीडायरेक्शन हो एंड शायद किसी नए स्टार्ट का नाम हो बस तुम्हें अभी नजर नहीं आ रहा लेकिन एक दिन तुम्हें समझ आ जाएगा।
0: वाकई में एक दिन ये बात हमको समझ में आ जाएगा क्योंकि जिस वक्त हमारे ऊपर किसी के ऊपर जो गलत होता है या हाँ गलत नेगेटिविटी तहत जो होता है तो हम डर जाते हैं पर अगले पल जो हम सोचते हैं ना तो सोचते हैं कि ये जो हुआ अच्छा के लिए हुआ और जो हो रहा है वो भी अच्छा के लिए होता है पर हमारा नज़रिया और उस वक्त के जो हमारे ऊपर बीतता है तो हम थोड़ा से जैसे धुंधलापन हो जाता है मन में नज़र में दिमाग में तो हम थोड़ा से न्यूट्रल ना सोच पाते हैं पर जो बीत जाने के बाद तो हम देखते हैं पीछे मुड़ कर थोड़ा से तो सोचते हैं कि हाँ अच्छा हुआ। मैं भी कहती हूँ जो जीवन में घटता है वो अच्छे के लिए ही घटता है पर हम कभी कभी उसे समझ नहीं पाते हैं पर जब हम समझ लेते हैं तो जान लो आप सिकंदर हो।

वेरी वेरी लवली सॉन्ग लता जी के आवाज़ में। देखा है तुमने जिधर जिधर मेरी नज़र भी वैसी है। उसी फिल्म से ये एक और गीत हम लगा देते हैं। ये फिल्म का नाम नजराना, निखतिन इन सेस तक की ये पिक्चराइज किया हुआ फिल्म है। उसी फिल्म से ये सुंदर सा गीत आपके लिए।

0: लता जी की भी यहाँ शामिल कर लिया गया है।
1: तुम किसी भी इंसान से शादी कर लो, एक ना एक दिन जिंदगी में ये जरूर कहोगे कि मैंने कैसे इंसान से शादी कर ली। लेकिन मसला गलत इंसान चुनने में नहीं होता, असल मसला ये होता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जिसके पास पैसा होता है उसके पास वक्त नहीं होता, जिसके पास वक्त होता है उसके पास पैसा नहीं होता, जो रोमांटिक होता है उस पर भरोसा नहीं होता, जो लॉयल होता है वो बोरिंग लगता है, जो हमेशा सच बोलता है उसकी बातें कड़वी लगती हैं, जो हर वक्त अवेलेबल होता है उसकी कदर नहीं होती, जो अट्रैक्टिव होता है वो लॉयल नहीं होता। तो अगर तुम एक परफेक्ट इंसान का इंतजार कर रहे हो तो शायद पूरी जिंदगी वेट ही करते रह जाओगे। लेकिन अगर तुम एक सच्चे नामुकम्मल मगर मजबूत रिश्ते के लिए तैयार हो तो तुम्हें वही प्यार मिलेगा जो कभी चमकता नहीं मगर कभी मरता भी नहीं।
0: मैं सोच रही हूँ ये संदेशा जो हमको मिला है इसे आप और मैं जरूर से कुछ सीख ले ली होगी, क्योंकि हम परफेक्ट चीज जो ओगोरेंगे, परफेक्ट टाइम, परफेक्ट वक्त, परफेक्ट पर्सन, परफेक्ट सज्जन के सज्जन या सजनी को, तो वो परफेक्ट तो हमको मिलेगा ही नहीं। पर ऐसा करो, समय जो परफेक्ट नहीं है तो उसे कोशिश करो कि परफेक्ट अपने मन में जो बना ले तो वो भी नज़रिया से परफेक्ट दिखेगा। और आप वो चीज़ ना खोजना जो आप में नहीं है। हम परफेक्ट नहीं हैं, आप परफेक्ट नहीं हैं, तो परफेक्टता जो है उसे भी मत खोजो। सुलह करो साथ में जो है, मिलजुल के कम्युनिकेशन करके, समझ बूझ कर और आगे बढ़ते चलो।

हाँ मेरे दोस्तों, वही फिल्म से, फिल्म नजराना से। और इस बार हमने सुने हैं मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में कि बाजी किसी ने प्यार की, तो कोई जीती तो कोई हार दी। ये आपके गुजारिश हुई गीत, यहाँ से मैं चला रही हूँ। अगर आप भी सुनते हो, आप भी चाहते हो कुछ गीत सुनने के लिए, तो झिझको मत, डरो मत, बस तार ही घुमा दो। 9 7 3 6 2 2 9 7 7 पर इस बार आपके लिए।

हाँ मेरा सुंदर सपना और बीत गया, मेरी तो नहीं बीती, मेरे ख्याल से आपका भी नहीं बीती है। ये गीत के अनुसार है, कोई दुखित परिवार हो, कोई जीवन साथी छूट गया है, तो ऐसा गीत तो दिल छू जाता है ना मेरे दोस्तों। फिर भी जिंदगी वहीं पर नहीं रुकता है, जिंदगी तो जब तक हम जीवित है जीवन चलता ही रहता है।

0: मेरे प्यारे सुनने वालों, जिनका इंतज़ार था हमें सुबह से, तो अभी सुबह है, वो आ गया है स्टूडियो में। तो हम बहुत प्यार के साथ श्री पंडित राजकुमार महातम जी को यहाँ स्वागत कर रही हूँ। और पंडित जी, आपको हार्दिक से स्वागत है, आप आकाश में हैं।
1: धन्यवाद जी। हरि ओम देवम नारायण परम ब्रह्मा नारायण परम तपाम नारायणो परो देवा सर्वनारायण सदाम ओम नीलम भुज श्यामल कोमलंगम सीता समारूपित्वाम भागम पाणु महासायिक चारुचापम नमामि राम रघुवंश नाथम। हरि ओम नमः संभवाय च मयूभवाय च नमः शंकराय च मस्राय च सूत्राय च मोक्षुक्षरूप ईश्वर को नमस्कार। संसारिक सुख देने वाले प्रभु को नमस्कार। आनंद देने वाले प्रभु को नमस्कार। मंगलमय ईश्वर को नमस्कार। और अत्यंत स्वरूप और कल्याणकारक ईश्वर को हमारा बारंबार नमस्कार हो। सर्वप्रथम आकाशवाणी के सुनने वाले, जहां तक हमारा आवाज पहुंचे, आप सभी को जाकर यथायुग मेरा प्रणाम नमस्कार या राम राम सीताराम पहुंचे। खास करके राजू फान को जो मालिक है, मैं उनके भूरी विधानवाद दे रहा जो समय प्रदान किया धर प्रचार करने के लिए। हम आप अभी कितना ले रहे थे, जहाँ प्रसन्नता जी ने रेडियो फोन को माध्यम से कितने अच्छे ढंग से हम आपको स्वागत कर रहे थे, उनको मैं भूरी विधानवाद दे रहा हूँ जिस समय निकाल करके जा करके रेडियो फोन को माध्यम से मैं आपके इतने अच्छे ढंग से यानी कि इतने अच्छे ढंग से वह कर रहे हैं, उनको मैं फिर से बात दोहरा रहा हूँ, भूरी धन्यवाद यानी भूरी धन्यवाद दे रहा हूँ। तो आकाशवाणी के सुनाले मौसम भी ठीक है, और चलो कुछ वेद के माध्यम से, कुछ रामायण के माध्यम से संक्षेप छोटे रूप में कुछ आपके बीच में मैं उपस्थित करने जा रहा हूँ। हम अभी जानते हैं आकाशवाणी के सुनने वाले, ये बात सभी के विदित मालूम है, सृष्टि के सारे पदार्थ परमात्मा के ही रूप है ना। हम आप जानते हैं कि सब में परमात्मा का स्वरूप है। इस बात पर हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए, मुन्नत्वैफल हमें संदेह नहीं रखना चाहिए। इस बात पर हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए, सृष्टि की रचना पालन और संहार के लिए केवल केवल परमात्मा ही उत्तरदायी है। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, इन तीनों को उस दिव्य पुरुष से ही हुआ है। दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती उस शक्ति के दैवी स्वरूप के प्रतीक मात्र है, प्रकृति मात्र स्वरूपनी है। व्यक्ति चाहे किसी देश का हो, उसे प्रकृति को माता के रूप में देखना चाहिए। शक्ति का ये रूप मनुष्य के भौतिक, मानसिक, वैदिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्र प्रकट होता है। आकाशवाणी के सुनने वाले, इस पर ध्यान रखना ना, संपूर्ण प्रकृति में जो नारी से ध्यान की व्यापकता है, उसे ज्ञान की खोज द्वारा समझ जा सकता है। महर्षि व्यास काशी गए, एक बार घूमते घूमते महर्षि व्यास काशी गए और लोगों की दशा के लिए उत्पन्न की आलोचना करने लगा। उन्होंने गंगा माता से प्रार्थना की कि वे इस नया नारी के माध्यम से बहने लगा। गंगा उनकी यानी आकाशवाणी के सुने गंगा माँ उनके समझ प्रकट हुए और बोली, व्यास व्यास क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? तुम समझो और क्या तुम समझ में और पार्वती में भेद कैसे कर सकते हो। वहां पर गंगा माँ ने प्रकट होकर के वेद व्यास से कहा, क्या इसमें तो अंतर देखते हैं मेरे में पार्वती माँ में? वहां कहा क्या कहते हैं? वही गंगा माँ कहते हैं, हे व्यास, नारी जाति मात्र एक ही श्रेणी में है, नारी स्वरूप ये प्रकृति पार्वती की ही प्रतिमा है। प्रकृति सर्वव्यापक मात्र तत्व ही सत्यता का एक समर्था है। फिर से बात द्वारा ताकि आप अच्छी तरह समझ सके आकाशवाणी के सुनने वालों, मात्र तत्व की एक में जितने जो माँ है, माँ के शक्ति जो है दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती, माँ के शक्ति हमारी माँ बहनों भी उनकी शक्ति है। फिर भी मनुष्य अलग ढंग से सोचता और समझता है कि वही ईश्वर है। सत्य तो ये है कि हम मनुष्य को पुरुष की संज्ञा नहीं दे सकते हैं, क्यों कि वो स्वयं भी तो प्रकृति का एक अंग है। इस पे ध्यान करना, सोना चांदी आदि सभी अमूल्य धातु है, पृथ्वी से उत्पन्न होती है ना। इस प्रकार प्राणी मात्र स्त्री पुरुष पक्षी पशु आदि भी पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है। सृष्टि में जितने भी उत्पन्न पदार्थ है उन पर प्रकृति का अधिकार है। नार से ध्यान प्रकृति में संपूर्ण व्याप्त है। मनुष्य का प्रबल इस पे ध्यान करना आकाशवाणी के सुनने वाले, मनुष्य का प्रबल अहंकार ही उसे देवत से दूर रखता है। युधिष्ठिर और अर्जुन कृष्ण को दोनों ही अत्यंत प्रिय थे। उन्होंने भगवान से कहा प्रार्थना की कि वे उन्हें अपना वास्तविक रूप के दर्शन कराएं। कृष्ण ने ये स्वीकार नहीं किया। इसके विपरीत द्रौपदी ने जब कभी कृष्ण भगवान को पुकारते हैं तो कृष्ण भगवान जल्दी से वहां प्रकट हो जाते हैं। कहने की बात ये है, पति पत्नी भगवान को प्रार्थना करें तो पत्नी के आने स्त्री की प्रार्थना परमात्मा जल्दी स्वीकार कर लेती है। ये शास्त्र में प्रमाण आकाशवाणी के सुल बात फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, हमारे पति पत्नी दोनों भगवान के प्रार्थना करें तो, लेकिन जो माँ बहने हैं उनको शक्ति और ज्यादा पुरुष वहां पर भगवान उनके पुकार, भगवान तो सभी प्रार्थना स्वीकार करते हैं लेकिन हमारी माँ बहनों पर उनको प्रार्थना से भगवान और जल्दी जा करके खुश हो जाते हैं। जैसे मैंने आपके दिखाया कि वहां पर कौन युधिष्ठिर ने भी भगवान को कहे प्रभु अपना रूप दिखा दो, लेकिन किने अपना रूप पहले किने दिखाए द्रौपदी माँ के। और अर्जुन के 11वां अध्याय में भी कृष्ण भगवान ने अपना रूप दिखा लेकिन दूसरा नेत्र ने दिया अर्जुन को, किने कौन कृष्ण भगवान। और कृष्ण भगवान को स्वरूप देख कर करके वहां पर अर्जुन कहे प्रभु अपना अपना रूप धारण कर लो, तो नारी के एक पुकार पर परमात्मा प्रकट हो गया है। और जब पुरुष ने उसे प्रार्थना की तो उन्होंने उनकी इच्छा पूर्ण नहीं की। वास्तविक नारी प्रकृति का ही रूप है, यद्यपि पुरुष भी उसी प्रकृति को अभिन्न अंग है, बल्कि ये कहिए कि स्वयं है, पर वो सोचता है कि मुझ में शक्ति है, उसमें ये अहम है कि मैं पुरुष हूँ। उस अहम के कारण वो परमात्मा के दिव्य दर्शन से वंचित रह जाता है। आध्यात्मिक जीवन में ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकृति के नियम तो सब पर समान रूप से लागू होता है। जिस दिशा में एक धनी व्यक्ति संसार छोड़कर जाता है आकाशवाणी के स्वर्ण, ठीक उसी दशा में एक धनहीन व्यक्ति भी संसार छोड़ता है, किंतु व्यक्ति का व्यवहार इस कथन के विपरीत होता है। जल प्रति एक देश और काल में नीचे की ओर ही बहेगा, ये उसकी प्रकृति है। जब आप इस जल को किसी पात्र में रखोगे तभी वो स्थिर रह सकेगा, किंतु यदि आप इसे बहने दो तो ये सदैव नीचे कोर ही बहेगा। इसी प्रकार हमारा मन भी बाहर की ओर भागता है। हाँ, यदि आप इसे पकड़कर बांधने के लिए कुछ करें तभी ये स्थिर रह सकेगा। हमारे मन से दो प्रकार संबंधित है, एक का संबंध काल से है, दूसरा का संसार से है। अध्यात्मिक का उद्देश्य मनुष्य, इस पे थोड़ा विचार किया जाए आकाशवाणी के सुनने वाले। हमारा मन जो कहा गया दो प्रकार यानी दो ओर उभागते हैं, एक संसारिक ओर और एक परमात्मा को। इसमें संसार में हम रहें, लेकिन हमेशा मैं बोलता, आप भी जानते हैं, दुनिया में रहता हूँ, दुनिया के तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ लेकिन सामान का खरीदार नहीं हूँ। कहने के तांत है इस संसार में आप रहे, सब कुछ से प्यार करें, लगाव रखें, लेकिन हमें सोचना है हमें किस दृढ़ विश्वास, किस दृढ़ प्यार करना परमात्मा से। एक ना एक दिन बंधु बांध सब छोड़ करके जाना है। अगर ये जो हम अपने हृदय में रख लें कि हमें बंधु बांध सब छोड़ करके जाना है तो हमारा लगाव परमात्मा में लगेगा। लेकिन हम वहाँ ये माया नगरी में हम वहाँ भूल जाते हैं हम क्यों आए हैं, हमें क्या करना है, और हम जाकर परमात्मा से क्या कहेंगे। आकाशवाणी के सुनने वाले युवाणी द्वारा अपना परचन विराम करने जा रहा हूँ। हमेशा मैं बात दोहरा रहा हूँ, कौन बचा है, कौन बचेगा, वो किसका माल खा जाना, दुनिया थी, दुनिया रहकर पंछुड़ जाना है, पंछी कब उड़ेगा हमें आप पता नहीं है। हरि ओम, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामे, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदु भाग भरि। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम।

मेरे प्यारे सुनने वालों, हाँ, पंडित जी की आवाज़ में यहाँ से हमने सुने सुंदर सा कथा। तो आपके तरफ से, मेरी तरफ से, हमारे फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के पूरा क्रू के तरफ से पंडित राजकुमार महातम जी को दिल से धन्यवाद किया जाता है, जो अपना अमूल्य वक्त निकालकर और सेवा में उपस्थित हो जाता है। पंडित जी को हार्दिक से धन्यवाद है, शुभ दिन हो आपको। सेवनटीन ओवर नहीं हो चला है, तो हम आपसे क्या कहे, चलते हैं सुनने के लिए।

चिरैया दैया बोले और कोना रंग मुनुआ के साथ आपको ले गए, मैं बन गई हाय मिनुआ तोरे दीवाना। रेडियो फाउन ये पहला स्टेशन है, ये सब गीत जो

कहता है कि मैं बन गई मीनुआ तेरे दीवाना, और सिर्फ मीनुआ के दीवाना नहीं पर हमारा संगीतकार गीत का दीवाना होता है।

जरूर से बुला देना अपना भौजी को और ननदियन, तो आप तो जानते हैं भौजी ना, ये बहुत चंचल होती है, कब किस वक्त आपके द्वारे पे आ जाए बधौवा लेके खुशखबर लेके, आपको पता नहीं। बस भौजी जी आप तैयार रहना ननदियन को स्वागत करने के लिए।

आए बाराती मेहमान, आपसे बता दे सिर्फ सात फ्रेडाख सात डाक के विवाह नहीं होता, पर पूरे हफ्ता पूरा सप्ताह विवाह होता है, क्योंकि मुहूर्त कब किस वक्त में है ये आप विचार कर और देख सकते हो।

हमने देखे है स्टाथहुइस में, या स्टाथहुइस में नीदरलैंड में मैंने देखी है कि हर एक आधा घंटा पे विवाह होता है। फॉल खबूक द हेल वेक दौर हाल्फ यूर चक्राइट मैन आंगफनाफ हु फेल तैत खरी सर फिर थैप एंड आंधा हंदार फन वोरदान वे द स्टाथहुइस है पे खसीन द हेल ताह दौर। Haan, echt paren die komen en ze komen echt zo vrolijk en wensen wij ook vanuit Faan Hindustani Radio dat hun huwelijk leven ook zo gezellig, rooskleurig door mag gaan.

फाव हिंदुस्तानी रेडियो गीत के अनुसार तो बदहवा भी आ गए हैं, शादी हो गए हैं, बाराती भी आ गए हैं और बच्चा भी हो गए हैं, और यहाँ से पप्पा के लिए भी एक सुंदर सा गीत है।

हाँ पापा जैसा कोई नहीं। हाँ क्योंकि पापा पापा होता है, मामा मामा होता है, और दोनों का प्यार बहुत बहुत ज़रूरी है एक बच्चा के लिए।

बगिया में दैया बोले रे कोयलिया, इस बार क्या है मेरे को पता नहीं है, चलते हैं सुनने के लिए।

बरसन लागे मोरे पिया की पिया बिना आए मोर निंदिया। मेरे प्यारे सुनने वालों, आप सुन रहे फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द एनख एख्त।

पिया बिना आए मोर निंदिया, भला आपका होए भले ना आवे निंदिया, क्योंकि मौसम है दस्तूर है, ये इतने हसीन मौसम है आप कहाँ जाइए सोने के लिए, आप बस जागते रहो मेरे दोस्त, क्योंकि ये जागने में तो आप तो मज़ा ले सकते हो ना आज के मौसम का, क्योंकि आज के मौसम पता नहीं कल का मौसम कैसे होगा, क्योंकि ये तो आपको पता है हॉलैंड का मौसम आज ठंडी रहता है, कभी गर्मी रहते हैं, कभी सेम सेम रहते हैं, उतराव चढ़ाव तो यहाँ के मौसम में रहता है। हाँ हाँ, समाचार आपके लिए है, ऑटोमोबिलिस राइट फॉर केयर्स बोर्ड ऑफ रुतोंद एडोहरोंट। सोचो तो हाँ, हमारे इंसान के तो इतने ताकत नहीं है उखाड़ने के लिए, बल्कि एक गाड़ी से टकरा कर और रुतोंद के बोर्ड जो है वो एकदम ज़मीन से निकाल दी। Hunsler Dijk, an automobilist, is in de nacht van dinsdag op woensdag met de auto op een rotonde beland op de Westlandse route in Hunsler Dijk. Het ongeluk gebeurde op de rotonde met een zwetland.

शब्द जो है ये रेगे हिंदी म्यूजिक आपके लिए जो पेश हो रहा है मेरे प्यारे सुनने वालों, और आपसे ये बता दे इस रेडियो स्टेशन जो ऐसा ही न्यू स्टाइल गीत आपके लिए ला रहे हैं, इस द एर्स्ट एंड द बेस्ट रेडियो स्टेशन सिर्फ आपके लिए, आपके लिए नए से नए गीत आपके लिए चुनकर खोजकर और ला रहे हैं सुनाने के लिए। और ये रेगिस्तान में आप ये शब्द जो है उसे सुने और एक एक शब्द हमारे जीवन के कुछ लाइन इसमें जरूर आप पकड़ पाएंगे। हाँ, सोचेंगे हाँ ये तो बात सही है। आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए यहाँ से चलते सुनने के लिए फिर ये रैग स्टाइल में और शब्दों में क्या हमको सुना रहे।

अवश्य अवश्य, सुकून बाजार में नहीं मिलती मेरे दोस्त नाना। और कहते हैं इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत मेंसलक है, इस द ग्रोटस्ट रैक्टम। इंसानियत के बिना ये दुनिया जीने लायक नहीं रह जाएगी। आपने ठीक सुना कि इंसानियत के बिना ये दुनिया जीने के लायक नहीं रह जाएगी। इंसानियत ही इंसान की असली पहचान है ना।

हाँ मेरे प्यारे सुनने वालों, की दुनिया में रहना है तो अवश्य काम करो मेरे दोस्तों। काम के बिना यहाँ रोटी भी नहीं मिलती है। फिल्म हाथी मेरा साथी किशोर दा जी की आवाज़ में।

जी चलते चलते क्या यही प्यार है। और कहते हैं कि इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, हकीकत में उसे लिबास में नहीं बल्कि इंसान में तलाश करो।

जीवन खुशहाल में बिताएगा, है ना। हाँ, ये कहते हैं कि गंगा में डुबकी लगा कर तीरथ किए हजार। ठीक सुना आपने कि गंगा में डुबकी लगा कर तीरथ किए हजार। इससे क्या होगा मेरे दोस्त अगर बदले नहीं विचार। हाँ, कि गंगा में डुबकी लगा कर तीरथ किए हजार, इससे क्या होगा मेरे दोस्त अगर बदले ना विचार।

लेटेस्ट लेटेस्ट न्यू रोमांटिक सॉन्ग आपके लिए पेश किया गया है द एन एक्ट फाहन हिंदुस्तानी रेडियो से।

आपको धुन से पता चल गया है कौन सा गीत का धुन है ये। अभी बाद में उसी धुन का गीत सुनेंगे हम भी।

उषा उत्तप के आवास में। तुम देना जब कोई बात बिगड़ जाए, बस तुम देना मेरा साथ। और चुन कर रख दी है प्लेयर पे, तू मुझे जान से भी प्यारा है। पर उससे पहले हम आपको ये बता

ये फावन हिंदुस्तानी रेडियो है मेरे प्यारे सुनने वालों, इसी स्टेशन से आप नए नए स्टाइल गीत यहाँ से रिलीज किया जाता है। ये सब और जो रेगी हिंदी म्यूजिक आप सुनते हैं ना, ये भी पहला स्टेशन है जहाँ से ये रिलीज हुआ है, होता है।

फिर यहाँ से आप सबको हार्दिक से स्वागत किया जाता है ये खूबसूरत दिवस में, ये खूबसूरत मौसम में, ये खूबसूरत पल में। आज से बेहतर कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों, कि आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। उसी खुशी के उपलक्ष में हम सुनते हैं हमारे सुरीनाम के एक सुंदर सा रेगे डांस हॉल।

सिरे नामे लोबी सुनाई हमको अंदर से रेगी डांस हॉल के आवाज में हमने यहाँ सुने और एक सुंदर सा गीत केती कोती के बारे में।

कमी नहीं यारों की, बच के रहना दुनिया से, मोटिवेशन रैप सॉन्ग रियलिटी ऑफ फेक फ्रेंड्स। जिंदगी, जिंदगी का सबसे बड़ा राज ये है मेरे दोस्त। हाँ, आप सोचेंगे क्या राज है जिंदगी, तो डोंट वरी, मैं बता रही हूँ ना आपको कि जिंदगी का सबसे बड़ा राज ये है कि ये रुकती कभी नहीं, इसलिए हर पल जी लो मेरे दोस्त, कल का भरोसा कभी नहीं। कल तो दूर है, ये पल का भरोसा कभी नहीं, तो छोड़ो कल की बातें, जो आज है अभी में जी लो। वक्त के साथ सब बदल जाता है, वक्त के साथ सब बदल गया। जी हाँ, ये प्रकृति की हकीकत है कि वक्त के साथ सब बदल गया, जो अपना था वो पराया हो गया। जिंदगी, जिंदगी की इस भीड़ में आज काफी इंसान अकेला हो गया। बातों

ये भी एक सुंदर सा लाइन है कि कभी वक्त हाथ से फिसल जाता है, कभी वक्त हाथ से फिसल जाता है, कभी अपना भी बदल जाता है। जिंदगी का सच यही है, यहाँ सब कुछ बदल जाता है।

हाँ, हर समय के, हर पल के, हर चीज के यहाँ एक संगीत, उसे संगीत के पोइसी में उतार दिया जाता है। जो भी हो

ये सांगर का नाम मैं नहीं दिखती हूँ तो नहीं बता सकती हूँ, पर ये गीत आपको अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, इसलिए मैं चला दी आपके लिए ताकि आप भी कैनस कर लो कि ये सब गीत भी है। कभी जीत तो कभी हार मिलेगी ये तो है ना, कभी जीत तो कभी हार मिलेगी, हर मोड़ पे एक पुकार मिलेगी, जो हिम्मत नहीं हारते कभी। हाँ वो आप भी है मेरे दोस्त जो आप सुन रहे हैं, हाँ आप हिम्मत हारने वाले नहीं है, जो हिम्मत नहीं हारते कभी उन्हीं की उन्हें ही मंजिल पर उन्हें ही मंजिल बार बार मिलेगी। जिंदगी को मुस्कुरा के जी लो मेरे दोस्त, जिंदगी को मुस्कुरा के जी लो मेरे दोस्त, हर गम को भुला कर जी लो ना, क्या पता कल हो ना हो, क्या पता कल हो ना हो, आज को खोल के जी लो मेरे।

Raymond Ramna Raini kes awaj me sune hum. Someday I see you again. Wacht, wacht ke moor pe aisa, wacht ke moor per aisa wacht aaya hai. हाँ सुनने वालों कि वक्त के मोड़ पर ऐसा वक्त आया है, जख्म दिल का जुबां पर आया है। ओहो ना रोते थे हम कांटों के चुभने पर, ना रोते थे हम कांटों के चुभने पर आज, हाँ आज ना जाने क्यों फूलों की खुशबू से रोना आया

0: Nederlandse gewij. In Nederlandse gewij, hoe gaat het? In Germany, they say, danke. In Frans me kehte merci. Haha, aise sabhi desh ka jo hai na bhasha, wohi is geet me dhar desh hai, bata desh hai. In China we say chi chi. India me they say dhanyavad. Pakistan me we say shukriya. ऐसे है कई अन्य देश का बता दी है कि हु खातत वहाँ पे सभी भाषा में. दिल को अब किसी से कोई गिला नहीं है, दिल को अब किसी से कोई गिला नहीं, मन से जो भी चाहा वो मिला नहीं. बदनसीबी कहूँ या वक्त की बेवफाई, वक्त बदनसीबी कहूँ या वक्त की बेवफाई. अंधेरे में दिया मिला, अंधेरे में दिया मिला, पर वो भी जला नहीं.
1: के साथ खेलते हैं वही खेल एक दिन प्रकृति आपके साथ भी खेलेगी, क्योंकि इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे. जो खेल आप अपने फायदे के लिए दूसरों के साथ खेलते हैं वही खेल एक दिन प्रकृति आपके साथ भी खेलेगी, क्योंकि इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है. अब कितने भी होशियार हों, कितने भी चालाक हों, लेकिन जिसने दुनिया बनाई है वो आपसे भी ज्यादा होशियार है. हर कर्म का हिसाब जरूर करेगा. दुनिया कमजोर हो सकती है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं. इसलिए जो भी करें सोच समझ कर करें, क्योंकि कर्म का हर उधार एक दिन चुकाना ही पड़ता है.

My love for you goes on and on. मुझ में लाख बुराइयां होगी मगर मुझ में लाख बुराइयां होगी मगर मैंने किसी से अपने मतलब के लिए रिश्ता नहीं रखा। झूठ बोलकर दिल जीतना नहीं आया मुझे। सच बोलकर कितने लोग गंवा दिया मैंने। दर्द और जिंदगी ऐसा साथ थे जैसे दोनों ने आखिरी सांस तक ही साथ निभाए। जैसे दोनों ने आखिरी सांस तक ही साथ निभाना।

तमाम रेडियो फोन की सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार, प्यार भरी आराम से चे खाले। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज का देश विदेश के समाचार को सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम। तो हमारे प्यारे प्यारे जनता, हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, आपको हम लेकर चलते हैं सूरीनाम की ओर और हम जानते हैं मैक आंद्रियो की ओर, जो मनोरथ के बोली से मिनिस्टर फान यूसीसी एंड पॉलिसी के बोले है, बोले बहुत बड़का फौद करी से बोले मिनिस्टर यूसीसी के, और बोले है हनीस मनोरथ के बोले उज्जोन बोल ले रहा बिगिनिए में बड़का बात बोल ले रहा, बोले नो दैट्स मी, और बोले बोल ले रहा मुंह से नो दैट्स मी, और बोले है गा नो दैट्स मी, जो आउट मिनिस्टर रहा आरबेट के ऑफिस भी डायरेक्टर भी रहा, बोले ओकर कारण बोले बहुत क्रिटिक पावे है, और बोले वे एक बरिश में बोले भला कौन ची दिखाई पाई, बोले ओके कम से कम दो बरिश चाहेगा क्रिमिनली टाइट के बारे में, मां बोले ओमदा तू वोट तो निकाल दे से नो दैट्स मी चोरवन के, तो बोले ओकर कारण हम जनता ओके एक सुरतु के चिढ़ावे है हनीश मनोरथ के, चिढ़ावे है कि तू नो दैट्स मी मोरो बकी देखो कितना जबर क्रिमिनली तेई दसवा में होवे है। तो ये बार बोले है स्टीफन मैक आंद्रियो आउट मिनिस्टर आरबेट के बोले है, बोले इतना क्रिटिक है ओकर ऊपर सुवेल बेना और पार्लियामेंट के आदमी भी ओकर ऊपर क्रिटिक करे है, बोले क्रिमिनल बोले न अनपाक करे है, बोले सेल्फ पॉलिसी में इतना क्रिमिनल है स्कैंडल एंड कॉर्प्स पॉलिसी में, और बोले है अन अन अन मैक आंद्रियो मिनिस्टर रहमत मुते क्राइकन ओम से इंतवेरकन, बोले ओके चाहे इनवेरक होवे के भैया एक बरिश हुई के तुझे ये इनवेरक करे एन वो वेत आलमाल दा दिवनेर अ यूरिस्टिस, और बोले तखलाई कर तेल बोले मनाद रख कर कि आंद्रियो बोले है कम्युनिकासी बोले बहुत बलांगा रही कर रोल हुए है, और बोले मिनिस्टर हनीश मनोरथ बोले है बोले जब से भीतर गईल है मेरे बपाल ऐसा को करे रहा कि क्रिमिनल बोले हमें ना टच करिए, और बोले मैं आनू लांगा कानी करो बोले रहा, तो बोले है इस फन मीनिंग दैट मनीर फन कमिजेर द मिनिस्टर नॉक सीज अख्तर फलक, और बोले दिस एक देंगे दैट ये पास तुम्हारे यार में कोई दिखाई पियो, बोले एकर कारण बोले ओके क्रिएरियन बपाल स्फीयर दिस मेंशन मुतन ओक वेटन व्हाट एंड हुड बपाल दिगन कसेक्ट मुत वर्डन। तो ये बात है हनीश मनोरथ के, सब बोले भैया अब देखो भैल है का अधीन हीकल ट्विंकल सूरीनाम में भी जइयो भैया, सब दुकान में जइयो, सब दुकान में जइयो तो आप लोग पाई पइयो पैसा पाई सकियो, चाहे जो दुकान में जइए जइए एरो आप लोग यानी कि मिल सके हैं।

यहाँ पे बतावे है अधीन बोले है, बोले चाहे जोन दुकान में जइयो चिनुआ बोले पैसा वेसल करे है और सब पैसा तुरावे है, बोले उच जुआ न चाही बोले चित्रा चीज बोले संतराल बारे भैया आदमी लोन जो दुकानदारन है बहु मारक ओके एरो डॉलर काम है अपन सौदा इम्पोर्ट करे के भाई जइयो कीने न महंगा में पइयो ऐसे उस अपरे कीन के तुरे है तुरावे है तो हम लोग के देना फोर्सीतर जो अश्विन अधीन है बोले अफकुर करे चीजुआ के बारे में बोले डॉलर और कोर्स बोले चाहेगा हां तेर होए के बोले उसे अपरे बपाल करे कितना उसे बेची कोच करेगा और बोले मैन खाद खोन फेर्दर एंड फीन दैट द विंकल्स अ सोर्ट फॉर कंब्यूस सेन दैट मुझ स्टॉपन के तो तू स्टॉप कर पाइए भैया कब तू स्टॉप करिए ये तो देश में ओवरलोड एरो और डॉलर भरल ले भैया कि कोई ना पूछे वाला है तब कोई ना बेची भैया तो आदमी जाएगा अपन बैंकॉक में बेचेगा बाकी सुरीनाम देश में जब देखो तो एरो तो कॉर्थ है तो डॉलर तो कॉर्थ है आदमी कीन कीन अपन धरे भैया जो अपन सौदा पानी चलावे जैसे अपन उस अपन दुकान और सब चलाई सके है तो यहाँ बतावे है मेन खार खून फेरदर और बतावे हैगा एनडी पेयर बोले है ही बोले इकोनॉमी से साके है बोले चाहे एकर बारे में बोले खूब मोई से कंट्रोल करे के अधीर ए सेल्फ फोर्स स्टैंडर्ड इरफान ओम नेतास पुलिसिया कहतेन ओक इकोनॉमी से कंट्रोल दिनस्तन फन बॉडी कैम्स्ट फोर्स सीन बोले जैसे स्कोटू के लगावल है बॉडी कैम बोले जो आदमी जा है बोले हैगा एक रूमी साके के जो कंट्रोल दीस जा है दुकान में बोले ओके भी चाहे बॉडी कैम्स लगावे के जो ने तू देख सके को दुकानदार वासे चूकू डाल ले इसेगा क्योंकर सौदवा ना देखे कि महंगा में बेचे है नहीं चिनुआ कोला पिया दे और जे कंट्रोल करी बोली बड़ा ठंडा कोला हम कुछ ना देखिला तब बोले चाहे बॉडी स्कैम लगाओ के जो ने आदमी बोले कि तू चूकू ना ले ले भैया बॉडी स्कैमवा ऊपरा है पाका सकवा कोई डार दी कोई जान पइयो बॉडी स्कैमवा बूते भी है रे भैया अधी वत प्राचीनी मान जब आदमी मांगी चोरी करे तो सब कर सके है मैं खुद ये देंक इस नाम लग तो हमेशा फैल लगता हो द अने क्वा करप्शी माँ हम लोग के देश में करप्शी भैया करप्शी इतना ज़्यादा है जैसे जमीन में से कसाबा तो लगा डेले एक पेड़ तो ढेर के कसाबा निकले लगे जमीन में और ओकर शोर जैसे बांस यहाँ से हुआ घुसे भैया जो उच्चीन हुए के नाम ना लेवे है उच्चीन हुए के नाम ले अब तो सरनाम में बहुत बकैंत है कि हुआ करप्शी जो है कॉरस पॉलिसी श्री नाम में इसको तू और ज़्यादा लेवे भैया बहुत ज़्यादा लेवे तो निकले अंतिक करप्शन वेद फ्रॉड के बारे में बाकी तो नहीं तो है पे कहीं एन परसेंट किसी के को जबरदस्त ओके बूटू आइल है और मांगे काल्पनिक वेद निकारे तो लो भैया तो तू भैया एगो बताई है इतना ढेर काल्पनिक वेद निकारियो लेकिन खाती वेल वर्क वन सेल्फ द मेंस फाइनली डिजाइन ग्रोथ पुफ नाम लग दी पुलिसी अगेंट अब देखो कैसे रात के सिपाही एगो बड़का क्रिमिनल के भगा दे से भाई बड़का दृश्य क्रिमिनल कोलंबिया के भगा दे से अब पकड़ाई के दुगो बन है जब देखो तो सिपाही इन द पिक्चर आवे है दैट इज अ ब्लीडिंग फ्रॉम ओंस लंच सुरीनाम मेंस दैट इज अ ज्वार ज्वार ज्वार ब्लीडिंग ऐसे बातचीत हुए है आप लोग जानो है कितना मछली मरल्ला कितना मछली मरल्ला आप लोग जानो है मसाल फेस तरफ तो शर्मक्का रिफीर में अब एक मिला ही यहाँ पे बोले हैगा ऊ सोचे है ऊ सोचे है बोले ऊ सोचे हैगा बोले वही फोकस मिनिस्टर पैट्रिक ब्रुनिंग्स बोले जो तेल और खास ओली के बारे में बोले ओके फरमुदलक है कि खेमिस और साक इन एन इंटरव्यू में बताए से खेमिस है और बोले हैगा फरमुदलक फॉर और साक टरवेल द डिफिनिटिव एनालिसिस द रिजल्ट फॉर अ फिश मॉन्स्टर ऑफ 10 अगस्तस तक मुत वर्डन गेजीन.
ये बात है हमारी जनता. Volgens minister Bruning stond al meteen na de waarneming de veiligheid van de bewoners langs de riviercentraal. Ortolunjano ketra kweks koutu ke karma se kamarama se chori hoi ge bhaiya. Te kamarama se ja chori hoi jai, container ma se chori hoi jai, ghar ke piche se chori hoi jai. To skoutuwe ke haat na hai bhaan na bole lu chori kari se. Maar de jab tu de aane viswaas na hai, utna nir kwek laas hoi ge hai. Ort word gezegd, miskien is de kwek na namelijk gedumpt in de Samaka rivier, waar er zoveel vissen namelijk dood is. Ja, betalen wij hebben direct geadviseerd om geen water uit de rivier te gebruiken en geen vis te consumeren totdat duidelijk is wat er precies aan de hand is. De Ibar bole he, ik er maar weer. Gezondheidszorg bole PHOK, Pan Americans Gezondheidsorganisatie, Bureau van Gezondheid ke bole BUG ke bole hega o machri na chahi khai ke bole 15 tarikh juli mein go monster gail hai France Guyana aur bole hua pe seven on the sukri machriya kaise maral hai aur bole vervolgens bole o jayega gespecialiseerde instituut mein Frankrijk mein aur hua pe seven पिंसो के अंदर सुकरिया बताई गई है. अबे एकर अंदर सुख हुए भैया फ्रांस को याना में उकर बाद में जाएगा फ्रांकरेक में भी अंदर सुख होएगा कि मछरियन कैसे कैसे मरल है. प्यारे प्यारे जनता अब देखो यहाँ का बोले फेस तुलो जाने हैं कौन ची है तो फेस फेस भैया वो हैगा फेस सेक्रेटार स्वामी गिरधारी का बोले है फर आदमी दी फॉल्कंस फेस सेक्रेटार गिरधारी एक बरिस अयार खलीदन सामलीफन ऑन स्टोन पर अंतरीन रखेरिंग सिमोन के बोले इन मिडल्स ओम खसलाकन इन आदम नोड बोले अब सांस ना ले पावे है बोले ई बोले रहा स्वामी गिरधारी बोले रहा फेस के और हैगा फरीनिंग फन इकोनॉमिस अन एक रूम फन सुरीनाम और बोले एक बरिस होएगा बोले अब जनता बोले सांस ना ले पावे है हुएले फिन दैट इट नॉक द फ्रूक इज ओम अ डेफिनेटिव ओर्डेल द फेलन स्प्रेकंडे van het gevoerde beleid volgens het boek delen. De Gerdhari ik erbari mee bole he Jennifer Simons ke en natuurlijk Jennifer Simons enige na he Rusland tegen vice-president en jitra ekor partijen he joon okar senge sab milke kaam kare he iedereen moet zich dit luisteren wat jullie zitten allemaal in de regering. Niet alleen Jennifer Simons zitten daar. Zij is de laatste persoon. Maar iedereen verantwoordelijk om ons land namelijk beter te krijgen. Bole Simons bolera bole wo kinki assisteem. Aislim batia. Abe batari. Hanis manorat bolera. No touch me. I bole wo kinki assisteem. Santo kika bolera. Bole वो सेटिंग तो इस अपर वर्ड एक के को गब्रूक करे मैं वार ना कर पावे दोस्तों वास फॉल्कस हम यूज़ द ग्रोस्ट बलोफ्ट सामलीफन के और बोले हैगा एक रूम बतावे हैगा बोले अफ़ख़रीकन में ओल्ड बस्तुस प्रैक्टिकन इबान बोले गिरधारी प्रशंसील कमिशी बोले हैगा कि बीते हुए साल में बोले इस अब इन खस्तल भैला और बोले हैगा क्रिटिक ऑफ अन आउट द सामलीफिंग गिरधारी अब भी बोले याद करे है कि प्रेसिडेंट टाइटस आर इस्ट इस्ट पेस्कॉन्फरेंसी में बोले गिरधारी बोले हमें खूब मोई से बोले हमें याद है बोले हमें याद है इस्ट पेस्कॉन्फरेंसी में गिरधारी बोले है बोले सिमोंस बोले रहा बोले हैगा बोले एल्का कमिशन वर्ड गेसिन अस एन uitholing van de ministeries stelde hij wil ook het opheffen van deskundigen gaat volgens Gerdari terwijl was beloofd dat met alle Surinamers bolle hega
met alle Surinamers. Bolle gaan ze het land namelijk goed besturen. Hij wees daarbij de hoogste staatsschuld en de toegenomen begrotingstekort, Janta. Dan wil ik daar een baanke, feske waarmee, vrienden van de economen. Ik er waren we ijsje bolle he, kabole he ga. Oké, een adem noodbolische Surinamers ke. जनता और हम आगे जाइला एगो फरमोर द चिनुआ भैया चिनुआ भैया फरमोर द शिनेस के बारे में है तो बोलिए सरनाम के बात है जोनी ना ना ना ना इस सरनाम के बात ना ही और कुछ बात है एगो फरमोर द चिनुआ भैया रेस द श्रीलंका बेनन में सुरीनाम से पासपोर्ट था एगो चिनुआ मराई गए है और सरनाम के पासपोर्ट लेके उस श्रीलंका भर में घूमत रहा यहां बतावे भैया शिनेई से स्टार्ट बिरखर दी श्रीलंका वर्ड ऑन फूड ओके जबर ऑन फूड कर ले रहा बोले हैगा इन हेड लैंड बेनन हुकूमत और है सरनाम के पासपोर्ट से Het slachtoffer geïdentificeerd al H.O. Zong. Obole Ustad Tarik April met Cambodja met Aila. Sri Lanka ke nieuws ik er waren mee. Bole he. Bole Colombo. Batawe he. के न्यूज़ के बारे में बतावे हैं बोले हैगा सॉन्ग रेजर सामन में द ग्रुप परसोन ना श्रीलंका हेट दिस इज बकेन हु है आन है सुरीनाम से पासपोर्ट को अरे भैया हम बीते हुए दिनों बताए रही 2000 डॉलर भरियो तो पाई जइयो लिखल आ न्यूज़ में भाई हम ना हसीला मदद है पे खसे कि फॉर प्ले फॉर खेलो मंगे 2000 डॉलर फॉर प्ले फॉर खेलो पाई जइयो इन सुरीनाम सो मक्ल खातन भैया एंड दैट खात मेट करप्शन हुआ भैया कौन तो बॉडी स्कैम लगाइयो भैया अधीन उन्दर तफरा सब चीज चले है उन्दर सुकर उन देखते उन खबरों के खरोट खेल बदराखन ऑफ द बैंक रीग एंड मेट है स्लाख्तोफन इन फरमान वर गब्राख द पुलिसी फरमूद दैट एन कॉन्फ्लिक्ट ओवर द खेल मोगलिक हीव गेलेड टॉट सेन ऑनफूरिंग द ई ओ ऑनफूरिंग भले के बहुत ढेर पैसा बैंक में रहा और कहां से आइल है ओके सेवन ऑनफूर कर ले से भैया बोले हैगा ये नाम एक नाम रहा सॉन्ग ना गाना वालों का नाम रहा सो ब्लेक एंड द सॉन्ग एन बलंगरिक रोल फुलफिल्ड बिनन एन गोऑर्गेनाइजेर्ड साइबर क्रिमिनलिटेट ग्रुप criminele groep, sorry mensen. Zijn chauffeur, een kok en vriendin zijn door de Colombo. Zijn politie in bewaring genomen en worden verhoord voor het onderzoek. Zijn 5 speciale politieteams ingezet. Toe ebate rondui baje. Verscheen een tweede groep van ongeveer 20 go Chinua staatsburgers eilhe. Om maken 10 go admike pas pistool ha. Bedreig kreeg ze, mishandel kreeg ze. Ik heb baan geleken, Chinua onvoer gelegen he. Bole 2 go slachtoffer werden later vastgebonden. Handen en voeten achtergelaten in een busje in Port City. Song werd naar de onbekende locatie gebracht.

duidelijkheid, passagierske controle ke bare me en over vlees taxichauffeur ko bhaiya di de route tussen Paramaribo Almina onderhou krehe spreken over de politiecontrole bij de stalkers even van controle he obolehiga de politie hen dreig krehe aan te houden wanneer herhaaldelijk passagiers zonder geldige verblijfdocumenten in het voertuig worden aangetroffen. Ook bestaat onduidelijkheid over de hoeveelheid vleeswaren die zij mogen vervoeren. Tojon Adamien Taxi en Chalawe Hega Paramaribo Oro Albina is op Keskoto Stalker Eiver gebole. Boletor, auto me bole, hampabe. Illegale keje ke kaga chana aur gosos pabe okar bare mein bole duidelijk kari se bole tul ke hum pakadab tab de chauffeur bole hai hun ongenoegen over die situatie bole de volgens het ongeveer een week bole chiyo hoe hai bole kabhi na bole sab ne hum log ke bole om de verblijf vergunning sab ke passagiers ke mangat raha bole chauffeurs vinden dat ze verantwoordelijk zijn voor de vervoeren van passagiers en dat de politie de document controle moet uitvoeren ab chauffeur won toro jayega taxi जब कोई लेकिन बोलते क्या फरकेरिंग भैया तब हमारा उत्तम बैठ पाइयो सिपाही के काम है तब तो शफेरुवन के कहे तू जाए वो बिचारा ना पर ब्रेड कमा है पर रोटी कमा है जब कोई के पाई फरफूर कर को ले जाए और जो विली खाल है तब सिपाही काम में पकड़ के एक अरमाने में बोले है एक वो फ्रैंकलिन बोले है बोले 35 बरिस से हम टैक्सी चलाई ला रोंद अब बोले ये चीज कभी ना बहले बोले अब एक हफ्ता हुए ये सब चीजों हुए है कि सब हम मांगे हैगा शफ ओकर काबले पशाशी सुन के काबले फरब्राई फरखेरिंग हम लोग के बदराई करे हैं फ्रैंकलिन फिंदे इसे बना दे रही ऑनट्रैक फॉल्स हेम इज अ कंट्रोल पोस्ट एर यूज ऑन द डॉक्यूमेंट फॉर पैसेंजर्स टू कंट्रोलेरन वनेर हे ऑन कंट्रोल ब्लेक दैट द बेस्केडिंग फॉर अ पैसेंजर्स नीड इन ऑर्डर सेन मूड द पुलिस फॉल्स हेम बेपालन ऑफ से दी पर्सन फर्दर मग रेजन ऑफ इट फुटेक मूड फरलाटन तो ये बात तो सही बात बोली से फ्रैंकलिन तो यहां भी बतावे हैं शोफर्स टेल इन द प्लोसली ook vleeswaren worden onderschept terwijl hierover geen duidelijke regels met hun zijn communiceerd. Bolle bus met z'n van ke, bolle capaciteit 15 admin ke, of bolle usap leegja jema, een hele dosu murgi ke boutu rehe, betekent dat 15.000 rehe. Bolle ga je die dan onderscheppen, er is geen richtlijn in mensen. Suriname ke baat hoe he, maar janta Albina ke. हमारी जनता हम और आगे को अपना प्रोग्राम को लेकर चलते अब देखो भैया गयाना तो लो जानो गयाना मेरे को फेयर बोट बुड़ल रहा और ये फेयर बोट बुड़ल कितना जनता मर गए हुआ पे कितना आदमी मर गए हैं अब एक कर बारे में हुआ पार्लियामेंट में भैया ओपोजिशन लेखनी से पार्लियामेंट स्टिल ना फेयर बोट रामप भाई ओपोजिशन हुआ पे पार्लियामेंट में हंगामा मचा दीजिएगा सोमवार के और ओपोजिशन पार्लियामेंट के सिटिंग फॉर नेशनल असेंबली में जोन बोटिया का नाम एमवी बरीमा जोन बोटल ओकर बारे में उपवार वर्क के बोले हैं मिनिस्टर के ऑफ फॉर अफगान ऑन द वर्कादरी हिल्डन ओपोजिशन पार्लियामेंटारी सामन मेट अंडरन ओपोजिशन लीडर एन प्रोटेस्ट मैनिफेस्टेशन बाइटन है पार्लियामेंट्स का बाउ में स्पंदुकन एंड लुइसर लीपन ऑफ tot gerechtigheid van de slachtoffer en hun nabestaanden en eisen zij hen vertrek van de bewindslieden die volgens hen verantwoordelijk zijn voor tekortschieten toezicht op het veerdienst. Bout lamba chowna likhale dosto लेकिन जोन बोटिया चलावत रहा वो सब गांजा पी के चलावत रहा बीते हुए दिनों में आपके हम बताई बता रही कि चीजों आ कैसे ओली प्रेशन डालन इफ में से हम तो ना देखे ला डाल भैले यहाँ लिखल ओली प्रेशन डालन दुर पौष इन अमेरिकान से अनफालन ऑफ ईरान भाई हम तो सोची एकदम से पौष है पौष भैया जिस चाय पिए कॉफी पिए से बन जा भाई और बोले तो ओली प्रेशन सो मार के बोले डाल भैले यहाँ औलाद में ना भैया यहाँ पे उछने हैं बोले अमेरिका ईरान के लड़िया तरी से पौसेर भैल है स्टाक थे फिरन हुए हैं बोले ए न्यू वर्कर्स प्रेकर ओवर हेयर ओपनिंग फॉर स्ट्रेट फॉर हॉर्मोन्स ही फर्स्टरक बोले ना 13 दागन अनफालन ऑफ Iran hield Washington in het weekend de wapens stil. Amerikaanse VN-gezant verklaarde dat de VS de diplomatie wat ruimte wil geven onder handelkrikken. Teheran met bij jouw hoofdstadion.

किलो सब है जराई से भैया दुरुक्स दुरुक्स जराई से पता ना भैया कैसे चीवा जरल है बांती आंती धर के जराई से मिली फिर फेलिंग ना देखे सबन भैया तो यहाँ फिल्म पर दिखावे कि सबन 1800 किलो जराई से का कोकीन आदमी सोशल मीडिया पर हंसाई हंसे हमारे सिपाही लोग के सूरीनाम के बोले अब तो बड़े टू बोले वहाँ पे सरनाम में महंगा हो जाए वन पुको का इनवा के जगहिया पे को का इनवा के जगहिया बोले पिसान ना जराए हुई है। तो ये बात है हमारी जनता जो आप लोग को हम बता देते हैं मोनिटोरिंग विद ऑन द हाउस सोने एनर्जी सिस्टम इन ए बेनेलन फॉर दूर जामन सोना परेल तो लोग जानो नीदरलैंड में सबके है पैना सनाम के बिना लात में भी समन के लग गए अब मांगे हैं सब मिनिस्ट्री फन हिलप से ब्रोनो बोले हैं स्ट्रक्चर मॉनिटर करेगा ऑन द हाउट करे के सोना एनर्जी सिस्टम में बिना लात में जो नैन मिलो के हुआ स्ट्रोम दो रो रहे वेल सोना एनर्जी ऑफ द लॉन्ग टर्म एंड फॉर डील हर इज ब्लेफन इन्वेस्टिंग कॉस्ट ऑन फोकस हार हुक और बोले द आनलेडिंग फन सिस्टम इन वर्ल्ड मोमेंटी गफिनाशिट एट द स्टार्स बक्रूटिंग ऑफ या द लीनिंग एंड हां अंडरसुक नॉक द टोटल कॉस्टन तो ये सब सोना पनीलन फोरक रखेरिंग लगाया रहा बहुत ढेर बने लात में भैया और अब चाहे सबके अंदर हाउट करे के तब बोले है सिमोंस बोले है बोले बहुत ढेर पैसा लेवे है लगेगा अंदर हाउट के माँ भैया वही तो बात है वो तो किलो ले बाटे महंगा बाकी तेलवा भरे के भी चाहे तो तेलवा भी चाहे भरे के तो वन ऑनर हाउट ना करियो चीजों कीने के महान थोड़ो है ये मुद ओग द ऑनर हाउट खानदून गो बेबी के भैया लेक फ्रांस पुलिसी ही मंगलवार के 5 बेबी मरल है दो द बेबीज का फोन दे एगो घर में और रहेगा औराई में बोले इन सैडन फन फ्रैंक लेक में 5 बेबी के लेक मिलल है भाई तो ये देर तक यार के गो आदमी सो मार के ना दत है ऑन इन खेत हाथ के क्रीखन में सेन फ्रॉ अन ऑन बिंदन ने लेखाम इन कार्टोनन दोजन दैट मेल द फ्रांस क्रन सेन एवन oude vrouw. Zijn even oude vrouw was op dat moment niet thuis. Zij was met buikpijn naar het ziekenhuis gegaan en ze beviel daar een gezonde baby. De hoangelige baby beval kreeg. En hier aan de miakakarische vrouw leed aan zwangerschap ontkenning. Dat is een fenomeen waarbij vrouw niet doorheeft dat ze zwanger is. Het lichaam vertoont dat nauwelijks symptomen van een zwangerschap. Obele kabi kabi aurat na jan paak hem zwanger bati. Ja, hospitaal met de bolle baby ho ja he. Bolle na de ontdekking is de man met de stoffelijke resten naar de ziekenhuis gegaan. Het ziekenhuispersoneel waarschuwde vervolgens de politie die kort daar op de woning van een stel doorzag. Daarvoor vervonden zijn de overige stoffelijke resten. De vrouw ligt nog in het ziekenhuis en is nog niet ondervraagd. Haar partner is verhoord, maar niet aangehouden. Hij verklaarde niets te weten van de mogelijke zwangerschap van zijn vrouw. Het OM is een onderzoek gestart, mensen. ये बात है सेलेंस्की गए भैया अमेरिका में और साथ वो भी गए ले नेतान्याहू भी गए ले यूक्रेन के प्रेसिडेंट सेलेंस्की गए ले वे तो है इसमें दो नाल ट्रिप लगे इस तो बुसुक है ना अमेरिका से प्रेसिडेंट वोनिंग में गए ले भैया सेलेंस्की बोले हैगा बोले हमें अमेरिकन से मिलिटेरे स्टेन खत्म है ले लीफ रे फॉर इधर तू कर सकता अमेरिकन से मिलिटेरे स्टेन अब ट्रिप से बोले हैगा बोले हमें टूसेकिंग दे ऑफ द नाफो टॉप दैट ओक्रेन लाइसेंसी सो क्रेगन ऑन सेल्फ पैट्रियट रॉकेटन टू प्रोड्यूसरन और सेलेंस्की इज नॉट वाशिंगटन गोमन और वहां पे एगो अमेरिकन से सेनेटर हैगा लिंसी ग्राहम इन से फट के आर के फोकस में मेंशन आउट इट हुक से उमर अल है तो बोले कि हमें बहुत बोले रहा कि कैसे हमें चाहिए रुसलान में ओरलोक करे सिखाए रहा बोलो कर मटियां भी एली बाटी और बोले द ट्वी ऑन मुत एलका नो कंपार Voor Graham's overleden in Kiev. Ook de Israëlse premier Benjamin Netanyahu in Washington voor de uitvaart van Graham. De Times of Israel schrijft dat Netanyahu en Zelensky elkaar mogelijk in de marge van de bijeenkomst zouden willen spreken. Mensen, Turunjano, hey, Oekraïne, Iran, kego telke boot daar deze bij jou. Iran, behoud babullah, hey. Iran, bole, bole, badla chukaiga. Oekraïne, se.
Ukraine bole Rusland se mal jaat raha bole ane Ukraine ke mal jaat raha ki are matlab ki Iran jaat raha bole ohik maro botia dagi se ma falu pakke asait orlo khwa eifa khapau sir themen ze au chalo koi mil gaya.

दोस्तों इसी गीत से एक दो समाचार हम आप लोग को और सुनाएंगे। तो हमारा समाचार आज के खत्म आने को हुआ है। तो देखा जाए भैया, हम मस्कर्द ओवर फारसलान टू बाई सुपर मार्केट क्रीफल एंड में सांदल भैया सूरीनाम की ओर हम जाएला। मास्कर पहिर के गईले ओफर फालस स्क्योटिंग कूद के एगो पेरसील के स्क्योटिंग कूद के जाए के दुकान में घुटन ले मेट वापस फिर वापन एगो इन सस्तक यार के बाउनर्स के और दत मोमेंट ओके ओफर फाल करी से ओकर परसिये में भैया अब काम कर रहा है वेर दोनों ओफर फालर ओफर मिस्टर और बोले नार द स्लाब कामर खबरा वर्स एंड हंदन एंड फूटन नतुल क्लीनिंग सेजर का बांधी से भैया 21-jarige KH die zich in de woning bevond werd eveneens ook onder schot gehouden. Ook pakkelijke baan hier ze ja, al liggen ambulancebioeken liggen bij alweer terwijl de slachtoffer gekneveld waren doorzochten de daders zowel de woning als de supermarkt. Daarbij haalden ze alles overhoop. Criminelen gingen er vandoor met onbekende geldbedrag dollars, American dollars, Surinaamse dollars liggen. Maar hoe ze bakken gingen na de overval lieten de daders slachtoffer gekneveld achter en vluchten zij een geriestande auto. To no touch me. Ja, no to bole no touch me. Hama pa bhai haman urat ke bole la bole criminal saka bhail hai. Na khali ehi bahu dheed hai. Hiya pa dekho brown fees leke gai lhe ga digo krimi 100,000 SRD Lachman strat me bhaiya ego slaitarai me ghusal hai. और हंडा डाइसन लेके चल गए हैं जगन्नाथ लक्ष्मण स्त्रात में जो पहले कॉपर नाम स्त्रात रहा 4:30 सवेरे के बाद थे और जैसे मेरे गए सौंदा के मेरा के तो देखे वो दुकान फुकान सब तुरल है। तो ये बात है हमारी जनता 6 स्टूडेंट सुरीनाम वाला वो सब सीधे करता क्यूबा में दतरा के डिप्लोमा पाई गई है दोस्तों। से सुरीनाम से स्टूडेंट बहाल आर्टन डिप्लोमा ऑफ क्यूबा में से तो बहुत बहुत बधाई है आप सबके। तो यहाँ सबके नाम निकल न्यू आस्टन सेन अलान डील रोहुली टन हॉरफ साफिला विलम शर्मा कास्टेल काजल खुनखुन एंड अभिगाइल हिंजन द ग्रुप बस्तान उट 4 फ्राउन एंड 2 मानन फॉलगंद गदूरन द 7 यार द मेडिस ऑपलेनिंग हैवे गफॉलग इन क्यूबा बधाई हो। तो हमारे सुरीनाम के लोग समाचार सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम नमस्कार और प्यार भरे राम जॉनी नंबर 1 है हमारा नाम।

फिर भी कुछ तख्तक नहीं खुंतक का यार तख्तक नहीं खुंतक का यानी कि जौंट गीत हम आप लोग को सुनाएंगे हमारे यारो। और हम चलते हैं एक गीत की ओर और वो है यानी कि फिल्म का नाम है हमें जहाँ तक पता है ये अभी आप लोग को हम बताएंगे कि ये कौन सा धर्मात्मा का ये सॉन्ग है दोस्तों। आओ मिलकर इस गीत को सुना जाए और मजा उठाए कि इसमें क्या है जिसमें हेमा मालिनी और फिरोज खान ने काम किया है यार सीवन तक तख्त का हिट सॉन्ग आज हम आप लोग को भी सुनाएंगे। और कहते हैं कि तेरे चेहरे में वो जादू है।

तेरी चेहरे में, तेरे चेहरे में क्या है दोस्तों, और तेरे चेहरे में वो जादू है, और वो जादू है दोस्तों कि तेरे चेहरे दिखते दिखते और जैसे कोई डोर ततई घिजाया है, वैसे हम औतो माथी इस तोरे अगर हम घींच कर चला आते है, तो वो चेहरा में क्या जादू है दोस्तों कि बिना किसी मुसीबत से और जाकर और खींचा जा जाते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं आपकी आ जाने से क्या होता है। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम दोस्तों, और आपकी आ जाने से क्या हो जाता है, मोहम्मद अजीज साधना सरगम का गाया हुआ ये सॉन्ग है, फिल्म के नाम है खुद घर से, आओ सुना जाए। इसमें गोविंदा काम किए हैं हमारे दोस्तों।

और जाने जाने क्यों लोग मोहब्बतें और किया करते हैं। और आपको अगर ये मालूम होगा कि किस लिए लोग मोहब्बत करते हैं तो हमें आप लोग बतला सकते हैं। उसके बाद हम जानते हैं ये है यानी कि

दादाजी इस गीत को गाए फिल्म के नाम है महबूब का मेहंदी। महबूब का मेहंदी नाइटी गिल लता जी का गाया हुआ सॉन्ग है। उसके बाद हम एक बार फिर चलते हैं फिल्म धर्मात्मा की ओर। आओ सुना जाए।

और क्या तुमने भी किसी से प्यार किया है? और अगर ये प्यार किया होगा तो हमें आप लोगों ने जरूर बताना कि कौन सा प्यार आपने किया है हमारे यारों, और अगर जो किया है तो हमें जरूर बताना। उसके बाद हम चलते हैं एक और सॉन्ग की ओर कि अगर ये आपको दीवांगनी होता है तो दीवांगनी कब होता है? जब बहुत बहुत मोहब्बत हो जाता है। फिल्म के नाम है दीवाना, दीवाना फिल्म का नाम है, नीखन तक का ये फिल्म है और शाहरुख खान, दिव्या भारती इस फिल्म में काम किए हैं। आओ सुना जाए।

और ऐसा दीवानगनी और दीवानगनी किसका होता है, ऐसा दीवानगनी। और दोस्तों शाहरुख खान इस फिल्म में देविया भारती सिंह काम किया है, और अगर परदेसी के बाद जो हो जाए तो परदेसी से दिल लगाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं परदेशियों से अगर ये अखिया लड़ाना है तो ओमा कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों, लेकिन बुरी बात ये है कि अगर जब परदेसी को जाना पड़ेगा, जब अगर परदेसी को जाना पड़ेगा तो वहाँ पर प्रॉब्लम तो आ जाएगा ना यार राजा, कि अब तो सोचना है कि वो परदेसी कब आएगा, फिर से लौट कर वो कब आएगा। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ तक हम आपको कुछ परदेसी की बात बताते हैं, कि परदेसी के गीत हम आपको सुनाते हैं।

और परदेसियों से अखियां मिलाने में कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, लेकिन दिल थाम कर रखना अगर जब परदेसियों को जाना है तो हर किसी को ये सब प्यार कहाँ होता है दोस्तों, सिर्फ नसीब वालों को होता है। श्रीदेवी फिरोज खान इस फिल्म में काम किया है, आओ मिल के सुना जाए कि ये क्या है।

और हर किसी को, हर किसी को कहाँ प्यार मिलता है इस जिंदगी में दोस्तों, सिर्फ नसीब वाला को, नसीब वालों को यानी कि सच्चा प्यार मिलता है हमारे यारो। और उसके बाद हम चलते हैं एक और गीत हो जाए, वो कौन सा गीत है, हम तुम्हें चाहते हैं और कैसे चाहते हैं, दिल लगाकर चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, मनहर उदास का ये गाया हुआ ये सॉन्ग।

मेरे जिंदगी में आने को क्या लेंगे तुम। ये गीत गलत गाया गया है कि मेरे जिंदगी में जाने को क्या लोगे, और हकीकत में है उसको कहते हैं कि मेरे जिंदगी में आने को क्या लोगे। तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों कि हमारा जिंदगी में आना है तो आपके फॉरवर्ड क्या है, फॉरवर्ड के बातचीत यहाँ पे हो रहा है दोस्तों, तो आपको हम बता देना थे। तो इसके बाद हम जाते हैं चुनरिया के ओर भैया, बीबी नंबर 1 के ओर हम जाते हैं।

दूर चुनरिया उड़ गया, अगर चुनरिया उड़ गया तो क्या देखने की मिलेगा, आपके ऊपर हम छोड़ देते हैं। और चुनरिया के बाद हम चलते हैं, अच्छा सिला दिया है तूने मेरी प्यार के, जब कभी किसी ने किसी को प्यार में धोखा दिया है तो उस सब के लिए इस गीत को यहाँ से हम चलाते हैं। तो हम यही कहते हैं दोस्तों, दुनिया में धोखा तो कभी देना नहीं चाहिए, लेकिन जिस जिसको आप बहुत चाहते हैं, जिसके आप बहुत चाहते हैं खास करके, उसको कभी धोखा नहीं देना चाहिए। सच्चाई से रहना, झूठ मत बोलना, उपकर्तस्पेलमेंस और उसमें आपको जीत होगा। जिस दिन आप सच्चाई से सामना करने को तांगत रखेंगे और उस दिन आप से जबर किसी नहीं होएंगे, कभी तुझसे जबर किसी नहीं हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि सच्चाई पे रहना और अपने चाहने वालों को कभी धोखा मत देना, यानी कि धोखा देना अच्छा बात नहीं है। कभी कभी दिल में इतना चोट लग जाता है कि उसको कुछ दवा दारू उसको ठीक नहीं कर सकता है, और अगर कर सकता है तो फिर से प्यार ही ओके अच्छा कर सकता है दोस्तों। तो हम चलते हैं, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का।

छोड़ के जाने वाले जा, छोड़ दिया तुझको जिसका भरा हुआ जमीर, हम उसको मार के

और अच्छा सिला दिया है तूने और दिया है मेरे प्यार को। अगर जब किसी को धोखा देगे प्यार में दोस्तों, तो उसको ये गीत सुनना पड़ेगा। अगर धोखा दिया है तो ये गीत सुनना पड़ेगा। दार इस हेलमाल खीन एक्सक्यूज फोर फोर दैट ये आश निमांत फोर द खेक हैव गॉट अपन धोखा ना दे लो है तो कि उस पे आपको क्या डर है। चोरी करना डर है, चोरी ना करो किसका डर है। इसके बाद हम चलते हैं मिलने के, तुम कोशिश जरूर करना। मिलने की कोशिश तुमको जरूर करना है। कुमार शानू आशा जी ये गीत को आप लोग को सुनाएंगे।

इंसान टूट जाता है, लेकिन कोशिश करना हमारे यारों कि वादा ना टूटे, वादा टूटना नहीं चाहिए, और खास करके प्यार के वादा। उसके बाद हम चलते हैं झूमे जो पठान, और वो है शाहरुख खान। झूमे जो पठान, वो है शाहरुख खान और दीपिका।

वो पठान दोस्तों, और वो है हमारा शाहरुख खान। तो यहां से कौन गीत हम चलाते हैं, अगर जो किसी के दीवाना हो गया है तो उस दीवानी के लिए ये गीत हम चलाते हैं, अगर जो किसी के ऊपर दीवाना हो गया है तो सब लॉफर्स के लिए ये गीत हम यहां से चलाते हैं।

मंजूर ऐसी दीवानगी किसको होता है? उसी को होता है जो दीवाना हो जाता है। तो उसी के लिए इस गीत है कि ऐसे दीवानगी देखी नहीं कहीं। और फिल्म के नाम है दीवाना, जिसमें शाहरुख खान, देविया भारती ने काम किए है। एन बेस्ट मैन से वही खान दौर मत ओन से मोय प्रोग्रामा। और लठ लग गए है, जिसमें सैफ अली खान ने काम किए है।

0: 2022 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: Dosto, aap jante hai, pyar bhari गीतों की बहार प्रोग्राम आज फिर हमारा शुरुआत है। कुछ नई नई, कुछ पुरानी पुरानी और कुछ मीठी मीठी, स्वीटी स्वीटी, और यानी कि शेर और गाना भी आप लोग को हम सुनाएंगे दोस्तों। कि कहते हैं कि मोहब्बत किशोर, मोहब्बत किशोर नहीं सिर्फ एहसास होना चाहिए, मोहब्बत किशोर नहीं सिर्फ एक एहसास होना चाहिए, और हमें जिनसे प्यार है बस उन्हें पता होना चाहिए। हमारे प्यारे सुनने वालों, आज कुछ कॉमेडियन यानी कि कुछ चुटकुली शेर भी आप लोग को हम आज बताते रहेंगे। कि छोटे छोटी सपने है मेरी, अरे छोटी छोटी सपने है मेरा, छोटी सी है आशा, पूरी दुनिया पर हुकूमत हो मेरी, बस इतनी है अभिलाषा हमारे दोस्तों। तो हम चाहते हैं बारिश बन जाना, बारिश बन जाना, एक गीत की ओर आओ मिलकर बस सुना जाए।

ओ दोस्तों, बारिश बन जाना कुणाल कुणाल वर्मा का गाया हुआ ये सॉन्ग है और प्यार भरी मोहब्बत का पैगाम यहाँ से हम और आपके कानों तक पहुँचाते हैं। कि दोस्तों, आप लोग को जैसे मालूम है फिर भी हम बता देते हैं, ये है रेडियो फाहौन। हमारा पता है न्यूटन स्ट्रैट नंबरो 520। हम सिर्फ देहाबी प्लस रेडियो पे आप हमारा फ्रिक्वेंसी है 95.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और नहीं कनाल 8 पर, और देहाबी प्लस रेडियो पे हमारा प्रोग्राम आप सुन सकते हैं 24 घंटा। नहीं, हमारा वेबसाइट जो है पूरा विश्व में पूरा दुनिया पे आप इसको फॉलो कर सकते हैं, सुन सकते हैं, और वो है www.fahon.fm.nl पर। और हम चलते हैं, मंजिल तो एक होंगी लेकिन हर कदम पर तेरा नाम होगा। मंजिल तो एक होगी लेकिन हर कदम पर तेरा नाम होगा। तलाश खत्म हो जाएंगी मेरा, तलाश खत्म हो जाएंगी मेरी जब तेरी लबों पर मेरा नाम होगा। दत्वसलमो ये है दोस्तों कि ये दूरी हमसे अब और सही नहीं जाती। अगर जब आप दूर हो, आपकी चाहने वाले दूर हो, तो आप इसको जरूर अपने चाहने वालों को सुनाना कि ये दूरी हमसे अब और सही नहीं जाती। बस तेरे पास आने को मेरा जी चाहता है, टूट कर सारी दुनिया की रस्मों रिवाज को तुझे अपना बनाने को जी चाहते हैं। और प्यार की बातें तो करना हमारा काम है। चिरागों में इतना नूर ना होता, चिरागों में इतना नूर ना होता तो तन्हा दिल मजबूर ना होता। हम आपसे मिलने जरूर आते अगर आपका घर इतना दूर ना होता। तो हम चलते हैं, छाया है यो दिल पे क्या नशा है, दिल है तुम्हारा कविता कृष्णमूर्ति का ये सॉन्ग है। आओ मिलकर हम सब सुना जाए।

0: और कृष्णामूर्ति, कविता कृष्णामूर्ति, शान का गया हुआ गीत है, छाया है, और ये छाया है जो दिल पे क्या नशा है। और कुछ आज हम नई पुराने गीतों से आपको हम आज सेवा करेंगे दोस्तों, कि कहते हैं उनका गुस्सा, उनका गुस्सा और मेरा प्यार, उसका गुस्सा और मेरा प्यार एक जैसा है, क्योंकि ना उसका गुस्सा कम होता है और ना मेरा प्यार कम होता है। हमारे सुनने वालों, और गुस्सा में तो प्यार करना भी आता है और कभी प्यार में गुस्सा करना भी आता है, कि कहते हैं हमसे दूर होकर हमारी पास हो तुम, हमसे दूर होकर, हमसे दूर होकर हमारे पास हो तुम, हमारी सुनी जिंदगी के आस हो तुम, कौन कहता है हमसे बिछड़ जाएंगे हो तुम, हमारी हमारी यादों में हमारे साथ तुम हो और सदा साथ ही रहेंगे। और ये सिर्फ लफ्ज कह सकते हैं दोस्तों, कि कहते हैं जब बारिश के मौसम आते हैं तो बारिश में और अपने चाहने वाले को याद करते हैं लोग, क्योंकि अकेले महसूस होता है, और खास करके विंटर के महीना में, कि ये बारिश का मौसम बहुत तड़पता है, ये बारिश का मौसम बहुत टपट्टा है, वो बस मुझे ही दिल से चाहता है, लेकिन वो मिलने आ भी तो कैसे आवे दोस्तों, उसके पास ना कोई गाड़ी है और ना कोई छाता है। हम चलते हैं कुणाल वर्मा के ओर, रिमझिम से ये सावन। अगर जब हम मौसम की ओर बढ़ते हैं तो रिमझिम का ये सावन और बारिश का, तो ये दोनों तो साथ में चलता है ने हमारे दोस्तों। आओ चला जाए।
1: बचाने तू मुझे, क्यों बचाया?
2: अरे तुम पागल हो गई हो?
1: वो कहता था प्यार करता हूँ, शादी के मंडप से भाग गया साला।
2: तो ये प्रॉब्लम है। ओके बाबा, सॉरी।
0: सॉरी बोलने में आप मत चूक जाना।
2: ट्रेन 6 घंटे में यहाँ पे।
0: एक सॉरी से और क्या क्या काम न बन जाते हो दोस्तों।
2: प्रॉमिस।

और दोस्तों ये रिमझिम ये सावन रिमझिम नौ यानी कि जुबिन नौतियाओ और दीक्षा सिंह का कुणाल वर्मा का गाया हुआ सॉन्ग है कि कहते हैं दिल में हो आप तो कोई और खास कैसे होगी दोस्तों। जब अगर किसी से आप प्यार करते हैं तो आप ये शेर जरूर उसको सुना देना कि दिल में हो आप तो कोई और खास कैसे होंगे, यादों में आपकी शिवा कोई पास और कैसे होंगे। और वो भी कहते हैं कि वो जो हमारे लिए कुछ खास होता है, वो जो हमारे लिए कुछ खास होता है, जिनके लिए दिल में एहसास होता है, चाहे वह कितना भी दूर कर जाए, चाहे वह कितना भी दूर कर दे, दूर रह के भी वो दिल के पास ही रहता है। हमारे प्यारे सुनने वालों और कभी प्यार करने वालों को रास्ते में कभी रुकना नहीं, यानी कि प्यार का जो यानी कि उसका स्नेल हेथ दोस्तों बहुत लंबा होता है कि कहते हैं कि प्यार की राहों पे चलना आसान नहीं, प्यार की राहों पे चलना आसान नहीं। मैं भी कल चल के देखा है हमारे दोस्तों, मुझे तो रास्ता ठीक ही लगा है। और हम चलते हैं संजना इस लव, मैं प्रेम की दीवाना हूँ, एक रोमांटिक सॉन्ग फन कृष्णा कुमार कन्नाथ का ये सॉन्ग है।

Oh, Sanjana, I love you. Sanjana, I love you. हम नहीं कहते दोस्तों, आप अपना संजना को कह सकते हैं। और ये गीत है मैं प्रेम की दीवाना हूँ, रोमांटिक लव सॉन्ग फन कृष्णा कुमार कुनाथ का और कायस चित्रा का ये सॉन्ग है। और दोस्तों कहते हैं वह कितना भी बदल जाए मेरे मोहब्बत कभी नहीं बदलेंगे, ये हमारा पैगाम है। दूरियां बहुत है पर इतना समझ लो दोस्तों, दूरियां बहुत है पर इतना समझ लो, पास रहकर कोई रिश्ता खास नहीं होता। तुम मेरे दिल के इतने करीब हो कि मुझे दूरियों के एहसास नहीं होता। कि कहते हैं जुल्फों पे फूलों को सजा कर रखना, जुल्फों पर फूलों को सजा के आए, चेहरे से दुपट्टा उठा के आए, किसी ने पूछा आज बड़ी खूबसूरत लग रही हो, हमने कहा शायद आज नहा कर आई हो। तो दोस्तों हम चलते हैं, थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है और सिद्ध रात मन मल्होत्रा का ये सॉन्ग है, निहा शर्मा का गाया हुआ सॉन्ग। आज आप लोग को कुछ नए गीतों के सॉन्ग हम आज आप लोग को सुनाते दोस्तों, आओ मिलकर सुना जाए।

प्यार तो हमें भी इस गीतों से होने लगा है दोस्तों, और नेहा शर्मा का गाया हुआ ये गीत है, और हम चलते हैं कुछ प्यार भरी और कुछ शायरी की ओर। कहते हैं बहुत लकी हूँ मैं क्योंकि, बहुत नसीब वाला हूँ मैं क्योंकि आपके साथ जो मिला है मुझे। और कहते हैं मिलना इफ्तिताक था, मिलना इत्तफाक था, बिछड़ना नसीब था हमारे प्यारे दोस्तों। मिलना इत्तफाक था, बिछड़ना नसीब था, वो उतना ही दूर चला गई जितना करीब था। हम उनके, हम उसका देखने के, हम उसके देखने के लिए तरस रहते थे हमारे यारो, जिस शख्स ने हथेली पे हमारा नसीब था, जिस शख्स की हथेली पे हमारा नसीब था। और कभी कभी जब उम्र लोग को, उम्र जब बढ़ते हैं तो उम्र के साथ ही चलना चाहिए, कि कहते हैं उम्र के रहे, उम्र की राह में जपत बदल जाती है, उम्र के राह में जय बात बदल जाती है, वक्त की आंधी पे हालात बदल जाती है। सोचा था हूँ काम कर करके रिकॉर्ड तोड़ दूँ मैं, कमबख्त पैसा ही सलारस ही देख के हर ख्याल बदल जाते हैं। अरे भैया जब आमदनी कम है तो ख्याल तो अपना बदलना चाहिए। हम जाते हैं अरिजीत सिंह, श्रिया घोषाल के ओर, शाहरुख खान और दीपक का इस फिल्म में काम किए हैं, मनवा लागे, फिल्म के नाम है हैप्पी न्यू ईयर। और हैप्पी न्यू ईयर में क्या होने वाला है आप सुनिए।

और मनवा क्या क्या, मनवा कहां कहां ना लागे दोस्तों। फिल्म के नाम है हैप्पी न्यू ईयर ब्यूटीफुल सॉन्ग फन अरिजीत सिंह श्रिया घोषाल का, जिस फिल्म में काम किया शाहरुख खान और दीपिका दोस्तों। और प्यार भरी प्रोग्राम यहां से हमारा चलते हैं रेडियो फाहुन के माध्यम से। हर एक काम के लिए आप हमें तार कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07 3 5 20 20 4। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा पता है न्यूटन स्ट्रांड न्यूमरो 25 देन हाँ शहर से इस प्रोग्राम को हम प्रस्तुत करते हैं। मोहब्बत भरी प्यार भरी प्रोग्राम हमारा यहां से चलते हैं। मोहब्बत का कोई रंग नहीं है हमारे यारो, मोहब्बत का कोई रंग नहीं है, फिर भी वो हसीन है। ये तो वैसे ही है ना भाई, कि मोहब्बत का कोई रंग नहीं फिर भी वो हसीन है, उसके सामने दुनिया की हर रंग अरे फिक्का से है दोस्तों। कि मोहब्बत के रंग की तरह खूबसूरत है, कि कहते हैं कभी हम मिले तो भी क्या मिले थे, कभी हम मिले तो भी क्या मिले, वही दूरियां वही फासले, ना कभी हमारे कदम बढ़े ना कभी तुम्हारे झियक गई तुम्हारे यादें गई है हमारे यारो। कि कहते हैं दिल दो तो किसी एक को दो दोस्तों, दिल दो तो किसी एक को दो, अरे वो भी किसी नेक को दो, अगर देना है तो किसी नेक को दो, जब तक मिला नहीं जाए और बस मेहनत करते रहो और करते रहो। हम चलते हैं इस कदर तुमसे हमारे, इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया है, और इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया है। लव सॉन्ग दर्शन रावल का न्यू सॉन्ग है फन दित्यार मेंस, और हम चलते हैं इस गीत की ओर।

और दोस्तों, प्यार भरी गीतों का बहार प्रोग्राम हमार चलते हैं और कहते हैं कि इस कदर का ये गीत है, तुमसे हमें प्यार हो गया है, इस कदर हम तुमसे हमसे और प्यार हो गया है कि कहते हैं पहले वो मेरा दोस्त थी, अब जाके मोहब्बत बन चुकी है। कभी कभी दोस्त के भी मोहब्बत हो जाते हैं कि पहले वो मेरी दोस्त थी, अब जाके मोहब्बत बन चुकी है। पहले सिर्फ उसे याद करती थी, पहले सिर्फ उसे याद करती थी और अब तो आदत बन चुका है। हमारे यारो, रेडियो फाउन के माध्यम से इस प्रोग्राम को हम प्रस्तुत करते हैं कि कहते हैं धड़कते हुए दिल का करार हो तुम, धड़कते हुए दिल का करार हो तुम, इन सजी महफिल के बहार हो तुम, तरसती हुई निगाहों का इंतजार हो तुम, मेरे जिंदगी का पहला प्यार हो तुम। हम चलते हैं अनुराधा पौडवाल की ओर और सोनू निगम की ओर। आपकी याद आई तो दिल क्या करे।

और आपकी याद आई तो दिल क्या करे, माना कि तुम्हें थोड़ा परेशानी करते हैं, लेकिन प्यार भी सबसे ज्यादा तुझे तो ही करते हैं। खुद भी रोता है और मुझे भी रुला देता है, ये बारिश का मौसम उसके याद दिलाते हैं। हमारे प्यारे सुनने वालों, दोस्तों हम जानते हैं वादा रहा सनम आई लव यू फिल्म के नाम है खिलाड़ी, इस गीत को गाया है अभिजीत भट्टाचार्य एंड अलका याग्निक। आओ मिलकर सुना जाए इस सॉन्ग।

भूले अफसाने फिर से याद आए, रफ़ी साहब की आवाज़ में पेश हुआ ये गीत हमने पेश की आपके लिए। उम्मीद है गीत आपको अवश्य अच्छा लगा होगा, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है बहुत दिन हुए ये गीत हमने चलाए थे, आज फिर याद हो गया, हमने सोचा फिर आपको सुना दूँ। चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं और वो ये है बजरिया के बीच। बस सुनिए लता जी की हाहाकार।

मैं गले लग जाऊं। बजरिया के बीच हमने कहा लता मंगेशकर जी नहीं लेकिन आशा जी, आशा जी की आवाज़ में सुनाया गया फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में है। चलिए अगला गीत पेश करने वाले हैं और वो ये है, ये गीत दरअसल में यहाँ पर लिखा है कि इस एक्ट्रेस की आंखों को देखकर बहुत से बॉलीवुड वाले फिदा हो जाते थे, पता नहीं हाँ है या ना है, लेकिन सोचिए ये रायश्री है उस ज़माने की एक्ट्रेस 60s का। बाद में वो कहाँ चले गई, हाँ पता चला अमेरिका चली गई, लेकिन उसके बाद फिर कुछ नहीं पता चला इनके बारे में। रायश्री का ये फिल्म है और एक्टर इस वक्त मुझे मालूम नहीं है, शायद याद हो जाएगा बाद में मैं, लेकिन चलो वो गीत तो आपको सुनाते हैं जिनकी आंखों को देखकर बॉलीवुड वाले फिदा हो जाते थे।

तूने मोहब्बत से मेरा दिल भर दिया, रफ़ी साहेब और लता जी आपको सुनाएं। ये गीत हमने निकाले हैं आप ही के लिए शुभकामना के साथ। लीजिए, आप ही के लिए हम पेश कर रहे हैं ये गीत।

वन के पंछी गाए प्यार का तराना। लता जी और साथी मिलके आपको सुनाएं ये शानदार गीत। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं आपके लिए, ये एक बहुत पुरानी गीत है। जी हाँ, बहुत पुरानी गीत है, लेकिन इसे जितने बार भी सुना जाए लगता है हाल ही में रिकॉर्ड हुई है। तो आप सोच रहे होंगे कौन सा गीत है कि यही लगेगा कि ये गीत हाल ही में रिकॉर्ड हुआ है।

दिन हो या रात हम रहे तेरे साथ, रफी साहब और सुमन कल्याणपुर फिल्म मिस बॉम्बे में से निकाल कर हंसराज बहल के साज पर हमने पेश की आप ही के लिए। आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, आपका हृदय से स्वागत है। तो अगर जहाँ आप चुन ही हैं तो चलिए हम आपको मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस का एक गीत सुनाते हैं।

माइक मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए दो होंठ हिले किसी ने मुझे ऐप की कि गंगा, ये गीत तो आप अभी चलाए चुके हैं। हाँ, बात थोड़ी सी सही है, दरअसल में वो भी लता जी की थी। जी हाँ, वो लता जी नहीं, वो भी मुकेश का था और धुन एक ही है लेकिन शब्द अलग है। वो था ऐ प्यार मुझे रो लेने दो, अब ये था दो होंठ हिले। मुकेश जी की आवाज़ में दोनों गीत गाए गए हैं मुकेश द्वारा, लेकिन शब्द अलग है, धुन वही है। तो यही बात है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन विभिन्न हेल खुए लो इस तरह हमके नाम आखिर तो नाम लेवे के बाकी तुरंत कान बहुत तेज है और दिमाग बहुत तेज है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत पेश करने वाले हैं और वो ये है, चलो सुनते हैं लता जी और सिर्फ लता जी है।

जी हाँ, लता जी की आवाज़ में हम आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, यह फिल्म नौशेरवान आदिल का ये गीत हमने पेश किया है। इस तरह से आ रहा है ये शानदार गीत है।

0: मेरी आवाज़ के पीछे चले आओ, रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत हमने पेश किए। जी हाँ, तो चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से आ रहा है, देखते हैं लता जी की आवाज़ में एक बार फिर।
1: शर्मा
0: नहीं रफ़ी,

फिल्म शहनाई निगतिन फिरें सस्तख का ये फिल्म है और हमने पेश की इस फिल्म में से ये गीत निकाल कर। तो हाँ, www.fm.nl पर आप चून हैं, जो लोग चून की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। आप हैं तो मैं हूँ, और जब आप नहीं होंगे तो फाउन हिंदुस्तानी भी नहीं रहेगा रेडियो, तो आप ही से हम सब हैं। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुने। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, वो ये है इस तरह से।

सनसना सनसना सनसनन लता जी और साथ ही मोहम्मद रफ़ी के साथ ये गीत हम पेश किए ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, ये हैं उदित नारायण जी।

उतनी नारायण जी की आवाज में हम ये गीत आपको सुनाए, मेरे लिए तूने तुम्हें रब ने बनाया है, और शाम के कार्यक्रम में हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, और वो ये है इस तरह से।

अरे वाह क्या बात है, एसडी बर्मन के साज पर फिल्म बम्बई का बाबू में से निकाल कर लता जी की आवाज़ में हम पेश किए ये शानदार गीत। चलिए अगला गीत चलाने वाले हैं वो माइती मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस। सुनिए इस तरह से।

प्रिया तुसे नैना लागी रे, लता जी की आवाज़ में ये गीत हम आपको सुनाए हैं एस डी बर्मन के साज पर, और था फिल्म गायद में से निकाल कर। तो लीजिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, बस आपकी जानी पहचानी गीत है, जी हाँ एक बार फिल्म आदमी में से निकाले हैं लता जी की आवाज़ में।

फिल्म आदमी में से नौशाद अली के साज पर लता जी की आवाज़ में हमने पेश की कारी बदरिया, और लता जी के बाद हम पेश करते हैं एक बार फिर आशा जी को, और आशा जी कह रही है चेहरे पे खुशी आ जाती है, तो चलो सुनते हैं और जानते हैं कि चेहरे पे कितनी खुशी आती है।

लता जी की आवाज़ में हम आपको सुनाएं, जहाँ तक मेरा ख्याल आप बहुत इत्मीनान से सुन रहे होंगे ये गीत और बहुत सुन रहे थे ये शानदार गीत उफ़ुरफ़ान हिंदुस्तानी रेडियो। अच्छा चलिए, गीत तो समाप्त हो गया, तो गीत अगर जो समाप्त हो गया तो हम पेश करते हैं अगला गीत, और जिसमें लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार है, रूप तेरा मस्ताना नेगेटिव ट्विन सही सुनता।

दिल की बातें दिल ही जाने। लता जी और किशोर कुमार जी मिलके आपको सुनाई ये शानदार गीत, और हमने पेश की फिल्म रूप तेरा मस्ताना में से निकाल कर 1972 का ये फिल्म है, आनंद बख्शी की लिखी हुई गीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। चलो हम पेश करते हैं, बढ़ते हैं चोरी चोरी के ओर। फिल्म चोरी चोरी में जितनी गाने हैं सब बहुत प्यारा है, उनमें से एक गीत मैं निकाल रहा हूँ, बस आप सुनिए कौन सा गीत। लता जी और मन्ना डे जी,

पंछी बनूप बन के फिरू, लता जी की आवाज में फिल्म चोरी चोरी में से निकाले हैं ये शानदार गीत, हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। चलिए आपको धीरे धीरे मैं कहीं और ले जा रहा हूँ, जी हाँ धीरे धीरे कहीं और ले जा रहा हूँ, और आपको सुनाता हूँ ये गीत।

द मैन विद गोल्डन वॉइस, तलत साहब ने आपको सुनाए हैं, उनके आगे गमे दिल भुलाना पड़ा और ये शानदार गीत छुपाना पड़ा। और ये शानदार गीत हमने पेश किया वो फरफाहुन हिंदुस्तानी रेडियो www.fmfm.nl पर। आप चुने जो लोग चुन के इन मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। हमने कहा था धीरे धीरे आपको पीछे लग जाएंगे सालों में, तो लीजिए हम आपको ये सुना रहे हैं। क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये सुनाऊँ इस तरह से?

हाँ, दिल से मिला ले दिल प्यार कीजिए, और ये गीत चला लता जी आपको सुनाए हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए, हमने कहा था आपको पीछे पीछे ले जाएंगे, पीछे ले जाएंगे, तो लीजिए पीछे ले जाते समय हम आपको ये भी सुना रहे हैं उसी समय का। ये बहुत प्रचलित गाना था, बहुत पॉपुलर था, कौन इसे नहीं जानता।

दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी है, शमशाद बेगम की आवाज़ में फिल्म बहार। जी हाँ, फिल्म बहार में से निकाले हैं ये शानदार गीत, बहुत पुराने गीत जहाँ तक मेरे आए, मेरे ख्याल है कितने लोग यही गाना सुन सुन कर आज बड़े हो गए हैं, बूढ़े हो गए, आजा हो गए, आजी हो गए, नाना हो गए, नानी हो गए, यहाँ की पर राजा पर नानी भी हो गए होंगे, और ये शानदार गीत हम आपको सुनाए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। उम्मीद है इस गीत से आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो गए होंगे। क्या ख्याल है, फिल्म फिल्म फिल्म, बिन फेरे हम तेरे, नेगनती नेगनन सैफ तक का ये गीत उषा खन्ना के साज पर रफ़ी साहब की आवाज़ में। जी हाँ, ये गीत हो सकता है बहुत दिनों बाद आज आप सुनोगे, मैं भी बहुत दिनों बाद ये गीत चला रहा हूँ, लेकिन ये भी मुमकिन है कि शायद हमारे सहयोगियों ने चलाए होंगे, तो मेरी बदनसीबी है, लेकिन गीत तो मैं चलाऊँगा अवश्य। रफ़ी साहब की आवाज़ में फिल्म बिन फेरे हम तेरे।

दोस्त बन के आए हो, दोस्त बन के रहना है रफ़ी साहब। और उषा खन्ना के साथ पर, उषा खन्ना जी के साथ खुद निकती नेक नसीब तक का ये गीत हमने पेश किया ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं जी हाँ, और वो ये है

0: इन प्यार की राहों में ये शानदार गीत चलाया कार्यक्रम में हमने पेश की। हमने शायद तेरे गीत रखे हैं, इसे हम चुन नहीं किए हैं, सुने भी नहीं हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं उसका टाइटल, अच्छी भी लगती हूँ सुंदर भी लगती हूँ। तो चलो सुनते हैं कि लता जी क्या कह रही है। फिल्म है गरम खून, अरे वाह क्या बात है, फिल्म है गरम खून और लता कह रही है मैं अच्छी भी लगती हूँ सुंदर भी लगती हूँ। तो चलो सुनते हैं।
1: अच्छी भी

आ जा रे आ जा सनम, अच्छी भी लगती हूँ, सुंदर भी लगती हूँ। शंकर जय किशन के साज था। जी हाँ, निकली ताकत का ये फिल्म है। फिल्म गरम खून, जैसे गरम खून है वैसा फिल्म की गीत भी है, और लता जी आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, और वो ये है, इस तरह से आ रहा है। जी हाँ, मैथिली मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, फिल्म पूर्णिमा में से।

मैथी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी फिल्म पूर्णिमा में से निकाल कर ये गीत हम पेश किए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलो देखते हैं हम अगला गीत चलाने वाले हैं और वो ये है, जी हाँ, फिल्म मिलाप में से निकाल रहे हैं, ये भी निकितिन ट्विन से ही तक का है, ब्रिजभूषण के साज पर। और चलिए हम आपको सुनाते हैं मैथी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, करोड़ों के दिल पर राज करने वाला।

वाह क्या गीत है, हम आपको सुनाएं शानदार गीत फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के शाम के कार्यक्रम में। जैसे मैंने कहा, अनुराधा पौडवाल और बाबुल सुप्रियो। फिल्म का नाम है ढाई अक्षर प्रेम का। जी हाँ, अगर आपने प्रेम की है तो ढाई अक्षर प्रेम का आपको अवश्य मालूम होगा। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है, ये फिल्म तो आपने अवश्य देखे, फिल्म डर। फिल्म डर तो आप देखे होंगे, लता जी और उदित नारायण मिल के आपको ये गीत सुनाते हैं शिव हरि के साज पर। तो आप शायद सोचोगे कि शिव हरि कौन है। शिव हरि वही जो संतूर वादक है, मशहूर संतूर वादक शिव कुमार शर्मा, और हरि है हरि प्रसाद चौरसिया जो बांसुरी बजाता है। इसलिए नाम लंबा था तो छोटा कर दिए शिव हरि के साज पर। और ये शिव हरि, यही दोनों ने फिल्म, क्या नाम है, दिमाग से निकल गया अभी था, अच्छा अभी हाँ, फिल्म सिलसिला में ये दोनों भी साज बजाए थे। चलिए उन्हीं की साज पर हम आपको सुनाते हैं ये गीत।

तू मेरे सामने, या लता जी और उदित नारायण मिल के आपको सुनाएं ये शानदार गीत। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है ये। जी हाँ, इस तरह से आ रहा है, क्या ख्याल है? मेरी कुमार सानू और अलका याग्निक फिल्म बाजीगर में

फिल्म बाजीगर में से निकाले ये टाइटल सॉन्ग पेश किया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा कुमार सानू और अलका याग्निक आपको सुनाए। प्रेम प्यार की मोहब्बत की बातें, दूर जाने की बातें, बुलाने की बातें, बहुत सारी बातें हो चुकी प्रेम प्यार मोहब्बत में। लीजिए मैं कपड़ों की बात करूँगा तो आप सोच रहे होंगे अरे गंगा क्या हुआ तुम्हें बुखार लगा? जी नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ थोड़ा गला में खराश है लेकिन ठीक है। चलिए मैं कपड़ों की बातें कर रहा हूँ, अगर जब कपड़ों की बातें हुई तो क्या ख्याल है?

0: जी क्या बात है, सुनिधि चौहान, सुनिधि चौहान आपको भी सुनाए हैं। चाहो जाए दिल्ली चाहे आगरा, नहीं करना झगड़ा क्योंकि मिलेगा घाघरा, तो क्या ख्याल है। चलिए अगला गीत, अगला गीत हम चलाने वाले हैं, चलते हैं इस तरह से, सुनिए। ये भी एक धमाकेदार गीत है।
1: हाय हाय हाय हाय।

वह क्या बात है, मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। बिहार लूटने के बाद क्या ख्याल है अगर मैं आपको ये सुनाऊँ?

0: Teli kamat betu ye kamat bant aur bisalonat yes.
1: अच्छा तो ये वाक्य आपने सुने ना जब पड़ोसी के चूल्हे में आग ले ले, भाई ये शानदार गीत हम आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और ये है देखा जाए फिल्म जीत का, फिल्म जीत में से निकाले हैं, चलो सुनते हैं ये गीत।

वाह क्या बात है यारा ओ यारा, आपको सुनाया गया फोन के कार्यक्रम में। और गाने वाले थे अलका याग्निक जी और विनोद राठौर। चैनल पर आप चून हैं, जो लोग चून के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए हम आगे चला रहे हैं और आपको सुना रहे हैं ये गीत, इस तरह से आ रहा है।

कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, आप थोड़ी रेस्ट कर लिए होंगे यानी थोड़े आराम कर लिए होंगे, अगर आराम कर लिए हैं तो लीजिए, हम आपको फिर एक बार स्पोर्ट्स हॉल से दूर रखते हैं ना, इस तरह से सुनिए।

गीता राय जी और आशा जी मिलके आपको सुनाएं ये शानदार गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। और गीत हमने निकाले हैं निकली फेम फेव तक से ओपन एयर के साज पर और पेश किए ये शानदार गीत। आपको एक बात बता दूं, शायद आपको अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, लेकिन फिर बता देते हैं। उस समय मैं 7 साल का था, जिंदगी में पहली बार ये फिल्म हमने देखे हैं थिएटर में। वैसे तो 83 साल में देखे हैं, लेकिन थिएटर में पहली बार गए हैं थिएटर लुक्सोर में गए ये फिल्म को देखने। बहुत अच्छा लगा था थिएटर में बैठ के, एक कुर्सी पर अच्छा लगा था। वैसे तो बांगी पर बैठ कर देखते थे। बहरहाल ये गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।

माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म सुनहरा संसार में से निकाले हैं नेकदी फैफन सैफन तक नौशाद अली के साज पर। और लता जी।

लता जी और मैं तू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हैं फिल्म सुनहरा संसार में से निकाल कर 1975 का ये गीत नौशाद अली के साज पर हमने चलाए हैं। चलिए अगला गीत क्या ख्याल है, शाम का वक्त है तो लीजिए इस तरह से।

देखती हूँ जिधर आशा जी। जी हाँ, आशा जी फिल्म हांगकांग में से निकाले हैं निगेटिन ट्विन शस्त्र और ओपेन नैयर के साथ पर हमने चलाए हैं। चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं, जब आप भी हैं और मैं भी हूँ तो क्या ख्याल है।

कारण कैसे हो मुकेश जी और लता जी मिलके आपको सुनाए मदन मोहन के साज पर। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, वो है क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये सुनाऊं। महेंद्र कपूर जी, फिल्म का नाम है सम्राट, संगीत सम्राट तानसेन। जी हाँ, फिल्म का नाम है संगीत सम्राट तानसेन, फिल्म का नाम है निगेतिन तुई शस्त्र से हम निकाले हैं। इस तरह से हम आपको सुनाते हैं।

ये दुनिया है मेरी, महेंद्र कपूर जी और लता जी आपको सुनाए ये शानदार गीत। और फिल्म लिखती तो इसे कहाँ देखते हैं संगीत सम्राट तानसेन के साज फिल्म संगीत सम्राट तानसेन में से निकाल कर हमने पेश किए कल्याण जी आनंद जी के साज पर ये गीत था। चलिए अगला गीत है हम चलाने वाले हैं आपके लिए, बस आप भी हैं मैं भी हूँ, आप सुन रहे हैं मैं चला रहा हूँ, तो क्या ख्याल अगर आपको ये सुनाऊँ इस तरह से। अच्छा जी और रफी

इजाज़त हो तो सुना दो, ये गीत चला ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, आशा जी और रफ़ी जी ने आपको मिल के सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, देखते हैं द मैन विद द गोल्डन वॉइस, द मैन विद द गोल्डन वॉइस क्या ख्याल है।

एवरग्रीन, जी नहीं एवरग्रीन नहीं, लेकिन द मैन विद द गोल्डन वॉइस, तलत साहब ने आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश किए। जब आप भी हैं मैं भी हूँ तो क्या ख्याल है, ये गीत तो आप बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन आज के कार्यक्रम में फिर भी मैं चला रहा हूँ फिल्म अनुपमा में से निकाल कर नई खतीन सस्तक, और हेमंत कुमार के साज है लता जी है।

0: उठो ना, गाओ।
1: चलो मुँह हाथ धो लो, याद नहीं आज दावत पे जाना है।
0: अभी तो बहुत वक्त है, उम्मीद से ज्यादा मिल जाए तो ऐसा मालूम होता है

धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार। फिल्म अनुपमा में से निकाले हैं हेमंत कुमार के साथ पर लता जी ने पेश की और निगेटिव सेशन सेस्त का ये फिल्म 1966 का ये फिल्म है। चलिए जहाँ आप भी हैं मैं भी हूँ तो आपको हम क्या सुनाते हैं। ये गीत हमने चुन की है लेकिन हमने सुना नहीं, किशोर कुमार जी आपको सुना रहा है। फिल्म है देखते हैं संसार में से निकालते हैं चित्रगुप्त के साज पर। क्या ख्याल है एवरग्रीन किशोर कुमार?

हाथों में किताब, बालों में गुलाब, जबरदस्ती की प्यार, हम आपको सुनाए हैं ये चटपटा चुटकुला गीत, एवरग्रीन किशोर कुमार ने आपको सुनाए हैं ओवर फोन हिंदुस्तानी रेडियो। अगर ये आपको किसी से प्यार है और आप उनके आँखों की तारीफ करना चाहते हो और आपको नहीं पता है कि उनके आँखों की तारीफ कैसे किया जाए, तो चलिए हम आपको सुनाते हैं। मैं आपको सुनाता हूँ, रफ़ी साहब सुनाता है आपको इस तरह से। मदन मोहन के चासाज पर फिल्म चिराग में से निकाल कर निगति निघ्न शस्त्र 1969 का ये गीत।

तेरी आंखों के सिवा इस दुनिया में रखा किया है। रफ़ी साहब की आवाज़ में लता जी भी साथी और हम आपको सुनाए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं। ये बंदा जैसे रफ़ी साहब कभी शराब नहीं पीता था, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है किशोर कुमार जी भी शराब नहीं पीता था, लेकिन मुझे पता नहीं पक्का, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल वो भी शराब नहीं पीता था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये गीत गाए हैं, एवरग्रीन किशोर कुमार, फिल्म कटी पतंग में से हम आपको सुना रहे हैं।

एवरग्रीन किशोर कुमार ने आपको सुनाए हैं, ये शानदार गीत हमने पेश किए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जी हाँ फिल्म कटी पतंग में से निकाल कर। चलिए माई तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस इस तरह से

वाह क्या बात है लता जी। और माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हैं, फिल्म झूला में से निकाल कर ये शानदार गीत हमने पेश किए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं और मैं भी सुन रहा हूँ और आप मैं चला रहा हूँ आप सुन रहे हैं, आप चुन है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर।

मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी लता जी और मैं मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस, रोटी कपड़ा मकान में से आपको सुनाए हमने ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं और आपका हृदय से स्वागत करते हुए, चलिए हम आपको ये गीत सुना रहे हैं। क्या ख्याल है, इस तरह से आ रहा है।

शंकर जय किशन के साज पर माइती मुकेश करोड़ों के दिल पर राज करने वाला आपको सुना है निकती एन सही फिल्म का ये गीत 1971 का और फिल्म नादान में से चला। चलिए अगला नंबर हम चलाने वाले हैं, क्या ख्याल है, ये लंबा चौड़ा गीत सुनिए रफ़ी साहब की आवाज़ में।

0: देख लीजिए, अब कोई नहीं कह सकता कि सर दर्द से अलग था।
1: शाबाश, ये लीजिए आपका इनाम।
0: शुक्रिया शुक्रिया।
1: मुस्तफा बाबा, जरा आंखों पर पट्टी बंधा लीजिए ना।
0: बांधिए बांधिए।
1: कल रात को मैं फिर आपके घर आऊंगी।
0: किसी और की गर्दन काटने का इरादा है क्या?
1: नहीं नहीं, सिर्फ आपसे मिलने।
0: जरूर आइए जरूर आइए।
1: चलिए
0: चलिए चलिए।

हम तेरे चिराग है, जलाए जा बुझाए जा। तवारीख गवाह है, यानी खुशकिद ने इतिहास गवाह है। अली बाबा एंड द 40 Thieves में ये गीत हमने निकाले हैं। आओ, ये असली कहानी है, सही कहानी है, क्योंकि कितने किताबों में आया है, कितने पुस्तकों में इसका जिक्र हुआ है। उषा खन्ना के साज पर नेक दिन ससन सस्त का ये फिल्म हम आपको सुनाए हैं। चलिए, अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से। जी हाँ।

ललिता जी और हेमंत कुमार जी, ये दोनों मिल के यह शानदार दुएत आपको सुनाए हैं ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी सुन रहे हैं। और आपके धन्यवाद, एक दो लोग जो ऐप किए कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन वो अपना नाम नहीं बताना चाहता है। बहरहाल वे लोग जान गए हैं।

आपका हृदय से स्वागत है। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, रफ़ी साहब का ये गीत सुनिए। ये गीत है फिल्म बेरहम का, जी हाँ बहुत प्यारा गीत है, नेगेटिव तख्त का ये फिल्म है और बहुत प्यारा गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर रफ़ी साहब की आवाज़ में। ये गीत में बहुत सा ज्ञान भरा हुआ, इसे ध्यान से सुनिए, अगर समय मिले तो सुनिए अवश्य, और अगर आज बिजी हो गए तो काम करते रहिए, लेकिन ये गीत सुनिए, इनकी शब्दों पर ध्यान दीजिए।

पेशानी पे जो लिखा है वो पेश आएगा, मालिक ने जो लिख दिया है वो बदल ना पाएगा। पता है सही है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी गाया गया है कि भागवत भगवान की आरती पापियों के पाप से है तारती, लेकिन पता नहीं। बहरहाल ये गीत हम आपको सुनाएं, निकती तख्त का ये गीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। हमने कहा इन गीत इसलिए कहा कि वर्मा मालिक के लिखे हुए गीत हम आपको सुनाएं कि कितने प्यारे शब्द है इस गीत में। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है मैथ्यू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। कहानी किस्मत की टाइटल सॉन्ग।

कहानी किस्मत की माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाइए यह शानदार गीत ओफर फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, देखते हैं महेंद्र कपूर, महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

महेंद्र कपूर जी और हेमंत कुमार जी की आवाज़ में ओ पी नैयर के साथ पर फिल्म संबंध में से निकाल कर ये गीत हम आपको सुनाएं ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए एक ही गीत और हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे कार्यक्रम लेकर बढ़ेंगे। ये गीत इस तरह से है।

हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, ये शानदार गीत चला लता जी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हमने पेश की www.55fm.nl पर। आप चुने जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। या शाम के कार्यक्रम में तो लीजिए हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

आई लव यू, ये शानदार द्वेद हमने पेश की ऊपर फॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं ओम मैं चला रहा हूँ, इस तरह से हमने पेश की ये गीत। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से आ रहा है।

फन हंड हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 7 3 2 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। अनातिलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड बदंत है, तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाइश हो, जरूरी खबरें, या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में, या तो आप एक इवेंट ऑर्गेनाइजर हो तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं, या तो अपने व्यापारी के बारे में, जरूर कमर्शियल बनवा कर और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो, तो देखना हो सकता है ना चमत्कार पे चमत्कार हो जाएगा कि आपका धंधा फटाफट चल पड़ेगा। या तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं इवेंट या तो शोज वगैरह, वो भी फुल हाउस हो सकता है। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। किफायत सस्ते दाम, सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो अपमात पर हम लोग बनाकर, और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से यही आप सभी से कहते आ रहा हूँ यारो कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी बेल टाइडेंस कंटोर उर फन मांडाग टोट फ्रेडाग फन 9 उर स्मॉर्गंस टोट 5 उर स्मिडाग्स। कंटोर का नंबर 07-365-2047 और स्टूडियो का तार का नंबर 07-362-2077। जो भी रेडियो का काम हो, डेंकन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना यारो, चर्चा करते रहना, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। Bent u nog geen lid van Fahun Hindustani Radio, to guzaris binti nibeden kia jara hai ki abhi jald se jald Fahun Hindustani Radio ka member bane aur ko bhi banaye. Aapko to dher sare fayda hi fayda hai. सभी जानकारी इसके बारे में आप पा सकते हैं बेल टाइडेंस कंटोर यूरोप 07-365-2047 फन मांडाग टोट फ्रेडाग फन 9 उर स्मॉर्गंस टोट 5 उर स्मिडाग्स। तो आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए। वादा के मुताबिक एक दम लेकर चलते हैं आप श्रोताओं को प्रोग्राम के तरफ। और बीते हुए हफ्ते हम लोग पहुंच चुके थे फिल्म दिल एक मंदिर तक, और इस मूवी में राजेंद्र कुमार जी ने काम किया है मलकाय हुस्न द ग्रेट मीना कुमारी जी के साथ, महान अभिनेता राजकुमार और कॉमेडियन महमूद जी भी इस फिल्म में काम किए हैं। संगीतकार शंकर जयकिशन, लेखक शैलेंद्र और शोभा कोटे। महमूद जी के साथ बहुत ही फिल्मों में ये महान अभिनेत्री जी ने काम किया है, ये भी इस फिल्म में काम किए हैं। तो उसी फिल्म में से कुछ गाने आप सुन चुके थे बीते हुए सप्ते, और कुछ गाने रह गया था सुनाने को। तो एक ही दम लेकर चलते हैं आप सभी को, एक जबरदस्त सॉन्ग है ये, नगमा मेरे दिल के बहुत ही करीब है, रफी साहब जी का गाया हुआ ये सुपरहिट एवरग्रीन सॉन्ग की याद ना जाए बीते दिनों की, मास्टरपीस ऑफ कंपोजिंग बाय महान संगीतकार जोड़ी द ग्रेट शंकर जय किशन, लेखक शैलेंद्र के अल्फाजे और रफी साहब जी की आवाज मिल के सुनते हैं स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

Geber este dilco ciu lene vala băian, iadă-nă ea ebite din ochii, aide felem dil ec mândir. Beautiful song composed by Mahan Sangeetkar Jori the Great Shankar Jai Kishan uit 1963 Arkya Awaz Arkyal Faze Shailendra Rafi Saab Ji ke beautiful song, evergreen song. Ek aur beautiful song aap sunenge aur is baar late hai aap sabhi ke seva mein महान गाने वाली नाइटिंगेल सुमन कल्याणपुर जी के ये अति सुंदर और एवर ग्रीन सॉन्ग ओ मेरी लाडली देंकान रेडियो राधिका रेडियो राफा यार 60 70

uit de film Deel ik Mandir 1963, Suman Kalyan Purji ke Madhura Vaas me Shankar Jai Kishan ke saaj. तुम्हारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, एक छोटा सा बयान आई फिल्म दिल एक मंदिर आप सुनेंगे भजन के रूप में. ऑनफेर इट्स मेयर दान एन मिनट लंग. महान गाने वाले उस जमाने के एस जानकी जी के महान और मधुर आवाज में.

Çevirgest Avaz Kemalkin S. Janaki ji ke ye ati sundar chota sa bhajan aapne suna. Aid film Dil Ek Mandir composed by Shankar Jay Kishan. To hamare priye priye shrotaon, sabhi nagme film Dil Ek Mandir ka main aap shrotaon ko suna chuka hoon. अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक जबरदस्त ट्रेजेडी मूवी जो निकाला गया था एक दिन द्रिंसेस्त गहरा दाग. और इस फिल्म में राजेंद्र कुमार जी ने काम किया है ब्यूटीफुल माला सिन्हा जी के साथ. मदन पुरी जी इस फिल्म में काम

आज उड़ता हुआ एक पंछी, ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी गहरा दाग 1963, रफी साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में इतनी सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना, कंपोज्ड बाय रवि शर्मा।

गौर शिक्षा से भरा हुआ बयान आप सुनेंगे और इस बार आयशा भोसले जी के ब्यूटीफुल आवाज में कि सुबह का भूला शाम घर आए वो भूला ना कहला।

अति सुंदर शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान एड फिल्म गहरा दाग निहित इंद्रियन शस्त्र कंपोज बाय रवि शर्मा और आशा भोसले और साथियों के साथ अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं हमारे प्रिय श्रोताओं, ऑल्सो फ्रॉम द मूवी गहरा दाग निहित इंद्रियन शस्त्र रवि शर्मा के साथ पर एक बार फिर बहुत ही सॉफ्टली आवाज में ये नगमा को प्रस्तुत किया है। आशा जी मिलके सुनते हैं कि कैसे कहूँ मैं बात जिया की।

कैसे कहूँ मैं बात जिया की। एक फिल्म गहरादार 1963 क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आयशा भोसले इन एन अंदर स्टाइल गजंगे गकॉम्पोनेर डोर माएस्ट्रो रवि शर्मा। मैं तेरी हुई रे बालमा, क्या बात है, लवली सॉन्ग सुनने को जा रही है एक बार फिर आयशा भोसले जी फ्रॉम द मूवी गहरा राग रवि शर्मा के साथ पर।

पालमा ती सुंदर बयान ने आयशा भोसले और साथियों के साथ ये ती सुंदर बयान आप सभी को सुनाया क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आयशा भोसले रवि शर्मा जी के सांच पर फ्रॉम द मूवी गहरा दाग रिलीज किया गया था अब 1 जनवरी 1963 को। तुम्हारी पेपरी साथियों वक्त हो गया है कुछ शेर शायरी हो जाए हमारे शेर के चाहने वालों के लिए। तो अर्ज किया है यारो कि प्यार वो है जिसमें सच्चाई साथ हो, प्यार वो है जिसमें सच्चाई साथ हो, साथी की हर बात का एहसास हो, उसकी हर अदा पर नाज हो, दूर रहकर भी पास होने का एहसास हो। कैसे कहे कि आप कितनी खूबसूरत है, कैसे कहें कि हम आप पे मरते हैं, ये तो सिर्फ मेरा दिल ही जानता है कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। को दिल से जुदा ना कीजिए, दिल को दिल से जुदा ना कीजिए, सारा सोच समझ कर फैसला लीजिए। अगर आप जी सकते हैं हमारे बिना, अगर आप जी सकते हैं हमारे बिना, तो बस हमारे मरने की दुआ कीजिए। मत सोना अपनी मोहब्बत के कंधे पर सर रख कर, मत सोना अपनी मोहब्बत के कंधे पर सर रख कर, क्योंकि ये जब बिछड़ती है तो तकिए पर भी नींद नहीं आती। वफा का दरिया कभी रुकता नहीं, इश्क में प्रेमी कभी झुकता नहीं, खामोश है हम किसी के खुशी के लिए, खामोश है हम किसी के खुशी के लिए, ना सोचो कि हमारा दिल दुखता नहीं। बहते अश्कों की जुबान नहीं होती, बहते अश्कों की जुबान नहीं होती, लफ्जों में मोहब्बत बयां नहीं होती, मिले जो प्यार तो कदर करना, मिले जो प्यार तो कदर करना, किस्मत हर किसी पर मेहरबान नहीं होती। तो था कुछ शेयर्स हमारे शेयर्स के चाहने वालों के लिए, आगे के प्रोग्राम में कोशिश करूंगा कुछ और सुनाने को। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं साथियों, फ्रॉम द मूवी गहरा दाग एक जबरदस्त दिल को छू लेने वाला नगमा है, शिक्षा से भरा हुआ भी है और ये नगमा भी मेरे दिल के बहुत ही करीब है क्योंकि बचपन में मैं ये फिल्म को देखा था हैप्पी कंपार नख्त एखनी के नजलाप, बहुत ही जबरदस्त मूवी है, त्रेजी से भरा हुआ, त्रे खैरी से भरा हुआ है, तो जब फुर्सत मिले तो देखना राजेंद्र कुमार जी का ये सुपरहिट मूवी गहरा दाग। कि भगवान ने एक कसूर की इतनी बड़ी सजा, जिस खूबी से रफी साहब जी ये नगमा को गाया है कि क्या बताऊं, जितने तारीफ किया जाए कम है। अ मास्टरपीस ऑफ कंपोजिंग बाय रवि शर्मा।

ब्यूटीफुल सॉन्ग दिल को छू लेने वाला, नगमा की भगवान एक कसूर की इतनी बड़ी सजा। एक फिल्म गहरा दाग 1963 कंपोज बाय मास्टरो रवि शर्मा, और सुनाया महान गायक द ग्रेट सुरों का बादशाह रफी साहब जी। रिकॉर्ड जबरदस्त नगमा आप सुनने वाले हैं, ऑल्सो फ्रॉम द फिल्म गहरा राग 1963 कंपोज बाय रवि, और सुनाने को जा रहे हैं महान संगीतकार के गायक जोड़ी रफ़ी साहब और आशा भोसले जी, जितने द्वैत गाए हैं सभी सुपरहिट साबित हुए। तुम्हें पा के हमने जहाँ पा लिया, क्या बात है, ब्यूटीफुल सॉन्ग सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। ले तो निकलिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 7 2 तक 7 8 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुने इंटरनेट रेडियो के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। पूरी टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। अल टैक्सी ड्राइवर्स को भी तह दिल से स्वागतम। बॉयज एंड गर्ल्स वेडिक्स नतीलक बदंत हैं जो भी रेडियो का काम हो खास फरमाई से जरूरी खबरें डेंकन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो सभी जानकारी नुरजी मिटक दरीफेंस तक ट्वेन ट्वेंटक सीफन एंड फिर तक। Bent u nog geen lid van Fahun Hindustani Radio, to guzaris binti nibinan kiya ja raha hai, ki aap bhi jald se jald hum logo ka member bane, aur ko bhi banaye, aapko to dher sare fayda hi fayda hai, sabhi jankari, newsletter defense tak 2247. Isi tarah hum logo ke bare mein charcha karte rehna, reklam banate rehna yaro, hats off to all of you. और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। एकदम बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ। एक नगमा रह गया था सुनाने को फिल्म अकेली मत जइयो जो मैं तुरंत सुनाने को जा रहे हैं। आप सभी को एक बार फिर प्रोग्राम में ये अति सुंदर बयान सुनाने को जा रहे हैं महान संगीतकार जोड़ी अच्छा भोसले जी और रफी साहब जी। ये साइकिल का चक्कर भैया

Beautiful Mazedar Song uit de film Kelly met Jayo Agri. Songtha is a film ka. Aur sunaya aap sabhi ko Ravi Saab ji aur Asha Bhosle ji Madan Mohan ji ke saanch par aaj de film Akeli Mat Jaiyo. To hamare priye priye shrotaon sabhi nagma aaj de film Akeli Mat Jaiyo 1963 ka main aap sabhi ko suna chuka. Ab lekar chalte hain aap sabhi ko ek movie jo also रिलीज किया गया था 1963 फिल्म दिल एक मंदिर. और इस फिल्म में राजेंद्र कुमार जी ने काम किया है एक बार फिर मलकाए हुस्न ट्रेजेडी एक्ट्रेस द ग्रेट मीना कुमारी जी के साथ. और महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर राजकुमार जी ने इस फिल्म में भी काम किया है. महमूद का कॉमेडियन है सुबह कोटे के साथ. महान संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के साथ शैलेंद्र जी के अल्फाजे आप सुनेंगे उसी फिल्म में से ये अति सुंदर बयान. टाइटल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी दिल एक मंदिर है. और सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को नाइटिंगेल सुमन कल्याणपुर जी और सुरों का बादशाह रफी साहब जी की दिल एक मंदिर है.

एक मंदिर है टाइटल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी दिल एक मंदिर 1963 कंपोज बाय शंकर जय किशन आवाजें थे रफी साहब और सुमन कल्याणपुर जी का। अगला बयान तुम सबको छोड़कर आ जाओ ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को एक बार शुरू का बादशाह फिर से द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी का जबरदस्त सॉन्ग कंपोज बाय शंकर जय किशन फ्रॉम द मूवी दिल एक मंदिर 1963।

सब को छोड़कर आ जाओ, ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी दिल एक मंदिर, शंकर जय किशन के साथ पर रफी साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। तो आखिरी शेर सो जाए यारो आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में, क्योंकि वक्त भी धीरे धीरे करीब आ रहा है ना। दिल पेश करूं या वफा पेश करूं, समझ में ना आए क्या पेश करूं, जो तुझको लुभा ले वो अदा मुझ में नहीं, जो तुझको लुभा ले वो अदा मुझ में तो नहीं, क्यों ना तुझको कोई तेरी ही अदा पेश करूं। निकलता चांद सबको पसंद आता है, डूबता सूरज कौन देखना चाहता है, टूटा हुआ तारा सबकी दुआ इसलिए पूरा करता है, टूटा हुआ तारा सबकी दुआ इसलिए पूरा करता है, क्योंकि उसे टूटने का दर्द मालूम होता है। हम अगर आपसे मिल नहीं पाते, हम अगर आपसे मिल नहीं पाते, ऐसा नहीं है कि आप हमें याद नहीं आते, माना यहाँ के सब रिश्ते निभाए नहीं जाते, माना यहाँ के रिश्ते सब नहीं निभाई जाते, लेकिन जो दिल में बस जाते हैं उन्हें भुलाया तो नहीं जाता। तेरी आंखों के नशे में डूब जाऊं, तेरी जुल्फों की छाँव में खुद को भूल जाऊं, तेरी होठों की हंसी को पी लूं सनम, आ करीब मेरे तेरी बाहों में खुद को भूल जाऊं। आखिरी शेर यारो, जिंदगी में कभी किसी का साथ नहीं छोड़ना, जिंदगी में कभी किसी का साथ नहीं छोड़ना, क्योंकि कुछ पल लगते हैं रिश्ते बनाने।

में और कुछ पल लगते हैं रिश्ते मिटाने में, एक पल लगता है किसी को रुलाने में और जिंदगी बीत जाती है किसी को भुलाने में। श्वेता शेर्स, हमारे शेर्स की चाहने वालों के लिए। अगला बयान दिल को छू लेने वाला नगमा क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के ब्यूटीफुल आवाज में, कंपोज बाय महान संगीतकार जोड़ी द ग्रेट शंकर जय किशन और अल्फाजे इस बार मास्टर हसरत जय पूरी जी का, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे।

सुंदर बयान कि हम तेरे प्यार में सारा आलम को भेटे। एडू फिल्म दिल एक मंदिर निहित इंद्रियन सेस्तर शंकर जय किशन के साथ लता जी के मधुर आवाज। तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, वक्त भी धीरे धीरे करीब आ चुका है, तो आज के मेरे हिस्से का कार्यक्रम में का आखिरी बयान आप सुनेंगे एड फिल्म दिल एक मंदिर। और एक बार फिर क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के ब्यूटीफुल आवाज और जिस खूबी से लता जी ने ये नगमा को गाई है, मिल के सुनते हैं, जितने तारीफ किया जाए कम है। मास्टर पीस ऑफ कंपोजिंग बाय मास्टर शंकर जय किशन। मीना कुमारी जी पे पिक चढ़ाया गया ये अति सुंदर बयान की रुक जा रात ठहर जा रे चंदा, वन ऑफ माय फेवरेट।

Beautiful song सुनाई आप सभी को सुरोका देवी, क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी, फ्रॉम द मूवी डिलेक मंदिर 1963, कंपोज बाय शंकर जय किशन। तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, यही तक था आज का मेरे हिस्से का कार्यक्रम जो समाप्त होने को आया। इसी तरह घर को जा रहा हूं उम्मीद लेकर कि जिस तरह मैं कोशिश किया आप श्रोताओं को सेवा करने में, मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम आप श्रोताओं को पसंद आया हुआ होगा। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो आने वाले दिनों में मैं मिलता हूं आवाज के जरिए। तो मुझे आप इजाजत दे, जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना। Want het leven duurt toch al zo kort, hè? Geniet ervan, hè?

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है इंटरनेट के लहरों द्वारा तब लिस्टर ऑफ फाउन FM.NL पर यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम। कार्यक्रम में तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम। कार्यक्रम में तिलक वर्क्स बॉयज अंकल्स एंड बुद्धंत है। तो जो भी रेडियो का काम हो डेंकन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो की फाइट सस्ते दाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो, कमर्शियल्स हो या तो आप जो ऑर्गेनाइज करते हैं आल्स इवेंट ऑर्गेनाइजर, तो उसके बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर या तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो, तो हो सकता है चमत्कार पे चमत्कार हो जाएगा। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। किफायत सस्ते दाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो अपमात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूँ कि फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंडेस भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आसमान कर तो देख सभी जानकारी बेलतेनस कंतोर उर फन मांडर तोत फ्रेडग फन 9 उर मॉर्गंस तोत 5 उर मिडग्स। दफ्तर कतार का नंबर 07-3562-2047 और स्टूडियो कतार का नंबर है 07-3062-2077। जो भी रेडियो का काम हो देंक अन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना यार, थोड़ा बहुत चर्चा करते रहना, खास करके अगर आप सभी को हम लोगों का कार्यक्रम प्रोग्राम अच्छा लगे तो ये हम लोग चाहते कि जैसे आप सदियों से हम लोगों को सुन सुनकर मज़े ले रहे हैं, आपके हिती प्रेमी रिश्तेदार आन पड़ोसी कोलेगन भी हम लोगों का प्रोग्राम सुने तो ज़रूर हम लोगों के बारे में बातें शातें करते रहना। और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तह दिल से धन्यवाद। हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी कोशिश करें बनाने के लिए। आपको तो यानी आप लोगों को तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी बेलतेरेंस कंतोर यूर अपने सीम तक 3-5-6-2-2-7-4 वेलकम। एकदम बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ। हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, बीते हुए सप्ते हम लोग पहुंच चुके थे एक फिल्म जो रिलीज किया गया था 1969 जिंदगी और ख्वाब। इस फिल्म में राजेंद्र कुमार जी ने काम किया है, मलकाए हुस्न मीना कुमारी और द ग्रेट ब्यूटीफुल नाज जी के साथ। संगीतकार महान संगीतकार उस जमाने का मैस्त्रो दत्ताराम वाटकर और लिखा है ये सभी सॉन्ग्स को महान लेखक कवि प्रदीप जी। तो कुछ नगमे रह गया था सुनाने को इस फिल्म में से, तो अगला बयान नाइटिंगेल सुमन कल्याणपुर जी के ब्यूटीफुल आवाज में फ्रॉम द मूवी। क्या बात है जिंदगी और ख्वाब। म्यूजिक दत्ताराम वाटकर और लिखा है कवि प्रदीप जी। तो मिलके सुनते हैं कहती है झुकी झुकी नजर।

0: कहती है झुकी झुकी नजर कि आज तो कोई आएगा। नाइटिंगेल सुमन कल्याणपुर जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति ब्यूटीफुल हिंदी रोमांटिक सॉन्ग आप श्रोताओं ने सुना है द फिल्म जिंदगी और ख्वाब कंपोज एंड अरेंज बाय दत्ताराम वाडकर जी। अगला बयान एक मजेदार सॉन्ग है और पिक्चराइज किया गया है कॉमेडियन आगा जी के ऊपर जिंदगी और ख्वाब दत्ताराम वाडकर के साथ कवि प्रदीप का लिखा हुआ अति सुंदर बयान सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी। मेरा बंदर चला है ससुराल ये भी होता है यार।
1: अरे क्या है प्यारी,
2: जरा खेल दिखा दे ना।

0: बाबूजी राम राम, नमस्ते बाबूजी।
1: मजेदार सॉन्ग आप सुना, रफी साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में साथ दे रही थी कमल बरोत, एड फिल्म जिंदगी और ख्वाब। कवि प्रदीप का लिखा हुआ ये अति सुंदर बयान। तो फिल्म जिंदगी और ख्वाब का एक आखिरी बयान सुनेंगे, एक जबरदस्त कवाली है सुनाने को जा रहे हैं पुराने जमाने के मशहूर गाने वाली मुबारक बेगम जी के आवाज में आप सुनेंगे ये अति सुंदर बयान को। लिखा है रामचंद्र बरियान जी और कंपोज किया है दत्ताराम वाटकर। फूल बगिया में भौंरे आए, क्या बात है, ब्यूटीफुल क्लासिकल सॉन्ग स्पेशल।

फूल बगिया में भावरे आए और अकेले चमेली घबराए। मुबारक बेगम जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना फ्रॉम द मूवी जिंदगी और ख्वाब कंपोज बाय मैस्ट्रो दत्ताराम वाटकर। तो हमारे प्रिय प्रिय सुनने वालों, सभी नगमे फिल्म जिंदगी और ख्वाब जो रिलीज किया गया था 1966 में, मैं आप सभी को सुना चुका हूँ। अब लेकर चलते हैं आप श्रोताओं को जो देखा जाए एक मूवी जो रिलीज किया गया था 1963 में, अकेली मत जइयो। और इस फिल्म में राजेंद्र कुमार जी ने काम किया है महान अभिनेत्री ब्यूटीफुल मीना कुमारी जी के साथ और मीनू मुमताज जी के साथ। म्यूजिक डायरेक्टर, संगीतकारों का संगीतकार महान म्यूजिक डायरेक्टर द ग्रेट मदन मोहन जी, और अल्फाजे है बयानों का मैस्ट्रो मजरू सुल्तानपुरी जी के हाथ में। तो उसी फिल्म में से अब आप नगमे सुनेंगे। एक ब्यूटीफुल डुएट है जो मैं रख चुका हूँ प्लेयर में और सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को। महान संगीतकार जोड़ी हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का, द ग्रेट सुरोका देवी, भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी, और सुरोका बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज़ में ये अति सुंदर बयान आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम, कंपोज बाय मैस्ट्रो मदन मोहन। ये तो कहो कौन हो तुम।

Eli Majeo 1963 ye to kaho kaun ho tum Lata ji aur Rafi sahab ji ki awaaz mein ye teen sundar bayan aap shrotaon ne suna composed by maestro Madan Mohan aur alfaaz the Sultan Puri ji ka Faun Hindustani radio pe aap tune hai गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड नामक प्रोग्राम आप सुन रहे हैं नगमे चल रहे हैं जिन मूवीज में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर राजेंद्र कुमार जी ने काम किया है हम पहुंच चुके हैं फिल्म अकेली मत जइयो तक जो रिलीज किया गया था 1963 अगला बयान थोड़ी देर के लिए मेरे हो जाओ Beautiful song, gesong door Queen of Rock and Roll, Asha Bhosle ji, composed by Maestro Madan Puri, lyrics Majru Sultan Puri.

ब्यूटीफुल सॉन्ग थोड़ी देर के लिए मेरे हो जाओ uit de film Akeli met Jayo 1963, composed by maestro Madan Mohan, Queen of Rock and Roll, Asha Bhosle ji ke Beautiful Avance mein.

तो यार कुछ शेर सजाए हमारे शेर के चाहने वालों के लिए ना। अर्ज किया है यार कि हम भी कभी मुस्कुराया करते थे, हम भी कभी मुस्कुराया करते थे, उजाले में भी शोर मचाया करते थे, उसी दिए ने जला दिया मेरे हाथों को, उसी दिए ने जला दिया मेरे हाथों को, जिस दिए को हम हवा से बचाया करते थे। ये भी होता है जिंदगी में यारो। दारू और सिगरेट पीने वाले इंसान कभी मतलबी नहीं होता, दारू और सिगरेट पीने वाला इंसान कभी मतलबी नहीं होता, जिसे अपनी खुद की जान, जिसे अपनी खुद की जान की चिंता नहीं, वो भला मतलबी कैसे। या कितनी कठोर विधाम बना है कुदरत की, कितनी कठोर विधाम बना है कुदरत की, फूलों का राजा गुलाब, फूलों का राजा गुलाब कांटों में रहता है, और जीवन का निर्माता यानी जीवन का निर्माता जातों और पाटों में रहता है। दिल की ख्वाहिश को नाम किया दूं, दिल की ख्वाहिश को नाम किया दूं, प्यार का उसे पैगाम किया दूं, इस दिल में दर्द नहीं, इस दिल में दर्द नहीं, यादें है उसकी अब यादें ही मुझे दर्द दे, अब यादें ही मुझे दर्द दे, तो उसे इल्जाम क्या दूं। धोखा फरेब सब जमाने में रह गए, धोखा फरेब सब जमाने में रह गए, हम प्यार का हक अदा करने में रह गए, जो साथ चले थे वो आगे निकल गए, हम रास्ते के पत्थर हटाने में रह गए। ये भी होता है यारो जिंदगी में। एक मजेदार शेर है ये, बच्चों को कुछ यहाँ पर फरखड़े किया जाता है ना, आजमा जाता है। कहा जाता है कि इंग्लिश में सू के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे दीर्घतैन में जो जाते हैं तो कहते हैं एक बंदर को देखकर, ओ वाओ लुक अ मंकी इज स्लीपिंग, लेट्स नॉट डिस्टर्ब हिम। और वही बच्चे एक हिंदी मीडियम स्कूल के जो दीर्घतैन में जाते हैं तो बंदर को देख के बोलते हैं, देख तेरा बाप सो रहा है, पत्थर मार साले को। ये भी मजेदार। दिल के दर्द को दिल तोड़ने वाला क्या जाने, दिल के दर्द को दिल तोड़ने वाला क्या जाने, प्यार की रस्मों के ये जमाने वाला क्या जाने, होती है कितनी तकलीफ कब्र के नीचे, होती है कितनी तकलीफ कब्र के नीचे, ये ऊपर से फूल चढ़ाने वाले क्या जाने। तो ये था कुछ शेर्स है हमारे शेर्स के चाहने वालों के लिए। आगे मैं कोशिश करूंगा और कुछ सुनाने को। प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। एक बड़ी पुराना सॉन्ग है, एडू फिल्म अकेली मत जइयो, मदन मोहन जी के साथ पर एक बार फिर क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के ब्यूटीफुल सॉन्ग पिक्चराइज गया है मीना कुमारी जी के ऊपर।

Kelly met J. Yo. Beautiful song, title song from the movie Kelly met J. Yo, 1963. Maestro Menen Mohindike Sajper Sunaya Absebiko Bharat Ratna Queen of Melody Lata Mangeshkar Ji. गौर अति सुंदर बयान मैं रख चुका हूं प्लेयर में आप श्रोताओं के सेवा में और इस बार लाते हैं प्रोग्राम में क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आशा भोसले जी और पद्मश्री शुरू का बादशाह रफी साहब जी. रास्ते में दो अनजाने ऐसे मिले आई द फिल्म अकेली मत जइयो 1963. Beautiful song, special, aapke naam.

A masterpiece of composing by maestro Madan Mohan Ji. मजरू सुल्तान के लिखा हुआ अति सुंदर बयान सुनाया आप सभी को सुर का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी रफी साहब जी और आशा भोसले जी और जो फिल्म अकेली मत जइयो 1963 देखा जाए तो एक अति सुंदर गजल आप सुनेंगे ब्यूटीफुल ओथ गजल सॉन्ग कंपोज बाय मास्टरो मदन मोहन आई डू फिल्म अकेली मत जइयो जरा लफ्जों पे ध्यान दीजिए सा यानी मजरू सुल्तानपुरी जी ने क्या अल्फाजे इस्तेमाल किया है इस गाने में गजल में तो जरा मिल के सुनते हैं ना वो जो मिलते थे कभी क्या अल्फाजे है दिल को छू लेने वाला नगमा

Beautiful Ghazal composed by Maestro Madan Mohan ed film Akeli Mat Jaiyo Suruka Devi Lata Ji ke beautiful awaaz mein. Ye hawa ye mastana mausam ek ati sundar jugalbandi duet aap sunenge रवि साहब जी और लता जी के आवाज में कंपोज बाय मैस्ट्रो मदन मोहन लिखा है मजरूर सुल्तानपुरी जी ने ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल आपके नाम

तुम्हारे पीपली श्रोताओं, अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना। ब्रेक के बाद मिलता हूँ यारो, कहीं जाना मत।

साथियों, प्रोग्राम का शुरुआत तो सदियों से करते आ रहा हूँ, वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ, फ्रॉम द मूवी ललकार 1977 कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी, और हमेशा की तरह आप श्रोताओं को सुनाने को जा रहे हैं सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी की आज गालो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा, जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो, ये कब टूट जाएगा ये कब समाप्त हो जाएगा, ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है, इसलिए हम लोग तो आप सभी से सदियों से यहाँ से कहते आ रहे हैं यारो की हैप्पी नास्ता आउट एट लीफ, कांधे से कांधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है यारो, खुद को आगे को बढ़ाना है, देश को भी आगे को बढ़ाना है, कौम को भी आगे को बढ़ाना है, तो ये शिक्षा सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे साप्ताहिक प्रोग्राम संगीतकारों का दास्ता नामक कार्यक्रम, आउट इज गोल्ड गीत और गजल और एक महान संगीतकार म्यूजिक डायरेक्टर के कुछ नगमे लेकर आया हूँ, पुराने जमाने के डगड़ेत जयदेव जी के बनाए हुए कुछ धुने आप सुनेंगे, और उसके बाद सिर्फ नगमे चलेंगे जिन मूवीज में ये महान अभिनेता डगड़ेत एक्टर श्री राजेंद्र कुमार जी ने, जिसे हम लोग जुबली कुमार के नाम से भी जानते थे, जिनमें ये महान अभिनेता ने काम किया है, तो बीच में कुछ ज्ञान के बातें भी है, हमेशा की तरह कुछ शायरी भी है, तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना जहां पर भी हो, जी साल में हो, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो आप सभी को याद करते हैं, और स्वीकार कीजिए हम लोगों का मोहब्बत से भरा हुआ सलाम और प्यार दुलार के साथ रवि साहब जी।

हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, वादा के मुताबिक लेकर चलते हैं ये महान संगीतकार जयदेव जी के कुछ बनाए हुए धुने के तरफ। और जैसे आप लोगों को मालूम होना चाहिए यारों की ये जबरदस्त संगीतकार जयदेव जी जितना धुने बनाए हैं तकरीबन 95% से ज़्यादा इनके गाने सुपरहिट साबित हुए। तकरीबन 30 फिल्मों में अपना संगीत दिया है, हिंदी फिल्मों में और कुछ अलग भाषा की फिल्मों में भी अपना संगीत दिया है। तो मिलकर सुनते हैं एक जबरदस्त सॉन्ग जो ये महान संगीतकार ने बनाया था लता जी के लिए, जो लोगों को बेहद पसंद आया था, फ्रॉम द मूवी प्रेम पर्वत, क्वीन ऑफ मेलोडी लता जी के ब्यूटीफुल आवाज में। और जान निसार अख्तार, यानी जान निसार अख्तार का लिखा हुआ है अति सुंदर बयान, वन ऑफ माय फेवरेट लता जी का ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ब्यूटीफुल सॉन्ग। आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम, एंजॉय।

A masterpiece of composing by the great music director maestro Jay Dale from the movie Prem Parbat 1973. अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं. एक अति सुंदर बयान है, एवरग्रीन सॉन्ग सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को एक बार फिर लता मंगेशकर जी के मधुर आवाज में एड फिल्म हम दोनों, और इस बार साहिल ध्यानवी जी का लिखा हुआ ये दिल को छू लेने वाला नगमा कि अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम, ऑल्सो कंपोज बाय मास्टर जयदेव.

का साथ निभाता चला गया। एक फिल्म हम दोनों ने दी एन सिस्टर रवि साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में और जयदेव जी का साज क्या कॉम्बिनेशन था। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चून है गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड संगीतकारों का दास्ता नामक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। पुराने जमाने uit de eind 40, 50, 60 tot 70 kan je mahan sangeetkar Sri Jaydev ji ke kuch banaye hue dhune aap sun rahe hai. Agla bayan also from the movie Hum Dono 1961 ek zabardast song hai. Mahan gayak suro ka bacha, the king of melody, Padma Shri Mahmud Rafi sahab ji ke मधुर आवाज में कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। A masterpiece of composing by maestro जयदेव जी।

Jabber the song from the movie Hum Dono, Kabhi Khud Pe Kabhi Halat Pe Ronaya, महान संगीतकार द ग्रेट जयदेव जी का बनाया ये हुआ ये अति सुंदर धुन आई द फिल्म हम दोनों 1961 और अल्फाजे था जितने तारीफ किया जाए कम है महान लेखक साहिर लुधियानवी जी का। तो यारों कुछ ज्ञान के बातें हो जाए ना। पुराने जमाने के कुछ विद्वानों कुछ पढ़े लिखे लोगों और कुछ मशहूर मशहूर लोगों ने मनुष्य इंसानियत हम लोगों के बारे में अति सुंदर सुंदर ज्ञान से भरी हुई बातें लिखे हैं यारो, जो मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूँ। ये यशा उम्मीद लेकर कि इन बातों से कुछ ना कुछ तो हम लोग जरूर सीखेंगे। तो जरा गौर फरमाएं। अर्ज किया है श्री विलियम ब्लेक है वॉज एन एंग्लिश डिक्टर टेकनर एंड कुंस्ट स्किल्डर 1757-1827। और विलियम ब्लेक ने कहा है मनुष्य के बारे में यारों की द फोगल अ नेस्ट द स्पिन अन वेब द मैंस फ्रेंडशिप। आगे में कहा है श्री ब्लेस पास्कल फ्रांस विस एन नेचरकुंडिगे एन फिलोसोफ 1623-1662। ब्लेस पास्कल ने कहा है मनुष्य के बारे में यारों की ontkennen geloven en betwijfelen is voor de mens wat rennen voor het paard is. Elie Wiesel, een Roemenië geboren Joods-Amerikaans schrijver en Nobelprijs Vrede 1986, leefde van 1928 tot 2016. Elie Wiesel, nekahai manusje kebarmearuki, religie is geen relatie van de mens met de God. Het is een relatie van de mens met de mens. William Shakespeare, Engels toneelschrijver en dichter, 1564-1616. William Shakespeare, ik haai me nu schikke barmerkie, waarachtig, ik maak me er niet druk over. Een mens kan maar eenmaal doodgaan. Wij zijn gewoon God een dood verschuldigd. Abu Hamid ibn Mohammed al-Ghazali ne kaha hai. Hij was een Persisch filosoof en soefist, 1058 tot 1111. Aur Abu Hamid ne kaha hai manushya ke bare mein aroki, wanneer een mens liegt, dan verlaten hem zijn beide beschermen engelen wegens de kwalijke geur uit zijn mond. Aristoteles, Grieks filosoof, 322 tot 384 voor Christus. Aristoteles, nekha hij, manusje ke bare mein aroki, we moeten niet luisteren naar degenen die ons vermanen dat de mens slechts aan het menselijk moet denken, dat het sterfelijke zich moet beperken tot het sterfelijke. Nee, wij moeten zoveel als in ons vermogen ligt trachten onsterfelijk te zijn. Karl Marx, Duits econoom en staatsfilosoof, 1818-1883. Ook Karl Marx, nekahai manusje, wezens vreemde arbeid vervreemdt de mens van zijn eigen lichaam, van de natuur buiten hem, van zijn geestelijke wezen, van zijn menselijk wezen. Chrysos Thomas, Romeins en prediker, aartsbisschop van Constantinopel, 407 tot 345. Chrysostomus, nekahai manusje kebarmeroki. Zoals een mot een kleed opknaagt, zo verteert afgunst van een mens.
Phil Bosmans, Belgisch pater en schrijver, 1922-2012. Auf Phil Bosmans nekai, zoek de mens achter ieder gezicht. Goeie hoor. Mark Rutherford, Engels schrijver, ook PS van William Hale White, 1831-1913. Mark Rutherhof, nekai, manusje kebarmearoki. Als een mens oud wordt, zal wijsheid hem niet in leven houden. Tomari pipri shrutawa bhiap kuch kahaute kuch udaharan suna jo manushya ke bare mein jata hai. U heeft net kunnen luisteren naar een paar zeer leerrijke citaten die over de mensheid gingen. Ye shomil lekar in bato ko main aap shrutawa ko sunaya ki in bato se kuch na kuch to hum log jarur sikhenge na. To program ko aage badhate hain. Ek ati sundar bayan hai, bahut hi mushkil gana bhi hai sabhi gaane walon ke liye. और जब जब भी मैं ये नगमा को सुनता हूँ मेरा तो रोटे खड़ा हो जाते हैं और हमेशा की तरह आँखों में पानी भी भर आते हैं. इतना मीठा धुन और जिस खूबी से लता जी ने ये गाना को गाए हैं तारीफ काबिल. जितने तारीफ किए जाए कम है. प्रभु तेरो नाम जो धाये, अ मास्टरपीस ऑफ कंपोजिंग बाय मास्टर जयदेव फ्रॉम द मूवी हम दोनों ने खींची इन सेस्टर. और क्या अल्फाज लिखा है शाहिर लुधियानवी जी ने मिल के सुनते हैं. बहुत ही लोगों ने ये गाना को पसंद किया है. अ ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम.

0: from the movie Hum Dono, लता जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना, खास करके फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से। जहां में ऐसा कौन है, इस बार क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आयशा भोसले जी के ब्यूटीफुल आवाज में, ऑल्सो फ्रॉम द मूवी हम दोनों, साहिर लुधियानवी और मैस्त्रो जयदेव जी के कॉम्बिनेशन अल्फाजे और साज मिलके सुनते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल।
1: के साथ कार

जहां में ऐसा कौन है, एक फिल्म हम दोनों क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आयशा भोसले जी के ब्यूटीफुल आवाज में कंपोज बाय मास्टरो साहिर लुधियानवी, यानी अल्फाज़े थे साहिर जी का और संगीत साज था मास्टरो जयदेव जी का। अगला बयान एक जबरदस्त सॉन्ग है और इस बार लाते हैं डॉक्टर के जी येसुदास जी को प्रोग्राम में। दे आर 1977 फ्रॉम द मूवी आलाप कंपोज एंड अरेंज्ड बाय मास्टरो जयदेव जी।

0: जानना चाहता हूँ कि जान को ये अधिकार किसने दिया कि वो अपनी प्रेमिका को अकेला छोड़कर चला जाए।
1: अरे ये क्या मजाक है, सुनो ना।
0: ये मजाक नहीं योर ऑनर, ये एक दुखी आत्मा की पुकार है। कानून, अगर आपकी तरह औरत होता तो मेरी मोहकिला श्रीमती प्रेमिका के दिल का दर्द समझ लेता। कोई लड़की जिंदगी भर एक सखी के साथ बात करके नहीं रह सकती। मुझे पूरा यकीन है योर ऑनर कि अदालत प्रेमिका की पूरी दुहाई सुनने के बाद जिंदगी के खिलाफ जरूर देगी।

0: एक तो वो बिचारी प्रेमिका को अकेला छोड़कर अपना आता पता बताए बिना चला जा रहा, और ये भी बताने को तैयार नहीं है कि वो कब वापस आएगा। लो जेंटलमैन ऑफ द जूरी भी आ गए। जेंटलमैन ऑफ द जूरी, आप भी सोचिए और ये भूल कर सोचिए कि आप मर्द।
1: सोचिए भाई, सोचने समझने का काम अपनी भाभी भी छोड़।
0: आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। जूरी जो कि वकील इतना भी नहीं जानती कि अदालत न किसी के

Beautiful song composed by maestro Jaydeo Ji jinka special app Sun Rehe Hai uit de film Alap 1977. Mahan gayak Dr. K.G. Yesudas ji ke beautiful awaaz mein. Ik hoor het is sunder bayan, also from the movie Hum Dono. Ye नगमा इतना चला है हमारे भारत देश में और वर्ल्ड वाइड के लोग अभी तक सुनते हैं और ये गाना एवरग्रीन है एडो फिल्म नतीलक हम दोनों कंपोज बाय मास्टर जयदेव और अल्फाजे है शाहिर जी के आवाज सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी. लता जी का कहना है कि ऐसा कलाकार बार बार जन्म नहीं लेते, अभी ना जाओ छोड़कर. कॉम्पोज बाय, जी हाँ, ये नगमा भी ये महान संगीतकार ने बनाया है, द ग्रेट मैस्त्रो जयदेव जी ने.

अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। फ्रॉम द मूवी हम दोनों क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आयशा भोसले जी और सुर का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी रफी साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। महान संगीतकार जय देव के कंपोज किया हुआ ये अति सुंदर धुन अल्फाजे थे महान लेखक शाहिर लुधियानवी जी का। तो हमारे प्रिय श्रोताओं यहीं तक था आज का ये स्पेशल महान संगीतकार द ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर कंपोजर माएस्ट्रो जयदेव जी का जो समाप्त होने को आया। अभी आप विज्ञापन और देश विदेश का समाचार सुनेंगे, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना। ब्रेक के बाद मिलता हूं यारो, कहीं जा

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन एफएम चैनल पर यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम हमारे कार्यक्रम में। एनर्जेटिक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड बेदंत, जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से जरूरी खबरें, या तो अपने व्यापारी के बारे में, या आप अगर एक इवेंट ऑर्गेनाइजर हो तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं, या अपने व्यापारी के बारे में, जरूर कमर्शियल बनवा कर और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो, तो कुछ ना कुछ हो सकता है, आपका धंधा फटाफट भी चल सकता है और आपका जो शोस वगैरह इवेंट वगैरह ये भी फुल हाउस हो सकता है। ये बात मैं आप सभी से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। किफायत सस्ते दाम, सिर्फ इस गारंटी और

क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश है और मात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे और ये भी किफायत सस्ते दाम में। सभी जानकारी बेल टाइडेंस कंटोर यूरोप न्यूज़ 27 डिग्री 27 फिर तक जो भी रेडियो का काम हो देंगन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार और रिक्लाम बनाते रहना। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू और इसके लिए आप सभी को तह दिल से धन्यवाद। हिंदुस्तानी रेडियो तो जरूर आप जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और कोशिश करना औरों को भी बनाने को। तो जल्द से जल्द आप भी आकर हम लोगों का इस जो हैप्पी हैप्पी बिग फाहुन फैमिली में आप भी आकर शामिल हो जाए। न्यूज़ 27 डिग्री 27 फिर तक पर आप तार करके इसके बारे में सभी जानकारी को प्राप्त कर सकते हो। एकदम बढ़ते हैं प्रोग्राम के तरफ और एक आखिरी बयान रह गया था सुनाने के लिए फ्रॉम द मूवी ससुराल नेहति एनन सिस्टर। और इस बार आते हैं आप सभी को सुनाने के लिए एक बार फिर लाखों करोड़ों का दिल चुराने वाला द हार्ट थ्रॉब ऑफ मिलियंस द माइटी मुकेश एंड स्पेशल फॉर द मुका फैंस सता ले ऐ जहां वन ऑफ माय फेवरेट मुकेश जी का आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम कंपोज बाय शंकर जय किशन।

Dil churane wala, the heartthrob of millions, the mighty Mukesh ji ke madhur awaz mein ye ati sundar bayan aap shrotaon ne suna, aur ye bhi aakhri bayan ai the film Sasural, composed by mahan sangeetkar jodi, the great Shankar Jay Kishan. तुम्हारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, सभी नगमे फिल्म ससुराल का आप सुन चुके। अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक फिल्म जो ऑल्सो रिलीज किया गया था इन 1961। फिल्म का नाम है जिंदगी और ख्वाब, और इस फिल्म में राजेंद्र कुमार ने काम किया एक बार फिर मलकाए हुस्न मीना कुमारी जी के साथ, और नाज ब्यूटी क्वीन उस जमाने का भी इस फिल्म में काम किया है। अमजद खान और इम्तियाज खान का पूज्य पिता श्री जयंत भी इस फिल्म में काम किए हैं। संगीतकार दत्ताराम है, दत्ताराम वाटकर, और सभी गाने लिखे हैं महान लेखक कवि प्रदीप जी। तो उसी फिल्म में से आप नगमे सुनेंगे जिंदगी और ख्वाब 1961। न जाने कहां तुम थे, ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को पद्म भूषण मन्ना दा, साथ दे रही है नाइटिंगेल सुमन कल्याणपुर जी। मिलके सुनते हैं

दर बयान न जाने कहां तुम थे, एड फिल्म जिंदगी और ख्वाब निगदीन इंसिस्टिख, दत्ताराम वाद करके सांच पर और महान लेखक कवि प्रदीप का लिखा हुआ अति सुंदर बयान मन्ना दा और सुमन कल्याणपुर की आवाज में आप सुना। तो साथियों कुछ आखिरी शेष हो जाए ना आज के मेरे हिस्से के कार्य

हमारे दरमियान कुछ तो रहेगा, हमारे दरमियान कुछ तो रहेगा, चाहे वो फासला क्यों ना हो, कुछ तो रहेगा। दूर जाएगा तो फिर और भी याद आएगा, दूर जाएगा तो फिर और भी याद आएगा, फासले करीब की बुनियाद हुआ करते हैं, फासले करीब की बुनियाद हुआ करते हैं। वक्त बहा के ले जाता है नाम ओ निशान, मगर वक्त तो बहा ले जाता है नाम ओ निशान, मगर कोई हम में रह जाता है किसी में हम। बेवफा नहीं ये तो धड़कने भी कहती है, तुम बेवफा नहीं ये तो धड़कने भी कहते हैं। अपनी मजबूरियों का एक पैगाम तो भेज देते, आखिरी शेर यारो आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में। सब मुझे ही कहते हैं कि तुम उसे भूल जाओ, सब मुझे ही कहते हैं कि तुम उसे भूल जाओ, कोई उसे क्यों नहीं कहता, कोई क्यों उसे नहीं कहता कि वो मेरा हो जाए। तो ये था कुछ शेर्स, वो भी आखिरी आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में। अगर आगे बढ़ते हैं, अगला बयान दिल को छू लेने वाला नगमा है, एक बार फिर लाखों करोड़ के दिल चुराने वाला, द हार्ट ऑफ मिलियंस, द माइटी मुकेश, स्पेशल फॉर द मूका फैंस फ्रॉम द मूवी जिंदगी और ख्वाब 1961, दत्ताराम वादकर के साँच पर। और ये अति सुंदर बयान को लिखा है कवि प्रदीप जी ने। तो मिल के सुनते हैं वन ऑफ माय फेवरेट मुकेश जी का, कि अल्फाजे पे जरूर ध्यान दीजिए कि कभी किसी की खुशियां कोई लूटे ना, बहुत दिल पर दर्द बीतता है पड़ जाता है, तो जरूर इन बातों पे ध्यान देना कि आप कभी किसी की खुशियां नहीं लूटे।

का दिल चुराने वाला डमाई थी मुकेश जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। आइड फिल्म जिंदगी और ख्वाब निकले इनसेस्ट महान लेखक कवि प्रदीप जी का लिखा हुआ है अति सुंदर बयान कॉम्पोज बाय दत्ताराम वाडकर। तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं वक्त भी धीरे धीरे करीब आ रहा है आप सभी से विदा लेने को, लेकिन उससे पहले आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में ये आखिरी बयान ने कटेली कटेली नशेली नशेली आई डी फिल्म जिंदगी और ख्वाब दत्ताराम वाडकर के सांच पर कवि प्रदीप का लिखा हुआ अति सुंदर बयान सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को नाइटिंगेल सुमन कल्याणपुर जी।